आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फिरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:35 और 18 सेकेंड महफिल भोर सुहानी की, जिसमें जिंदगी की बातें, जिंदगी में किस तरीके से आगे बढ़े और तमाम बातें हम करते हैं। कहते हैं कि नई जिंदगी की शुरुआत तब होती है जब इंसान डर छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करता है। रास्ते में कितनी भी परेशानियां आए, मुस्कुराकर चलते रहना ही जिंदगी है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, बस धीरे ही सही कदम आगे बढ़ाते ही जाते हैं, और जो कदम बढ़ाता है वो अपनी मंजिल पर एक न एक दिन जरूर पहुंचता है। इसी उम्मीद के साथ हम भी इस जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। हम भी आज नए दिन का आगाज कर चुके हैं और एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ पा लेने की धुन में बस भागते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। राह में किसको ठोकर लगी, कौन कहां पे गिरा, किसको नुकसान पहुंचा, ये कोई नहीं सोचता। शायद इन्हीं लोगों के लिए वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि खुदगर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, खुदगर्ज बना देती है शिद्दत की तलब भी, प्यासे को कोई दूसरा प्यासा नहीं लगता। तो हमें उस कैटेगरी में नहीं जाना है, हमें उन लोगों के साथ नहीं जाना है जो सिर्फ अपना फायदा सोचे, सिर्फ अपना देखे, दूसरों की मदद किए बिना आगे बढ़ता जाए, बल्कि कोशिश ये करें कि दूसरों को साथ लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको

आपकी मंजिल बहुत ही करीब नजर आने लगेगी और साथ ही साथ जो आपके साथ रहेंगे वो भी हंसते मुस्कुराते गाते हुए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जीवन बस चलने का नाम नहीं बल्कि गीत गाते हुए मुस्कुराते हंसते हुए चलने का नाम है।

0: जी हाँ, गीत गाता चल, वो साथी गुनगुनाता चल। बेहद खूबसूरत यह नगमा था, और यह नगमा था गीत गाता चल फिल्म से, जिसे गाया था जसपाल सिंह ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल से जी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की, और भोर सुहानी में बातें जिंदगी से जुड़ी हुई। हंसते मुस्कुराते जीवन को आगे बढ़ाते रहना ही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी बेहद खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। मुश्किलात रास्ते में जरूर आती हैं, परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन उसका डटकर मुकाबला करके ही हम अपनी परेशानियों को भगा सकते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच यही है कि हर मुश्किल के बाद एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत इंतजार करती होती है। अगर आप डट कर मुकाबला करेंगे तो नई शुरुआत भी होगी और जिंदगी खूबसूरत भी रहेगी। और सिर्फ मुश्किलात से परेशान होकर डर कर हम बैठ गए तो वो जिंदगी वहीं पे रुक जाएगी, आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, और फिर आप जिंदगी में कुछ करने के बारे में दोबारा सोचेंगे भी नहीं। तो ऐसा कतई नहीं करना है, हमें जिंदगी को खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाना है, और ये आप मान कर चलें, ऊपर वाला हमें उतने ही बड़ी मुश्किलात में डालता है जो हम बर्दाश्त कर सकें। वो उससे ज्यादा किसी को इतने बड़े मुश्किल में नहीं डालता, क्योंकि परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए परेशानियों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और दुख से बिल्कुल भी नहीं डरना है। दुख तो ये जिंदगी का हिस्सा है, उस हिस्से को साथ लेकर आगे बढ़ना है। तभी तो मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये नगमा हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ बताता है कि कैसे हम जिंदगी को मुश्किलात से आगे निकालें। ये तो हमारा साथी है।
1: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर

राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये दुख हमारी जिंदगी का ही हिस्सा है और इस हिस्से को हम अपने से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उन तमाम मुश्किलात, उन तमाम परेशानियों का हमें डटकर मुकाबला करना है। इसी उम्मीद के साथ हम भी आपसे अब विदा लेंगे कि आप भी इसी तरीके से हौसले के साथ कदम आगे से आगे बढ़ाएंगे और जिंदगी को कामयाबी की राह पर लेकर चलेंगे। इसी के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अगले प्रोग्राम की जानकारी आपको मिलेगी और आज की इस नई सभा का आगाज भी हम करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई 2026, सुबह के 5:53 और 38 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं इस वक्त आप। और आकाशवाणी पर अब आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में आइए संक्षिप्त जानकारी हम देते हुए आगे बढ़ें।

0: और 6:44 पर आप सुनेंगे श्री राम चरित्र मानस गान, जिसमें आज आप सुनेंगे बाल कांड भाग 56। छह बजकर 55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। और 7:10 पर आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात। और 7:30 पर आप सुनेंगे आज सवेरे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। श्रोताओं, 6 वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वासमत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्निथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया।

0: वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m, the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad and at around 3 p.m, he will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and the IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting, convened by Congress chief Mallikarjun Kharge at his residence, was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization K.C. Venugopal, and senior Kerala leaders Ramesh Chennathalia and V.D. Satishan. The party said Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon.

वो शक्ति जो हर कहीं हमारे पास हवा रूप में मौजूद है, वो शक्ति जो हमारे लिए सूर्य रूप में मौजूद है, वो शक्ति जो हमें प्राण देती है, वो शक्ति जो हमें निरंतर आगे बढ़ने का साहस देती है। आइए मिलकर उनके चरणों में वंदन करते हैं। जीवन की शुरुआत प्रभु चरणों में अर्पण के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अर्पण। 6:12 हुए हैं। आज अर्पण में आपका साथ देने के लिए मैं शीतल हूं आपके साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अगर हम देखें तो हमारे जीवन का जो आधार है, हमें जो जन्म देने वाली है, वो हमारी माँ है। और अपनी माँ को याद करते हुए आज का ये दिन जो विशेष रूप से बना है, हम अर्पण में भी अपनी माँ को ही अपना पहला भजन समर्पित करते हैं।

सृष्टि के हर कण कण में तेरा ही वास है, प्रकृति की हर हलचल में तेरा ही एहसास है। सुबह की पहली किरण जब धरती को चूमती है, लगे जैसे तेरी कृपा चारों तरफ घूमती है। ना कोई शिकवा ना कोई गिला, जब से तेरा साथ मिला, श्रद्धा की इस राह पर विश्वास का एक नया फूल खिला। भक्ति का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर है, मगर जिसके साथ परमपिता परमात्मा का भरोसा है, फिर उसे उसके मार्ग से कोई नहीं हटा सकता। हमारे जीवन में मां रूप में आप प्रकट होती हैं और अपनी कृपा से, अपनी दया से हमारा मार्गदर्शन करती हैं और जीवन भर हमें एक नन्हे से बच्चे की तरह दुलार करती हुई, हमारी गलतियों पर हमें डांटती हुई और फिर एक बार जोश के साथ नई शुरुआत के लिए प्रेरणा देती हुई। कभी आप माँ बनकर आती हैं, कभी आप बहन बनकर आती हैं, कभी आप साथी बनकर आती हैं और ये स्वरूप ऐसा है जो जीवन की सबसे खूबसूरत से खूबसूरत चीजों को हमारे जीवन में खिलता हुआ पाता है। आपका आभार, क्योंकि जीवन का हर सुख आप ही के चरणों में है।

कल क्या हुआ इसे भूल जाइए, आज की सुबह एक कोरा कागज है, अपनी मेहनत और उम्मीदों से इस पर एक नई कहानी लिखिए। और कहानी लिखते वक्त अपनी मुस्कुराहट को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट न सिर्फ आपको खुशियों से भर देगी, आपको जो भी देखेगा उसके होठों पर भी वो मुस्कुराहट की वजह बन जाएगी।

जैसे रात के बाद सवेरा निश्चित है, वैसे ही संघर्ष के बाद सफलता भी तय है। बस अपना हौसला और विश्वास भगवान पर बनाए रखना है। 6:28 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है अर्पण और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं शीतल।

गूंजते हुए संगीत और ठंडी हवाओं के साथ हमें याद रखना है कि हमारी क्षमताएं हमारे डर से कहीं ज्यादा बड़ी हैं। आज का दिन हमारा है, इसे पूरी ऊर्जा और प्यार के साथ जिए। कल की जो भी चीजें हुई उन्हें छोड़ दीजिए। उन चीजों के लिए शुक्रिया कहें जो हमारे पास हैं, उनका दुख ना मनाएं जो हमारे पास नहीं है। जीवन में सबसे खूबसूरत चीज है हमारा जीवित रहना, और सबसे बड़े हैं वो परमपिता परमेश्वर, जो हर एक पल हर एक क्षण हम पर ये दया बनाए रखते हैं।

हवाओं का रुख हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपनी नाव के पाल को कैसे मोड़ना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। परिस्थितियों को खुद पर हावी न होने दें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। 6:44 और 44 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज से। ये वक्त है रामचरित मानस से पाठ का। आइए सुनते हैं रामचरित मानस से पाठ, जिसमें आज हम सुनेंगे बालकांड के कुछ अंश।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरी की ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनय युक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

0: शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नव मन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे विंशत्युत्तर शत विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनायाः पञ्चविंशतितमीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्दा स्थले अद्य रजत जयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीयर्तो विभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्ड वृष्टेः संभावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इण्डियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30+200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेलूर से महबूबनगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्स्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ डीआरडीओ, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल त्रिनिदाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the programme. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of the modern journey evolving into a global center of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn in along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailashnathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a 5th term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and VD Satishan. The party said Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala chief minister and the name will be announced very soon. Union Home Minister Amit Shah will chair a high

शाखों पर जब नई कोपले चुपके से अंगड़ाई लेती हैं, वो बिना कहे ही दुनिया को धैर्य की शिक्षा देती हैं। मिट्टी को सींच कर जो सौंधी महक हवा में घुलती है, लगे जैसे किसी तपस्वी की बरसों बाद आंखें खुलती हैं। न ये फूल किसी के स्वागत में अपनी रंगत को चुनते हैं, ये तो बस कुदरत की लय पर मौन का ताना बाना बुनते हैं। तू भी बन जा उस दरख्त सा जो धूप में खुद को तपाता है और अपनी घनी छाया से हर राहगीर को अपनाता है। दिन की शुरुआत इसी विचार के साथ। जीवन अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन हम जिंदगी को औरों के लिए समर्पण कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि फूलों की नियति सिर्फ खिलना नहीं है, वो नहीं जानता कि वो मंदिर जाएगा, धूल में जाएगा या कहाँ पहुंचेगा। उसका पूर्ण समर्पण जो प्रकृति ने उसे जैसा बनाया उस तरफ है। 7:11 और 58 सेकेंड, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत हो चुकी है गोल्ड सुप्रभात की। गोल्ड सुप्रभात में आज आपके साथ हूं मैं शीतल, और आज तो जी चाहता है कि हम खुलकर झूमें, खुलकर गाएं।

कभी कभी तो सच में यही लगता है कि हम ऐसी जगह चले जाएं जहां सिर्फ हम हो, हमारी तन्हाई हो और बस हम इन हवाओं, इन पेड़ों, इन लहरों में झूमते रहें। और तब हमें याद आता है कि घर में बहुत सारे पेंडिंग वर्क है और आज का दिन खास तौर से रविवार का होता है कि हम बहुत सारे पेंडिंग वर्क्स को करना चाहते हैं, लेकिन इन सब में जरूरी है अपने आप से प्यार करना, अपना ख्याल रखना, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। और मौसम के हिसाब से अपने खान पान में, अपने पहनाव में और अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव जरूर कर लीजिएगा। तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है आज। जी हाँ, लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास आज अधिकतम तापमान रहने वाला है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और आज तो सूखी और गर्म हवाएं, जिन्हें हम लू कहते हैं, वो भी चलने वाली हैं। और अगर आज दोपहर आपका कहीं आने जाने का प्रोग्राम है तो इसमें आपको बता दें कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो सूरज की तपिश है वो सबसे ज्यादा होने वाली है। तो ऐसे में जरूरी है कि इस तपन में अपने आप को थोड़ा सा शांत रख पाए। तप रहा है अंबर आज, अग्नि की है फुहार, धैर्य की ही परीक्षा प्रकृति का सार है। पर याद रहे, जो वृक्ष इस ताप को सह जाता है वही वर्षा की पहली बूंद का असली आनंद पाता है। लेकिन हमें अपने जीवन में धैर्य बनाए रखना है और जो हमारे सबसे बड़े साथी हैं यानी पेड़ पौधे, उनके साथ रिश्ते को मजबूत रखना है और अपने आसपास हरियाली बनाए रखनी है।

चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर अपनी माँ देखी है, वो जो हर दर्द को चुपचाप पी जाती है, अपने बच्चों की खातिर खुद को भूल जाती है। मिट्टी से जो सोना बनाने का हुनर रखती है, वो माँ ही है जो पूरे घर के फिक्र रखती है। उसकी हथेलियों में छिपा है सुकून का हर मंजर, वो ढाल बनी खड़ी है चाहे आए कोई बवंडर। ईश्वर की भक्ति का वो पहला और साक्षात रूप है, वो थके हुए पांव के लिए मखमली सी धूप है। क्या लिखूं उसकी महिमा में, शब्द भी कम पड़ते हैं, उसकी दुआओं के आगे सितारे भी झुकते हैं। मंदिर अगर भक्ति का चौखट है तो माँ उसकी मूरत है, जहां झुक जाए ये सर उसके चरणों पर वहीं सबसे बड़ी बरकत है। हम देखते हैं हम सभी के जीवन में हमारी माँ एक अहम किरदार की तरह होती है।

आज 10 मई है और आज पूरा विश्व मदर्स डे मना रहा है। एक माँ के लिए जो अपने बच्चों की दुनिया संवारने में अपनी पूरी उम्र लगा देती है। यहाँ कुछ अगर हम कहना चाहें तो वो ये कि हम अपनी माँ के लिए बहुत सारे तोहफे लाने की ना सोचें। आज उसके पास बैठें, उसको सराहें, उसे ध्यान से देखें और उसे ढेर सारा प्यार करें।

जब भी माँ शब्द होता है या माँ की बात होती है तो लगता है कि हम यूं ही अपनी माँ की बातें करते रहें, लेकिन जब सही समय है तब अगर हम उसका साथ ना दें तो फिर कोई फायदा नहीं। इसी तरह से जीवन में जब हमें ये वक्त मिला है तो तब हम मुस्कुराएं ना, खुश ना रहें और गमों में इस वक्त को बिताते रहें तो भी अच्छी बात नहीं है। तो ज़रूरी है खुद को स्वस्थ रखना, खुद से प्यार करना।

जी हाँ, यूं ही संगीत का सफर चलता रहेगा, हम बात करते रहेंगे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। गोल्ड सुप्रभात को विराम देने की मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत। आप सुनिए समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। आज की इस सुबह को यादगार बनाने के लिए अपने होठों से मुस्कुराहट को हटने मत दीजिएगा। इसी बात के साथ मैं शीतल लेती हूँ विदा। नमस्कार।

0: माँ एक ऐसा शब्द जिसके लेते ही दिल में सुकून भर जाता है। ये वो निस्वार्थ शक्ति है जो जन्म देती है, रक्षा करती है और पालन पोषण करती है, लेकिन बदले में सिर्फ हमारी खुशियाँ चाहती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता और ये बच्चों के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। आज सवेरे के इस अंक में आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं इस मौके पर सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
1: नमस्कार फरहत, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई जस्ट लाइक टू एड हियर दैट आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर। फरहत, दीज लाइन्स सो ब्यूटिफुली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ अ मदर एंड अ चाइल्ड। एंड लिसनर्स, नॉट ओनली टुडे, लेट्स सेलिब्रेट दिस रिलेशनशिप एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस।
0: जी बिल्कुल सरब जी, क्योंकि जो माँ है ना वो हर उम्र में चाहिए होती है, चाहे आप जवानी के उस पड़ाव पर हो या फिर बुढ़ापे के उस पड़ाव में, लेकिन माँ जो है वो हर वक्त हमें चाहिए होती है।
1: एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड।
0: जी बिल्कुल, और फिल्मों में भी हमेशा माँ के किरदार को अहमियत दी गई है, तो क्यों ना फिल्म कुछ कुछ होता है से ये सीन सुनते हैं जहाँ शाहरुख खान माँ के किरदार को बखूबी बयां कर रहे हैं।
2: माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ, माँ सब कुछ है।
0: बिल्कुल, माँ सब कुछ है सरबजीत।
1: Yes, and with these words, once again, listeners, a very warm and loving welcome to all our listeners tuned to Akashvani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashvani network. Yes, listeners, it's time for our daily news magazine program, Aaj Savere. This is a program of 30 minutes, a program packed with important news, Metro City updates, historical information, and of course, towards the end of the program, we shall together discuss and

0: share with you information about important personalities associated with today's day, that is 10th of May.
1: जी बिल्कुल सरबजीत, लेकिन उससे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं मुख्य समाचारों से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे लगभग दिन के 11 बजे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नव निर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का वहां पर भी शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे।
0: द फाउंडर ऑफ तमिलनाडु वेत्री काजगम टीवी की से जोसेफ विजय विल बी स्वोन इन टुडे एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। द स्वेयरिंग इन सेरेमनी विल बी हेल्ड एट नेहरू इंदौर स्टेडियम एट 10 AM टुडे। स्टेट गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर विल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू मिस्टर विजय। अकॉर्डिंग टू पार्टी सोर्सेज 9 मिनिस्टर्स विल ऑल्सो बी स्वोन इन अलॉन्ग विद हिम। एलैबोरेट अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द स्वेयरिंग इन सेरेमनी एज अ ह्यूज क्राउड इज एक्सपेक्टेड टू टर्न अप फॉर द इवेंट इन चेन्नई। We have more details on this from our correspondent.
2: With a mandate of more than 34%, Vijay, who acted in several box office hits, will become the chief minister. Vijay made the entry as a protagonist to Film World through Nalaya Teerpu. Later, he went on to give several blockbusters, including films which had political dialogues. The songs which had Josh beats is popular among children to the aged ones. TVK, being the single largest party, had to stop with 108 seats, but still Joseph Vijay managed to get the majority with the help of Congress, VCK, left parties and IUML. With the charisma of a hero, Tamil Nadu has seen the heartthrob of the youth who made history on the very first attempt and become the chief minister. Unga Vijay, Naan Vara was the code word which he won the elections. No doubt that the performance of this government, who has a lot of young and new faces, will be assessed by those who gave him the mandate. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
1: और तमिलनाडु के बाद केरलम की बात कर लेते हैं। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरल प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा, जल्द ही नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व में एनडीए ने 9 अप्रैल को हुए चुनाव में बहुमत हासिल किया है। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए गए थे।
0: एंड फ्रॉम पॉलिटिक्स फरहत, लेट्स see what the great leaps the country is taking in the area of defense and research. Defense Research and Development Organization, DRDO, has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defense said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, industry partners and academia and described the achievement as a solid foundation for the nation's hypersonic cruise missile development program. The ministry said that the combustor is developed by Defence Research and Development Laboratory, DRDL, of DRDO, with support from industry partners. It added that the combustor uses an indigenously developed liquid hydrocarbon fuel, advanced thermal barrier coating and modern manufacturing technologies.
1: और सरबजीत, अब बात कर लेते हैं संविदा कर्मचारियों से जुड़ी खबर से। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान करना, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। इसमें समय पर वेतन

0: जाएगा और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान भी है। इसके अलावा दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के दो दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में होना अनिवार्य कर दिया गया है।
1: एंड लेट्स नाउ टेक अ लुक इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इन बॉक्सिंग इंडियाज अंडर 15 गर्ल्स डिलीवर्ड कमांडिंग परफॉर्मेंसेज इन द सेमीफाइनल्स एट द एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 एंड अंडर 17 चैंपियनशिप्स विद 9 बॉक्सर्स एडवांसिंग टू द फाइनल्स अक्रॉस वेट कैटेगरीज इन ताशकंद। इन द 30-33 किलोग्राम्स कैटेगरी अक्षिता रजिस्टर्ड एन एम्फैटिक विन बाय आरएससी रेफरी स्टॉप्स कंटेस्ट अगेंस्ट आयजान मरत ऑफ कजाकिस्तान। अंजे 37 kg कंटिन्यूड इंडिया स्ट्रांग रन विद अ कन्विंसिंग 5-0 विक्ट्री ओवर सर्वेनोज रिस्क्लोवा ऑफ उज्बेकिस्तान, वाइल सोनिया 40 kg वाज सिक्योर्ड अ डोमिनेंट 5-0 विन अगेंस्ट डायना मेंदग्रेवा ऑफ कजाकिस्तान। इन द 43 kg कैटेगरी तन्वी क्लिंच्ड अ विन बाय आरएससी अगेंस्ट सेजम नुलबुक ऑफ कजाकिस्तान। हंसिका अत्री 46 kg फॉलोड इट अप विद एन इम्प्रेसिव RSC victory over Yunoishion of Korea. Sunena, 58 kg, delivered a strong performance, winning by RSC against Ardak Arzbigan of Kazakhstan. In the 61 kg category, Bhumika secured a win by RSC against Xiongying Shang of Chinese Taipei. Tanvi, 64 kg, registered a hard-fought 4-1 victory over Yasmin Jotnov of Kazakhstan to progress to the finals. With 9 finalists confirmed, the Indian under 15 girls team will now look to convert this strong showing into gold medals.
0: और श्रोताओं, हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम रुख करेंगे महानगरों की खबरों का। तो सबसे पहले चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता के समाचार हम सुनेंगे। तो सरबजीत, चेन्नई में क्या है खास?
1: Yes, Farhat, around 48,250 hatchlings have been released into the sea by the state forest officials so far this season, which will conclude by month end. At least 74,140 eggs were collected from nests and transferred to hatcheries this time. Tamil Nadu recorded 1,985 Olive Ridley nests across 9 coastal hatchery districts. Chennai had the maximum number of nest identification, egg collection and hatchling releases. Chennai also recorded the highest number of turtle deaths this season. The district's jurisdiction extends to Pulkat in the neighbouring Tiruvallur district. And Farhad, what are you having to share with the listeners now?
0: जी, दिल्ली में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई से जुड़ी खबर से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने दिल्ली में प्रोजेक्ट मैट के दूसरे चरण की शुरुआत की है। ये पहल किशोर विद्यार्थियों के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में स्वास्थ्य संबंधी मॉड्यूल, सहकर्मी सहायता गतिविधियां और अभिभावक सहभागिता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। दूसरे चरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 60 से अधिक सीबीएसई स्कूल भी इसमें शामिल हुए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के पास हीट वेव एक्शन प्लान के अंतर्गत विशेष कूलिंग जोन तैयार किया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यहां 70-80 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं ठंडे पानी और ओआरएस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि राहगीरों, पर्यटकों, रिक्शा चालकों और श्रमिकों को गर्मी से राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार केवल व्यवस्था बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि लोगों तक सीधी राहत पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। श्रीमती गुप्ता ने अधिकारियों को भीड़भाड़ वाले अन्य इलाकों में ऐसे राहत केंद्र विकसित करने के भी निर्देश दिए हैं।
1: Yes, of course, you know, with summers round the corner, Farhat, we all need to take a lot of care of our health and of course at all time remain hydrated. Moving on to news from Bengaluru, Karnataka State Election Commission is likely to announce next week the schedule of elections to the 5 city corporations under the Greater Bengaluru Authority. The State Election Commissioner, G.S. Sangareshi, has informed that the poll dates will be announced following consultations with the officials of the Greater Bengaluru Authority. and also considering engagements related to examinations, census work, voter list revision and monsoon conditions. The Supreme Court has directed the Karnataka state government to complete Bengaluru civic body elections before June the 30th. The term of the Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike, as it was called earlier, has ended way back in 2020. The civic bodies since

0: then is administered by a government-appointed administrator. The state government had last year replaced Brihat Bengaluru Mahanagar Palike with Greater Bengaluru Authority and bifurcated the single municipal corporation into five separate corporations.
1: और अब महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नायक ने कहा है कि राज्य वन विभाग थाने जिला आर्द्रभूमि निगरानी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को चुनौती देगा, जिसमें कथित तौर पर नवी मुंबई और थाने के कई पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को आर्द्रभूमि का दर्जा देने से इनकार किया गया है। इस रिपोर्ट ने पर्यावरणविदों के बीच चिंता पैदा कर दी है, और क्योंकि इसमें नवी मुंबई में राजहंसों के आवासों और जल निकायों सहित महत्वपूर्ण स्थलों की आर्द्रभूमि स्थिति पर सवाल उठाया गया है। वहीं भगवत सप्ताह उत्सव के उपलक्ष्य में 9 से 12 मई तक उल्हासनगर के कई हिस्सों में यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू किए गए हैं। थाने पुलिस के अनुसार श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को नियंत्रित करने और जाम से बचने के लिए कई सड़कों पर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। मलेगा मंदिर, आकाश कॉलोनी रोड और चालिया मंदिर की ओर जाने वाले प्रमुख मार्ग निर्धारित समय के दौरान सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे और वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस वाहनों सहित आपातकालीन और आवश्यक सेवा वाहनों को भी इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
0: एंड नाउ न्यूज फ्रॉम हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी अनाउंस्ड प्लान्स टू मेक हैदराबाद अ ट्रैफिक फ्री सिटी। The state government will build underpasses, surface roads and elevated corridors to improve traffic flow. Chief Minister addressed the Parliamentary Standing Committee on Urban Affairs and Housing, presenting the government's plans to make Hyderabad a traffic-free city and rejuvenate the Musi River. Multi-level parking facilities and multi-mode transport systems will be developed across the city. The Chief Minister said that simply widening roads is not enough to manage traffic effectively. To reduce air pollution, electric buses will be added to the city's public transport. Auto rickshaws in the city centre will be converted to electric vehicles for free. The government is also rejuvenating the Musi River to preserve the city's natural beauty and culture. The Parliamentary Standing Committee praised the Chief Minister for the Musi River rejuvenation project. The committee said it is the first project of its kind in India.
1: और सरबजीत, अब कोलकाता का रुख कर लेते हैं। अनुकूल हवा और उच्च आर्द्रता के कारण रविवार तक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। अलीपुर मौसम विभाग ने झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी और पश्चिमी बर्दवान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। और इसके अलावा उत्तरी बंगाल के मालदा और दक्षिण दिनाजपुर के लिए मध्यम बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पुष्टि की है कि अगले 2 दिनों में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। महानगरों की खबरों के बाद अब मौसम का हाल जान लेते हैं सरबजीत। तो सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज आसमान साफ रहेगा लेकिन गर्मी वैसे ही बरकरार रहेगी। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और कोलकाता में हमने आपको बता ही दिया है समाचारों में कि आज बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना वहां पर व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान में गिरावट महसूस होगी, 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
0: सो फरहत, सो इंटरेस्टिंग, आवर कंट्री इज नॉट ओनली डाइवर्स इन इट्स कल्चर बट ऑल्सो इन इट्स वेदर कंडीशंस। कहीं बहुत गर्मी हो रही है और कहीं बारिश की संभावना है। जी, वेल, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस थंडर स्टॉर्म अकंपनीड विद लाइटनिंग। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 31 डिग्रीज। Bengaluru is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum may go up to 32 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain, thunderstorm or dust storm. The temperatures will hover between minimum of 27 degrees and a maximum of around 38 degrees Celsius.
1: और अब आइए इतिहास के पन्नों को पलट लेते हैं। आज है 10 मई 2026, तो सबसे पहले इतिहास में दर्ज 1857 की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन शुरू हुआ था।
0: यस फरहत, वेरी राइटली सेड। ऑन May 10th, 1857 सीपॉयज एट मेरठ बिगैन देयर रिवोल्ट, इग्नाइटिंग

0: conflict that spread across northern India and would influence Indian politics for decades. The 1857 rebellion, or First War of Indian Independence, was a major large-scale uprising against British East India Company rule that began today in the year 1857 in Meerut and spread across north central India. And sparked by the use of greased cartridges, it stemmed from deep-rooted political, economic and social grievances. On this day in the year 1872, Victoria Woodhull became the first woman nominated for President of the United States. And on this day in the year 1877, the 19th U.S. President, Rutherford Hayes, got the first telephone installed in the White House.
1: और 1994 की अगर बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा प्रिटोरिया में एक ऐतिहासिक समारोह में राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की गई. वहीं 1999 में पेनिसिलिन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर एडवर्ड इब्राहिम की आज ही के दिन मृत्यु हुई.
0: And 1893, on this day, the Imperial Institute building was officially opened by Queen Victoria. And on this day, in the year 1901, Sir Jagdish Chandra Bose, the Indian scientist, in the hall of the Royal Society, London, which was packed with eminent scientists, proved that plants and animals have similar touch sense.
1: और सन 2006 में अगर बात की जाए तो नोबेल पुरस्कार सम्मानित ऑस्कर एरियोस ने दोबारा क्रिस्टोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी.
0: On this day in the year 1975, the first home video cassette recorder, the Betamax, began sales in Japan. The format made by Sony used one-hour tapes, but a competing system was introduced by JVC the following year called Video Home System, capable of two-hour recording.
1: और अब आइए इतिहास के बाद हम याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी शख्सियतों को. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पंकज मलिक की, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था. बांग्ला संगीत और फिल्मों में सफलता के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी अपनी कामयाबी का परचम लहराने वाले शास्त्रीय संगीत के विशेषज्ञ रहे. इनका पूरा नाम था पंकज कुमार मलिक और ये ऐसे संगीतकार और गायक थे जिनकी आवाज के जादू ने आज भी उनके लाखों प्रशंसकों को बांध रखा है. जाति प्रथा की समस्या के खिलाफ संदेश देने वाली फिल्म डॉक्टर में पंकज मलिक ने कई गाने खुद गाए जो काफी हिट भी हुए. पंकज मलिक की अपनी विशिष्ट गायन शैली थी जिसकी बदौलत उन्होंने हजारों लोगों को अपना प्रशंसक बनाया. उन्हें हिंदी फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है.

0: Fred received an honorary Academy Award, a BAFTA Award, 3 Emmy Awards, 2 Golden Globe Awards and a Grammy Award.
1: और श्रोताओं, अब हम जो अगली शख्सियत के बारे में बात करेंगे, तो क्यों ना सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं।

0: गाने बजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उल जुलूल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में अभी आपने सुनाया डॉक्टर हरविंदर मनकर जी का विशेष संदेश। आज हम अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे मना रहे हैं और आज के दिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी अपनी मम्मियों के पास बैठे उनसे बात करें, अगर हमारी माँ यहाँ नहीं है तो उन्हें याद करें। लेकिन ऐसे में हम अपनी जो परम माता है, हमारी प्रकृति, उसका भी ख्याल करने की कोशिश करें। हम कोशिश करें कि अपने आसपास से प्लास्टिक मुक्त जीवन को अपना सकें। जब भी हम बाजार जाएं तो कपड़े का थैला लेकर जाएं। प्लास्टिक की बोतलों की जगह हम स्टील और कांच की बोतलों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अपने आसपास हम सफाई रख सकते हैं और जब हमारे आसपास साफ सफाई होती है तो हमारे जो है फिजिकल माहौल के साथ साथ हमारे मन में भी स्पष्टता और शांति आ जाती है। साथ ही छोटा सा अपना बागीचा जरूर बनाएं, क्योंकि अगर हम छोटा सा बागीचा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें पॉजिटिविटी से भरता रहता है और उस पे दिन रात पत्तों का गिरना और आना हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। साथ ही पानी का हम दुरुपयोग रोकें। हमें लग रहा है कि यहां पानी की आवश्यकता नहीं है या कम इस्तेमाल किया जा सकता है तो कम इस्तेमाल करें। जरूरत ना हो तो बिजली के स्विचेस को बंद कर दें। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें खास तौर से आजकल हमारा जीवन जो है वो मोबाइल के साथ वक्त बिताने में लगा हुआ है, तो हम अपने लिए थोड़ा सा समय डिटॉक्स मोबाइल से रह सकने के लिए फिक्स कर लें। थोड़ा सा समय प्रकृति के साथ बिताएं, वॉक पर निकल जाएं और गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें और म्यूजिकल दिल लगी में ये कस्में वादे करते रहें, कस्में खाते रहें कि यूं ही अपने साथ जुड़े रहेंगे और अपनी माँ प्रकृति को प्यार करते रहेंगे।

आपके साथ यूं ही मुस्कुराहट के वादे करते रहे, लेकिन वक्त का साथ भी देते रहे। वक्त कह रहा है कि अब म्यूजिकल दिल लगी से मेरे विराम लेने का वक्त आ चला है, तो आप सुनिए समाचार और म्यूजिकल दिल लगी को यूं ही आप सुनते रहिएगा 9:10 पर भी। फिलहाल सुनिए समाचार, शीतल को दे इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में स्वर्ण युग में है। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद NDA विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार दैनिक वेतन शिफ्ट समाप्त होने तक साप्ताहिक वेतन साप्ताहिक अवकाश से पहले, पाक्षिक वेतन पखवाड़े की समाप्ति के 2 दिन में और मासिक वेतन का भुगतान अगले महीने के 7 दिन में हो जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन

संडे को सुबह जल्दी उठना चाहिए। सोच रहे हैं कि म्यूजिकल दिल्लगी का टाइम हो गया तो दिल्लगी कर रहा है, लेकिन संडे यानी सन का डे, रविवार, रवि का दिन, तो उठना चाहिए ना जल्दी। मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल जैसा आप समझे, फिलहाल तो मेरी नमस्कार कबूल कीजिए, आदाब, सुप्रभात, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप सुन रहे हैं 100.1 FM गोल्ड। सुबह के 9:10 से भी ऊपर हो गया है टाइम और आज संडे है, आपका अपना दिन है भाई साहब। आज दिन का प्लान बनाते बनाते क्यों ना हम थोड़ी सी म्यूजिकल दिल लगी आपके साथ कर लें। कुछ खरीदारी वगैरह करने का प्लान है तो वोकल फॉर लोकल का ध्यान रखिएगा। जानते तो होंगे आपके भारत सरकार के वोकल फॉर लोकल अभियान का मुख्य उद्देश्य भारतीय स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसका लक्ष्य छोटे उद्योगों, स्थानीय कारीगरों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना है ताकि देश में रोजगार के अवसर बढ़ें और आयात पर निर्भरता कम हो सके।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जान

जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

समय का पता ही नहीं चलता। मुझे तो लगता था कि नया साल अभी कुछ ही दिन पहले आया है, लेकिन सोचने बैठा तो देखा, अरे भाई, मई महीने का 10वां दिन आ गया आज। इसी तरह हमेशा खुद को पुनर्नवा करता जाता हमारा संस्थान है दोस्तों, रेडियो आकाशवाणी, जिसे ऑल इंडिया रेडियो भी कहा जाता रहा है। अपने आधिकारिक जीवन के 90 वर्षों का उत्सव मना रहा है आकाशवाणी। के बारे में हम कई जानकारियां इस अवसर पर आपको देते रहेंगे और उससे जुड़े सवाल भी आपसे पूछेंगे। अगला गाना सुनने से पहले ये सवाल, आकाशवाणी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? उत्तर तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो उत्तर गाने के उस पार।

सवाल पूछा था, जवाब देने का बहुत दिल कर रहा है। आकाशवाणी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? और इसका जवाब है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो प्रोग्राम ऐसा है ना कि इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि बस समय का कोई पता ही नहीं चलता है। एक गाना और आप सुन ले, यही लालच है मेरा तो। और एक और लालच है कि आप जब अपनी उम्र के छठे दशक को पार कर जाएं, तब भी आपको काम करने की उतनी जरूरत ना पड़े और कमाने के लिए कम से कम ना पड़े, आपका गुजारा ठीक से चले, चाहे देश के और जीवन के किसी भी तबके से आप आते हों, अटल पेंशन योजना आपकी मदद करती है इसमें। ये 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए एक सरकारी बचत योजना है दोस्तों, जिसमें कम निवेश करके 60 साल की उम्र के बाद जो है आपको 1,000 रूपये से लेकर 5,000 रूपये तक गारंटीड पेंशन जिंदगी भर मिलती रहेगी। और ये योजना न केवल अंशधारक को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देती है, बल्कि उनकी मृत्यु के बाद जीवन साथी को पेंशन और अंत में नॉमिनी को पूरी जमा राशि वापसी की गारंटी भी देती है। तो ये एक अपने आप में कमाल बात है ना। साथ बना रहे, ये कितनी प्यारी बात होती है। सुरक्षा बनी रहे। इस गाने के उस पार है वतन का राग।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है विनायक नारायण देशपांडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, प्रतापगंज दिल्ली से सुब्बालक्ष्मी और जबलपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मनोहर लाल खूबचंदानी। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हीं महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए

संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे। उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका मन क्रांति की ओर झुकने लगा था।

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा करना था। ये संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते। प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता। लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाई। वासुदेव हरि चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेव विनायक रानाडे हथियार बंद होकर निगरानी करते हुए वहां मौजूद थे। उन्होंने रैंड और आयर्स्ट की हत्या में सक्रिय सहयोग दिया। अंधेरे और उत्सव के शोर का लाभ उठाते हुए क्रांतिकारी वहां से सुरक्षित निकल गए। इसे 1857 के बाद भारतीय उग्र राष्ट्रवाद की पहली बड़ी घटना के रूप में देखा गया। ये घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक जबरदस्त झटका थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा पुणे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कीं।

क्रांतिकारी अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसी बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले से ही चापेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरि चापेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरि चापेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चापेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चापेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई और शेष तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई 1899 को वासुदेव हरि चापेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरि चापेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

दिल का मेल बॉक्स खुलेगा 10:30 बजे आपके प्रोग्राम्स के लिए, और हम आपको फरमाइशी प्रोग्राम, आपकी फरमाइश के गीत सुनेंगे, आपके नाम लेंगे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम लिखे, जगह का नाम लिखे और उसके बाद भेज दें हमें 9868687353 पर। चाहे तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com। फिलहाल तो समाचार सुनते हैं। समाचार होंगे हिंदी में, अंग्रेजी में, फिर विश्व दर्पण होगा और फिर उसके बाद वर्ल्ड न्यूज, उसके बाद हम दिल का मेल बॉक्स खोलेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं और वे इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: पहली वर्षगांठ मनाई है, और कल सुबह 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं। मैं आज आपके बीच बंगलुरु की इस धरती से माता अन्नम्मा उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
0: बाद में प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में भी शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय अब से कुछ देर में चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा।
2: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। श्री रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। तिरुपति में आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में सफल और शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru at 11 a.m. and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Details on this from our correspondent.
1: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Centre, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed that the Prime Minister will be honoured with Mysore Peta and silk shawl for the party's recent electoral victory, and around 15,000 people will attend this meeting. Sudhindra, Akashvani News, Bengaluru.
0: Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad. At around 3 p.m., he will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in the state. The founder of TVK, C. Joseph Vijay, is to be sworn in today as the Chief Minister of Tamil Nadu. The swearing-in ceremony is being held at Nehru Indoor Stadium. State Governor Vishwanath Arlekar to administer the oath of office to Mr. Vijay. According to party sources, 9 ministers are also to be sworn in along with him. Elaborate arrangements have been made for the swearing-in ceremony. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures under the Labour Codes. By linking labour law compliance directly with eligibility for government contracts and bidding, the measures seek to curb delays in wage payments and defaults in statutory dues affecting contract workers. Defence Research and Development Organisation, DRDO, has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a run time of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. It also validates both the combustor design and the capabilities of the state-of-the-art test facility, strengthening India's hypersonic cruise missile development program. The Navy of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps has warned that any attack on Iranian oil tankers or commercial vessels would trigger a strong retaliatory strike against U.S. military bases and ships in the region. The statement was issued in a social media post following recent intermittent clashes between Iranian and U.S. forces in and around the Strait of Hormuz. U.S. forces have reportedly attacked several Iranian ships and oil tankers. Meanwhile, U.S. President Donald Trump said he expects to receive a message from Iran as uncertainty continues over the progress of nuclear negotiations. The U.S. has proposed to increase the minimum wages paid to hire an employee under the H-1B visa program by 30% over the previously fixed limits, a move the administration claims will help prevent foreigners from undercutting salary of U.S. nationals. The new rule seeks to increase the minimum wages for 4 categories, from the entry level to the most experienced, contending that the existing wage levels were fixed 20 years ago and failed to adequately protect U.S. workers. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall today in parts of Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Places over Chhattisgarh and Gangetic West Bengal are expected to experience thunder squall today. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs. In another match, Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians will clash at Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण ट्रिनिडाड में कृषि प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा, यह भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्यमों तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमित सभी क्रूज जहाज यात्रियों की 42 दिन तक निगरानी करने की सलाह दी। अमेरिका ने H-1B वीजा पर काम करने वालों के लिए न्यूनतम वेतन में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा। और भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कम्स्टर का सफल परीक्षण पर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
3: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाड और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाड में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाड और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूती प्रदान करेगा और कृषि क्षेत्र को नई गति देगा। उन्होंने ट्रिनिडाड और टोबैगो के पेनाल में एक स्थायी कृत्रिम अंग केंद्र का भी उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि यह केंद्र देश और व्यापक कैरिकॉम क्षेत्र के लिए उपहार है। उन्होंने दत्तात्रेय मंदिर में दोनों देशों के लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना की और भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच संबंध निरंतर सुदृढ़ होने की कामना की। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स ने कहा है कि ईरान युद्ध के कारण अमेरिका के साथ मतभेद सामने आने के बाद भी यूरोप नाटो गठबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करना चाहता है। स्टॉकहोम में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिटसन के साथ श्री मर्ट्स ने भविष्य में इस गठबंधन को सक्रिय रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड ने गठबंधन के यूरोपीय स्तंभ को मजबूत किया है। श्री मर्ट्स ने कहा कि यूरोप और अमरीका के बीच मतभेद अब भी मौजूद हैं, लेकिन दोनों पक्षों का एक ही रणनीतिक उद्देश्य है, ईरान के साथ संघर्ष को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि ईरान परमाणु हथियार बनाने में सक्षम न हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नाटो के यूरोपीय सदस्यों के बीच तनाव ने गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों ने फरवरी के अंत में शुरू हुए अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। होर्मुज, जलडमरू, मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद यह बयान आया है। 28 फरवरी से ईरान के होर्मुज, जलडमरू, मध्य पर नियंत्रण के लिए इसराइल और अमरीका से संबंधित जहाजों की आवाजाही इस जलमार्ग से रुकी हुई है। अमरीका ने भी इस क्षेत्र की नौसैनिक नाकाबंदी कर ईरानी जहाजों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर ब्रिटेन होर्मुज, जलडमरू, मध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए युद्धपोत HMS ड्रैगन तैनात कर रहा है। इससे पहले ब्रिटेन ने ईरान युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद साइप्रस की सहायता के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में युद्धपोत तैनात किया था। ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस युद्धपोत की तैनाती का उद्देश्य होर्मुज, जलडमरू, मध्य की सुरक्षा के लिए बहुराष्ट्रीय गठबंधन में भाग लेना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले खराब रूस संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी बातचीत के लिए उनके पसंदीदा नेता हैं जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोडर। श्री पुतिन ने कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देशों के बीच रूस और वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमण की आशंका वाले MV होनियस क्रूज पर सवार सभी लोगों को 42 दिन तक निगरानी में रखने को कहा है। संगठन के वैश्विक महामारी रोकथाम निदेशक डॉ वैन किरखोव ने कहा कि वर्तमान में किसी भी यात्री या चालक दल के सदस्य में लक्षण नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने 42 दिन के दौरान जहाज से उतरने वाले सभी व्यक्तियों की निगरानी की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि आम जनता और कैनरी द्वीप समूह के निवासियों के लिए जोखिम कम है, जहां MV होनियस क्रूज आज पहुंच रहा है। इससे पहले MV होनियस क्रूज पर हंता वायरस के संक्रमण की सूचना मिली थी, जो अर्जेंटीना से पश्चिमी अफ्रीकी तट स्थित केप वर्डे जा रहा था। अमेरिका ने H-1B वीजा कार्यक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पहले से तय न्यूनतम वेतन में 30% वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। प्रशासन ने कहा है कि कम वेतन पर विदेशी कर्मी उपलब्ध न होने से अमेरिकी नागरिकों के वेतन में कटौती पर रोक लगेगी।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H-1B, H-1B1, E-3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता है। शंघाई में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत की भारतीय टीम ने मेजबान चीन को रोमांचक मुकाबले में शूट ऑफ में हराया। भारत ने पहला सेट जीता, लेकिन चीन ने वापसी करते हुए मुकाबला बराबर कर लिया। निर्धारित 4 सेट के बाद स्कोर बराबर रहने के कारण शूट ऑफ कराया गया। भारतीय तिकड़ी ने निर्णायक क्षणों में संयम बनाते हुए जीत दर्ज की। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर बड़ा उलटफेर किया था। इससे पहले साहिल जाधव ने पुरुष कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण ट्रिनिडाद में कृषि प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। कहा यह भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत लघु और मध्यम उद्यमों तथा कृषि क्षेत्र को मजबूत करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंता वायरस संक्रमित सभी क्रूज जहाज यात्रियों के 42 दिन तक निगरानी करने की सलाह दी। अमेरिका ने H-1B वीजा पर काम करने वालों के न्यूनतम वेतन में 30% की वृद्धि का प्रस्ताव रखा और भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दिल का मेल बॉक्स तो बहुत पहले से ही खुल गया, ऐसा लगा कि हम शुरू करेंगे और नाम बोलेंगे, लेकिन दोस्तों को तो नंबर और ईमेल आईडी पता ही है, इसलिए झड़ी लग गई, समझिए कि बरसात हो गई मैसेजेस की। 9868687853 पर व्हाट्सएप पर इतनी फरमाइशें आ रही हैं, और साथ ही FM Gold AIR Delhi@gmail.com पर भी बहुत सी फरमाइशें आ रही है। कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से, और नवीन भाटिया मोती नगर नई दिल्ली से, कदमा जमशेदपुर से, चिन्मय महतो, शिवांश मंडल मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन और कविता गौड, मीता शाह टेक्सस अमेरिका यूएसए से ईमेल लिखती हैं। फिरोज भाई के लिए लिखी थी ये ईमेल, और टाइम जोन डिफरेंट होने की वजह से हो सकता है इस वक्त वो ये कार्यक्रम ना सुन रही हूं, लेकिन वो सुनती हैं और उनका पूरा परिवार सुनता है, ये उन्होंने कहा है। कल्पना मदन झा मानव और मयंक भिलाड़ वापी गुजरात से, अरविंद कुमार गुड़िया कुमारी भाव्या कुमारी निवेश कुमार नियति कुमारी बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से, ये दिल के मेलबॉक्स से सीधा गाना आपकी फरमाइश के आधार पर आ

भाई आपकी चाहते भी कहाँ खत्म होने वाली हैं और हमारी भी खत्म होने वाली नहीं है। आपको गाने सुनवाने की मालियान सरधना मध्य प्रदेश नहीं मेरठ से, माफ कीजिएगा, मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीव्यम सरधना मेरठ से, आदि जैन, अंश भव्य और राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा पिहू, सुशांत, प्रिया झा, मास्टर निवेश कुमार, लड्डू कुमारी, टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर नई दिल्ली से और परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संगई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और मजनू का टीला दिल्ली से, कमल बालूजा मधुसागर और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग आकाशा माही। ये प्यारी सी एक फरमाइश इनमें से हमारे एक दोस्त ने भेजी है, अलका याग्निक को ही दोबारा सुनना चाहते हैं। ये जो पिछला गाना सुना, अगला गाना भी इन्हीं की फरमाइश पर आ रहा है। दोस्तों, खुदा गवाह का ये प्यारा सा गीत आपको बहुत पसंद आएगा और खास बात यह है कि आपका अगर हम नाम ले चुके हैं दोस्तों, तो आप दोबारा मैसेज ना भेजें, क्योंकि दूसरों के नाम भी तो हमें पढ़ने हैं। आपको अच्छा लग रहा है अपना नाम सुनकर, हमें अच्छा लग रहा है आपका नाम पढ़कर, लेकिन थोड़ा ख्याल रखिए। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल का मेलबॉक्स विजय के साथ है।

कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबराय और गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतबीर सिंह बिजारिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू नव्या और कस्बा गन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, वाह कविता लिखी है, बच्चों के नाम है क्या है, सैयद मसरूर, आइना हसन, माफ कीजिएगा शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम अदीब, हसन गांव, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से, पद्मा टॉकेज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह और पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र, ये सभी हमें संदेशा भेजते हैं और इनकी फरमाइश का गीत हम चलाएंगे, लेकिन एफएम गोल्ड का तो अलका याग्निक जी के साथ मोहम्मद अजीज की जोड़ी इस गाने में थी जो अभी हमने सुना। उससे पहले अलका जी अभिजीत के साथ थी, वादा रहा सनम, क्या फरमाइशें हैं, बहुत प्यारे प्यारे गाने। और अगला एक प्यारा गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में आपके लिए आ रहा है।

देखिए आप भी हमारे मन को लुभा रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय की भी तो पाबंदी होती है। 10 ही मिनट बचे हैं, आपके नाम पढ़ लें या गाने सुन लें। मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान, अनुराज बिनारा, नवाब अहमद भारती, शबाना अरहान, अहमद सूफियाना सूफिया, नवाब बल्ली मारान से, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशान, पूजा परिहार, और उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका, और जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई साहब, राजकुमार बोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु, मुकेश जगता, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला साथ में है, भिलाई छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशन लाल, हेमलता, डिंपल, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये हैं, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, और शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी, ये सभी दोस्त हमारे, और गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, गांव फ्रांसी हिसार से ये हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, अपरकोट या ऊपरकोट, मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अबान, और झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, और ये संदीप मक्कड़ साहब हैं, ज्योति, मन्नत मक्कड़ और भरत, ये धर्मवीर जी दिल्ली वाले, पिंगड़ावाड़ा चौक गोराया जलंधर से, बठिंडा रोड मही डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया, और पता नहीं कहां से रानी मैसेज भेजती हैं, ये गाना सुनना चाहते हैं हमारे सभी दोस्तों को प्यार सहित।

वंदना चौहान दिल्ली से और टोरोवाल नवाशहर पंजाब से, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, वाणी और ये आखिरी मैसेज था। प्यारे प्यारे मैसेज मेरे दोस्तों ने मुझे भेजे हैं और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है आपके नाम पढ़ना और आपकी फरमाइश के गाने सुनवाना, लेकिन वक्त की पाबंदी होती है। अभी तो हम समाचार सुनेंगे, उसके बाद वापस आके आज के मेहमान होगा, लेकिन आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। एक मैसेज में तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना झलक रही थी। उन्होंने 15-20 नाम लिखे अपने परिवार के और फिर अंत में लिख दिया परिवार का नाम लेकर कि इस परिवार के बाकी सदस्य। क्या बात है, बहुत सुंदर। खैर साहब, समाचार सुनते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। तमिलनाडु में तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 9 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई।

0: 120 विधायकों के समर्थन के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को कहा है। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक यात्रा के दौरान बेंगलुरु पहुंच गए हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में 9,400 करोड़ रूपये की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुजरात का सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी गौरवमयी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। सफल परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO, उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों को सफल परीक्षण के लिए बधाई दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज आंधी आने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के उपमालयी क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की संभावना है। आज गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का भी अनुमान है। ईरान की नौसेना ने ईरानी तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों पर किसी भी हमले के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों और जहाजों पर जोरदार हमले की चेतावनी दी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य और आसपास के इलाकों में ईरानी और अमरीकी सेनाओं के बीच हाल की छिटपुट झड़पों के बाद ये बयान आया है। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में भारत की अक्षिता, अंजी, सोनिया और तन्वी ने फाइनल में जगह बनाई है। इसके अलावा हंशिका अत्री, सुनैना और भूमिका ने भी खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। तन्वी ने 64 किलोग्राम वर्ग में कजाकिस्तान की यास्मीन जौतखानोवा को हराया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर बाद 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। एक अन्य मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. In Tamil Nadu, the founder of TVK, C. Joseph Vijay, was sworn in as the chief minister this morning. The swearing-in ceremony was held at Nehru Indoor Stadium at 10 a.m. State Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, ये कार्यक्रम है आज के मेहमान। ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर बार हम अपने स्टूडियो में किसी न किसी अलग व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आते हैं और आज जो व्यक्तित्व हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी। एक ऐसे व्यक्ति जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, भारतीय फौज से संबंध रखने वाले, संपूर्ण देश का अभिमान, देश की शान और सम्मान हमारी सेना। उत्तराखंड से संबंध रखते हैं और गढ़वाल राइफल्स में बहुत लंबे समय तक काम करते रहे, तरह तरह की जिम्मेदारियां निभाई। ये भी हम आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी 3 बार राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित रहे परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित रहे हैं और भी बहुत सारे बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। इन सब के बारे में जानेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, उनके विचारों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी जी का स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: रश्मि जी, धन्यवाद। अभिभूत हूँ, अनुग्रहित हूँ आपके उत्तम विचारों से।
0: लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी, सबसे पहले ये बताएं कि कितने वर्ष तक आप सेना में सक्रिय रहे, क्या क्या किया, कैसे निकला उत्तराखंड का एक जवान जिसके मन में ये सपने थे कि मैं देश के लिए कुछ कर गुजरूंगा।
1: मैंने गढ़वाल राइफल्स में 40 साल नौकरी की है। उसके पहले मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद पंतनगर यूनिवर्सिटी में था। लेकिन एक जज्बा था, एक जुनून था कि फौज में जाना है, क्योंकि मेरे चाचा और मेरे बुआ के बड़े लड़के दोनों फौज में थे और 1962 की लड़ाई में दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो उसी बीच में मेरा बुलावा आया था इंटरव्यू के लिए और मैं रातों रात, अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। मन में था कि मैं अफसर बनूं, तो मैं रात को अपना बोरिया बिस्तर बांधा और इलाहाबाद चला गया इंटरव्यू के लिए। भगवान बद्री विशाल की दया रही, सेलेक्ट हो गया और फौज में मैं आ गया। तब ये बड़ी लंबी कहानी शुरू हुई और आज भी मुझे गर्व है कि इतने सालों में नौकरी करते हुए मैं एक ऐसी रेजिमेंट में आया जो कि भारतीय नहीं बल्कि प्रथम विश्व युद्ध में

0: द्वितीय विश्व युद्ध में और भारत के जितने भी युद्ध लड़े हैं उसमें उन्होंने सर्वोत्तम काम किया है।
1: क्या उम्र थी जब आपने भारतीय सेना को ज्वाइन किया?
0: जब मुझे कमीशन मिला तो उस समय 20 साल से थोड़ा ज्यादा था।
1: अच्छा।
0: लेकिन जब आईएमए में गया तो आप लगाइए कि एक साल की वहाँ ट्रेनिंग होती है तो करते करते आप लगाइए कि 40 साल की कमीशन सर्विस, बल्कि दिल्ली से ही मैं रिटायर हुआ।
1: अच्छा, तो जब आप वहाँ गए क्या क्या सपने लेकर गए थे, कैसा रहा ये सफर? जब आईएमए में ट्रेनिंग शुरू हुई कितनी कठिन थी वो ट्रेनिंग? हम जानते हैं कि बहुत कठिन जो है वो ट्रेनिंग पीरियड रहता है।
0: जब एक दफे आप कुछ ठान लेते हैं, यही मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, विशेष तौर पर युवा वर्ग को भी बताना चाहूंगा कि जब आपने एक मन बना लिया, एक जुनून आपके मन में होना चाहिए कि मैंने ये करना है। और देखिए, हर एक आदमी फौज के काबिल नहीं होता, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। फौज में जाने वाला वो व्यक्ति होता है वो एक किस्म से योगी होता है, जो समर्पित है और उसमें राष्ट्र के प्रति भावनाएं सर्वोपरि है। जो व्यक्ति अपने समाज के लिए, अपने नाम नमक और निशान के लिए समर्पित है, वही आदमी फौज के लिए उपयुक्त है। बाकी कोई ऐसा व्यक्ति फौज में कामयाब नहीं होता है। इसलिए जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं तो इस भावना को, ये पोटेंशियल को ही वहां देखते हैं कि ये फला फला जो लड़का है क्या इसमें वो गुण है, ये जो मैंने आपको बताया, तभी वो छांटते हैं। और इसलिए इंटरव्यू मिला के, मेडिकल मिला के, 5 दिन का लंबा चौड़ा प्रोग्राम होता है
1: जी।
0: उसमें साइकोलॉजिस्ट बहुत बैठे रहते हैं क्योंकि आपको मनोस्थिति क्या है वो भांपते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए ये एक ऐसा सफर रहता है। और उसके बाद तो जब आप एक दफे यूनिट में जाते हैं तो यूनिट आपका घर बन जाती है,
1: परिवार जैसा हो जाता,
0: परिवार हो जाता है। आज भी मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो पुराने जो मेरे भुला लोग जिनके साथ मैंने काम किया है आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बैठते हैं, हम पुरानी बातें करते हैं। आप देखेंगे अपने जीवन में भी आपके असली मित्र वो होते हैं जो दुख में आपका साथ देते हैं।
1: लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आपने शब्द बड़ा सुंदर सा इस्तेमाल किया, भुला, इसका क्या अर्थ है?
0: भुला का मतलब छोटा भाई।
1: छोटा भाई मतलब सेना का जो वो यूनिट है वो आपका परिवार बना और आप उसमें घुल मिल गए। बिल्कुल
0: बिल्कुल, कोई उसमें दो
1: राय नहीं। क्योंकि ये शब्द जो है वो उत्तराखंड की जो भाषा है उससे संबंध रखता है।
0: बिल्कुल, भुला और भुली। और हमारा तो ये है कि जैसे रेजिमेंट में हम गढ़वाली बोलते हैं
1: जी,
0: ये आवश्यक है क्योंकि जब तक मैं अपने भुला लोगों को या अपने अधीनस्थ हैं लोगों को उनकी भाषा में ही संबोधित नहीं करूंगा तो मुझे नहीं अपनाएंगे वो
1: जी।
0: तो मुझे उनके साथ सिर्फ भाषा ही नहीं, उनके साथ पूरा भागदौड़ करनी है, उनसे बढ़िया होकर दिखाना है कि भाई आपसे भी मैं अच्छा हूँ, तब मुझे वो स्वीकार करते हैं। ये सफर लंबा होता है
1: जी। खाली कमीशन तो ऐसे ही नहीं पैदा होता, उसके लिए तो सब कुछ सोचना पड़ता है,
0: बहुत काम करना पड़ता है, तब आपको स्वीकार। एक दफे आपकी लीडरशिप को जब जवान स्वीकार करते हैं तब आप उस परिवार के एक अग्रणी सदस्य होते हैं।

0: शुरुआत में जो युद्ध आपने लड़े हैं उनके बारे में कुछ हमारे सुनने वालों को बताएं, अपने अनुभव बांटे।
1: देखिए, सबसे पहले जिस युद्ध में मुझे भाग लेने का अवसर मिला वो 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। आपको याद होगा कि 1971 का युद्ध दोनों फ्रंट पर लड़ा गया, एक ईस्टर्न फ्रंट पर और एक वेस्टर्न फ्रंट में। और आपको शायद ये भी याद होगा कि ईस्टर्न फ्रंट में जब युद्ध लड़ा गया तभी बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसके पहले उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो मैं जहां पर तैनात था मैं वेस्टर्न सेक्टर में था
0: जी,
1: और वहां सबसे भीषण युद्ध हुआ छम जोड़ियां के इलाके में। मैं उस टाइम यंग कंपनी कमांडर था, मुश्किल से 4 साल 4.5 साल की सर्विस थी,
0: मतलब उम्र रही होगी 24-25 साल।
1: हाँ, तो उसमें मेरे ऐसे अनुभव रहे हैं कि जब लड़ाई हुई थी दुश्मन के साथ तो दुश्मन के सामने हवाई जहाजों के नीचे टैंक के साथ और किस तरह से मेरे काफी कैजुअल्टी हुई लोगों की, आज उनकी याद आ रही है। आपने एक ऐसा विषय छेड़ा, आज मैं उनको याद कर रहा हूँ, मन ही मन प्रणाम कर रहा हूँ और रात आज का आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन ये एक सैनिक के जीवन में ये तो आता ही है, क्योंकि ये आपने जब सोच लिया कि तिरंगे की आपने रक्षा करनी है, राष्ट्र के प्रति आपने समर्पित होना है, तो बड़े अनुभव रहे। और ये अनुभव इतने हैं कि मैं समझता हूँ कि इस इंटरव्यू के बीच में बहुत कम होगा समय, तो ये हर जगह से रहा, चाहे किसी किस्म की लड़ाई हो। दुश्मन को हमने वहाँ काफी धूल चटाई वेस्टर्न सेक्टर में, और उसके बाद आप देखिए कि 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत एक ऐसा राष्ट्र बना जहाँ की 93,000 युद्धबंदी पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया, तो वो एक काफी भयंकर और भीषण युद्ध रहा
0: जी। और अब तो वो एक इतिहास बन के रह गया।
1: वो इतिहास है और उसके ऊपर इसको भी लाइटनिंग कैंपेन बोलते हैं
0: जी।
1: विश्व में ऐसा युद्ध जो 14 दिन का युद्ध बोलते हैं इसको, ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ, इतने कम दिनों में एक राष्ट्र को जन्म देने वाला, भारतवर्ष की जो सशस्त्र सेनाएं हैं विश्व की सर्वोत्तम सेनाओं में आकी जाती हैं
0: जी।
1: और उत्तराखंड में ही अमेरिकन ट्रूप ट्रेनिंग के लिए आते हैं, फ्रेंच ट्रूप ट्रेनिंग के लिए आते हैं, रशियन ट्रूप ट्रेनिंग में आते हैं, अभी अफगानिस्तान आए थे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वहां पर हर किस्म की टेरेन है, पहाड़ है, जंगल है। तो आज हमारा लोहा सशस्त्र सेनाओं का सब जानते हैं, तो आजकल भारत का प्रभुत्व है, सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत एक शक्ति के रूप में, इकोनॉमिक शक्ति ही नहीं बल्कि एक सैन्य शक्ति के रूप में भी जाना जाता
0: जी।
1: है
0: जी, और ऐसी सैन्य शक्ति जो अनुशासित है और जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, और हम कहेंगे हर भारतीय के दिल में अपनी सेना के लिए बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, क्योंकि वो लोग हैं जिनके कारण हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी रक्षा करने के लिए हमारी तीनों सेनाएं तैयार हैं, और आप जैसे काबिल नेतृत्व उसमें रहा तो फिर तो क्या ही बात है। मेरा

0: एक बात अभी आपने कही कि उत्तराखंड में हर तरह का टेरेन है, इसलिए वहां पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। अभी जो जवान उत्तराखंड से आते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं क्योंकि वो वहां रह रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा मतलब बिल्टअप अच्छा होता है, वो ताकत लड़ने की, हर तरह की परेशानियों को झेलने की वो काबिलियत वहां पे विकसित होती है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कठिन परिस्थितियां रहने की, पानी भी भर के लाना होता है बहुत दूर से, वहां की महिलाएं मातृशक्ति को भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्या कहेंगे?
1: नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बताया। जैसे अमूमन तौर पर कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन फौज के काम आती है
0: जी, क्योंकि वहाँ काम आती है।
1: हाँ, हम लोग उन लोगों को ही भर्ती करते हैं जो हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुदृढ़ है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी सैनिक हैं वो बड़ी विषम परिस्थितियों में रहते हैं, तो इसलिए एक व्यक्ति जो कि विषम परिस्थिति को जूझने की क्षमता रखता है वो फौज में बहुत सक्सेसफुल रहता है। तो मैंने ये देखा है कि मेरे इतने अनुभव के आधार पर, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, हर काम खुद करते हैं और फिर भी हंसते रहते हैं। हमारे आज पहाड़ अगर जिंदा है, आपने मातृशक्ति की बात की, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज अगर पहाड़ जिंदा है, हमारी मातृशक्ति के बलबूते पर ही जिंदा है। आज गाँव जिंदा है सिर्फ मातृशक्ति के ही ऊपर। बेशक पलायन बहुत हो रहा है, लेकिन आज गांव में जो भी लोग हैं सब काम करने वाली हमारी नारी वर्ग है
0: जी।
1: तो जितने भी हमारे जवान हैं, चाहे गढ़वाल के हों, चाहे कुमाऊं क्षेत्र के हों, पहाड़ी इलाकों के, वो आर्मी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। दूसरी बात, ये देवी देवताओं की जमीन है। हर एक व्यक्ति को अपने देवी देवताओं में बड़ी आस्था है। जैसे मेरी रेजिमेंट है, हमारा कोई भी कार्य शुरू करने से पहले मैं भगवान भद्र विशाल से प्रार्थना करके उनका वरदान लेना चाहता हूँ। बोला हमारी रेजिमेंट में कोई काम शुरू हो ही नहीं सकता, कोई भी काम, चाहे मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ, तो मुझे पंडित जी तिलक लगाएंगे और मुझे भद्र विशाल का प्रसाद देंगे। तो देखिए फौज में क्या होता है कि फौज धर्म वर्ग संप्रदाय और जाति से कोसों दूर है
0: जी।
1: क्योंकि हमारा जो धर्म है हमारा व्यक्तिगत है, हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमारे झंडे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने गढ़वाल राइफल के झंडे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने जान कुर्बान कर सकते हैं। मनोस्थिति ऐसी बढ़िया बनती है कि ये जो लोग हैं हमारे पहाड़ी लोग अपनी संस्कृति और संस्कारों में बड़ा गर्व करते हैं, इसलिए बहुत सफल रहते हैं।
0: संस्कृति और संस्कारों पर गर्व करते हैं और मन में जो उनका धर्म है वो राष्ट्र धर्म है, देश के लिए काम करते हैं।

0: देवभूमि की आपने बात की भंडारी जी, लेकिन कला भूमि भी तो है उत्तराखंड। बड़े बड़े चित्रकार हुए हैं, मुझे मालूम है कि आप खुद बहुत अच्छी चित्रकला में निपुण हैं। तो कुछ चित्रकला के बारे में बताइए जो कि उत्तराखंड की विरासत है, वहाँ की कला संस्कृति की पहचान है।
1: देखिए, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगा। अमूमन जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम हर एक अपने भाषण में भी और बातचीत में भी दो चीज बोलते हैं कि ये देवभूमि है, वीरभूमि है। निश्चित रूप से देवभूमि है, जितने भी हमारे धाम है सब यहाँ पर हैं, और उसके बाद वीरभूमि है। जैसा मैंने आपको बताया कि आज भी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में हमारे 1,00,000 सैनिक सेवारत हैं और 1,30,000 सेवानिवृत्त हैं
0: जी।
1: तो हर घर में आज ऐसा कोई घर नहीं उत्तराखंड पहाड़ों में आप जाएंगे जहाँ एक घर में एक व्यक्ति फौज में नहीं है।
0: जरूर होगा जी,
1: फौज में हो, असम राइफल में हो, या सीपीओ में हो, या जहाँ भी हो। तो इसलिए हमारा जो फैमिली है उत्तराखंड की, वो एक सैनिक फैमिली है
0: जी, फौजी फैमिली है।
1: हाँ, एक वो है। लेकिन एक ऐसा एंगल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। हम वीरभूमि देवभूमि नहीं, हम कला भूमि भी है। एक ऐसे चितेरे ने श्रीनगर गढ़वाल में जन्म लिया 1745-1750 में, जिसका नाम मौला राम था, और जिनको संरक्षण दिया हमारे गढ़वाल के राजा खानदान ने। आज देखिए, शाह जो हैं हमारे, जो टेरी में स्थापित हुए, पहले उनका जो किंगडम थी पौड़ी में थी
0: जी।
1: तो ये मौला राम को संरक्षण देने वाले वही थे। और उनका एक आर्ट है जिसको बोलते हैं गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये बसोली पेंटिंग से और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की एक शाखा है
0: जी।
1: इसके ऊपर आपने एक बैरिस्टर

0: कुंदीलाल जी का भी नाम सुना होगा, बड़े अद्भुत व्यक्ति थे
1: जी।
0: तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने इनके ऊपर बहुत शोध कार्य किया है और भारतीय सरकार ने इनके ऊपर एक किताब छापी है जिसमें मिनिएचर पेंटिंग का नाम लिखा हुआ है। और इसकी मिनिएचर पेंटिंग मैंने लंदन में बहुत देखी है, किंग एडवर्ड म्यूजियम में, और हेमवती नंदन बहुगुणा जो यूनिवर्सिटी में वहां भी है, और सबसे ज्यादा मैंने मुकुंदीलाल जी के घर में देखी है जब मैं लैंसडाउन में था। खुद पोस्टिंग था, लेफ्टिनेंट था बस। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जब 12-13 साल गुरखा लोगों का राज्य रहा गढ़वाल में, उन्होंने संरक्षण देना बंद कर दिया। 1815 में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने उस इलाके को लिया, तो वो पूरा संरक्षण ही समाप्त हो गया। दुर्भाग्यवश मौला राम का परिवार धीरे धीरे उजड़ गया, उनके लड़के भी विक्षिप्त हो गए, तो लोगों को आज बिल्कुल भूल गए
1: जी।
0: बल्कि मैं जब श्रीनगर जाता हूँ, मैं पूछता हूँ तो लोगों को पता नहीं कि ऐसा विशिष्ट प्रतिभा के धनी मौला राम श्रीनगर गढ़वाल में उनकी पैदाइश है। तो मैं जहाँ भी बोलता हूँ, जब भी उत्तराखंड के ऊपर बोलता हूँ, मैं हमेशा देवभूमि, वीरभूमि और कला भूमि
1: जी।
0: इसके अलावा आप हमारे देखेंगे हर चीज का आर्ट है। ये तो उनका मिनिएचर पेंटिंग है, आप देखिए गढ़वाल में और कुमाऊं में, दोनों क्षेत्रों में हर किस्म का आर्ट फेमस है।
1: चावल पीस कर और गेरू से जो रंगोलियां बनाई जाती हैं बहुत सुंदर सुंदर, वो अपने आप में ही एक कला है। और बहुत सारी मातृशक्ति हमारी गढ़वाल कुमाऊं की, उसमें बहुत निपुण है, सिद्ध हस्त है, और मैंने देखा है कि वो उसको स्वरोजगार के रूप में भी अपना रही
0: है। अभी हो रहा है, अभी उत्तराखंड के इन पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य सरकार की तरफ से भी काफी कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है और मातृशक्ति को भी काफी कुछ बेनिफिट मिल रहा है और लोन भी मिल रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि इन चीजों को चलाने के लिए और भी व्यक्ति चाहिए। अभी जो लोग सक्षम हैं, जो लोग बाहर हैं, दाहिने बाएं, उनको एक मन में प्रण करना है कि भाई मैं जहां का भी रहने वाला हूं, मैं कुछ दिन वापस जाऊंगा। अभी होता क्या है कि लोग आते हैं, गांव जाते हैं, कहते हैं भाई हम पूजा करने जा रहे हैं, और वह 2 दिन के बाद वापिस आ जाते हैं, तो उससे तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये कैसे हो, क्या हो, ये हर एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप नौकरी करते हैं, ठीक है नौकरी कर रहे हैं आप, उसके बाद प्रण करें कि आप वापस आप अपने रूट्स में जाएं, जिस माटी ने आपको इतना कुछ दिया है, आपका भी तो फर्ज बनता है आपको कुछ देना।

0: आप कहाँ जाकर बसे हैं?
1: मेरा गांव जहाँ मैं अभी बसा हूँ वहाँ से 9 किलोमीटर है
0: जी,
1: 9 किलोमीटर दूर है। मैं अपने घर में हूँ, मेरे घर में गाय हैं, मेरे घर में लोग हैं, मेरे घर में बगीचा है, सब कुछ है।
0: कहाँ पर बसे हैं?
1: रानीखेत में।
0: अच्छा, हम बता दें सुनने वालों को कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी इस समय रानीखेत में रहते हैं और बिल्कुल प्रकृति के बीच में रहते हैं, खेती करते हैं। कितनी गाय हैं आपके पास?
1: अभी तो 4 गाय हैं।
0: 4 गाय हैं,
1: बकरी भी है।
0: वाह, मतलब प्रकृति के जिसे कहते हैं बिल्कुल बीचों बीच है और खुली हवा का आनंद ले रहे हैं, सर्दियों का आनंद लेते हैं वहाँ पर। पहाड़ों में तो गर्मियां होती ही नहीं है, बड़ा सुहाना मौसम है।
1: एक मैं और बात बताना चाहता हूँ आपको रश्मि जी, जहाँ मेरा घर है वहाँ से आप 350 किलोमीटर की लंबाई के हिमालय श्रृंखला देखते हैं।
0: अच्छा,
1: मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में एंडीज जो है साउथ अमेरिका में, इतनी लंबी हिमालय श्रृंखला जो यहाँ की है कहीं नहीं दिखाई देती है। 21 पीक्स ऑफ मेजर पीक्स ऑफ इंडिया यू कैन सी फ्रॉम माय हाउस। तो जब मैं सुबह उठता हूँ मैं सब उन्हीं को उठकर प्रणाम करता हूँ, नंदा देवी को, त्रिशूल को, नंदा घुंटी को, नंदा कोट को, पंचचूली को, क्या क्या बताऊं मैं। 21 मेजर पीक्स हैं। मेजर पीक का मतलब 20,000 फुट से ऊंची,
0: बर्फ से ढकी हुई
1: जी। तो ऐसा लगता है कि आप एक थैला ले जाओ और वहां से अपने थैले में चांदी भर के ले आओ और ले जाओ।
0: क्या बात है, कितने भाग्यशाली हैं आप कि कितने लोग होंगे हमारे देश में खिड़की से जब झांके तो एक पूरी सुंदर सी पर्वत श्रृंखला, हरी भरी वसुंधरा जिसे हम गीतों में सुनते हैं और कल्पना करते हैं, वो कल्पना आप जीवन में जी रहे हैं, बहुत सुंदर। और ये कल्पना को हम सब भी उतार सकते हैं जो उत्तराखंड में रहने वाले, उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड से निकले हैं, वो वापस आएं। तो मुझे लगता है इसकी जरूरत है कि हम लोग वापस जाएं और अपनी उस धरा को जिसने हमें पाला है, पोषण दिया है, कहीं ना कहीं अपने अनुभव दें, ज्ञान दें, वहां रहें, वहां के जीवन को बेहतर बनाने में काम करें। और मुझे लगता है कि ये कुछ कुछ हुआ है, कोरोना में बहुत लोग वापस गए हैं, उन्हें थोड़ा समझ में भी आया है। एक कठिनाई इसमें जो आती है वो है शिक्षा की, रोजगार की और मेडिकल फैसिलिटी की, इसके लिए आप क्या देखते हैं?
1: जो आपने बात बताई बिल्कुल सही है। देखिए जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड प्लेन इलाके वाला उत्तराखंड नहीं है, क्योंकि वहां तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हम विषम परिस्थितियों की बात करते हैं तो आप देखिए, आप उन इलाकों की बात करते हैं जैसे पिथौरागढ़, ऊपर का इलाका, पहाड़ी इलाका, चमोली का इलाका, उत्तरकाशी का इलाका, टेहरी का इलाका, पौड़ी का इलाका। दुर्भाग्यवश वहां से चूंकि पलायन बहुत हुआ है और 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जहां से बहुत पलायन हुआ है, पौड़ी और अल्मोड़ा, अभी भी वहां पर अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन और रोजगार, ये प्रॉब्लम अभी है। शायद ये एक भारी कारण रहा कि वहां से पलायन निरंतर आज भी चल रहा है। राज्य कर रहा है काम, ऐसी बात नहीं है, कुछ हो रहा है। लेकिन तभी मैंने आपको बोला, आपने शायद नोट किया होगा, मैंने कहा कि आज हम लोग जिस स्थिति में, अगर डॉक्टर हैं तो उनको ये भी सोचना है कि मैं वापस जाऊं, मैं कुछ शुरू करूं वहां पर, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट करना बहुत आवश्यक है। और ये मैंने एक बड़ी भारी कमजोरी देखी अपने इतने साल रहने में, हमारा एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की कमी है, इसकी वजह से कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है बिल्कुल नगण्य है वहां पर। जब तक आप सब मिलजुल के कोई भी आप इंडस्ट्री शुरू करें, कुछ भी करें, आज सरकार पैसा देने को तैयार है, लेकिन मिलजुल के आप काम करें।
0: स्वरोजगार की क्या दिशा और दशा है अभी फिलहाल वहाँ पर?
1: रोजगार की दिशा थोड़ी, मैं समझता हूँ थोड़ी उसमें भी कमजोरी है। देखिए जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सब प्लेन्स में है, ऊपर पहाड़ में इंडस्ट्री चढ़ नहीं पाई, और वहाँ का जैसा आपने बताया वातावरण इतना साफ है, वहाँ बड़ी इंडस्ट्रीज लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं काफी समय तक यूरोप में रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में रहा हूँ, वहां पर आपको ऐसी इंडस्ट्री लगनी चाहिए जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। मैं आपको गिनाना चाहता हूँ, जैसे टीवी पार्ट्स बनाने हैं, घड़ियां बनानी है। अब स्विट्जरलैंड में आप देखिए हर घर में एक एक पार्ट बनाते हैं।

0: जी
1: आप चिप्स बनाते हैं, तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं वो उत्तराखंड में क्यों नहीं बन सकते? वहाँ तो बिल्कुल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, धूल धड़क का कुछ है ही नहीं।
0: मैंने देखा कि वहाँ पर सौर ऊर्जा पर बहुत अब जोर दिखाई दिया, और ये भी देखा कि देश के विभिन्न हिस्सों से भी ऐसे उद्यमी आए हैं जिन्होंने वहाँ पे सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगाए हैं। इस समय तो प्राकृतिक फार्मिंग पे बड़ा जोर है, पूरा विश्व, हमारा अपना देश प्राकृतिक खेती है जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उस पर बहुत जोर है। और उत्तराखंड तो खुद ही पूरा ऑर्गेनिक है, कहते हैं ना छुआ नहीं रसायनों ने जिसे, वहाँ की धरती बिल्कुल शुद्ध है। तो कहीं इस प्रकार के स्वरोजगार की भी जरूरत है जिसमें ब्रांडिंग होनी चाहिए।
1: मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम कहाँ पर है
0: जी।
1: देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप कुछ भी कीजिए, हमारे आज पहाड़ में लोग हैं जो कि इस विषय में काफी काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिगत मामला है। सवाल ये है कि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट पहाड़ में इतना खराब है कि उत्पाद जो भी आपके दूरस्थ स्थान से, आप उसको ला नहीं सकते नीचे,
0: ला नहीं सकते। अच्छा, ये बहुत समस्या,
1: ये बड़ी भारी समस्या है पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां आपने सौर ऊर्जा की बात की, मेरे घर में खुद लगे हैं सौर ऊर्जा के, उसमें क्या है कि मैं पिछले करीबन 15 साल से सब कुछ जो घर का पानी है वो गर्म होता है, बिजली पैदा करते हैं वो ग्रिड में जाती है, उससे मुझे पैसा मिलता है
0: जी।
1: तो कोई डाउट नहीं है, ये बड़ी अच्छी चीज है। आज सब्सिडी भी दे रहे हैं लोग बाग, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर से वो डीसी बनती है, तो डीसी को इसी कन्वर्शन के भी प्लांट देते हैं वो, और उसको फिर आप मेन ग्रिड में दे देते हैं, तो वही ग्रिड जो है लोगों को बढ़ती है और उसका आपको पैसा मिलता है। तो ये अभी धीरे धीरे हो रहा है।
0: इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि जो चिप्स या घड़ी के छोटे छोटे कारखाने वहाँ लगाए जाने,
1: मतलब इस तरह के इको फ्रेंडली जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, मैं बोलता रहता हूँ सबको, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज जो है आप इसको स्थापित कीजिए
0: जी।

0: पर्यटन की विशाल संभावनाएं हैं उत्तराखंड में।
1: पर्यटन में तो हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ पर्यटन के नाम पर भी जैसे दुनिया भर के होम स्टे बन रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन होम स्टे में आप क्या लोकल लोगों को रोजगार दे रहे हैं या बाहर वाले वो काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बड़ा विवाद है आजकल पहाड़ में
0: जी।
1: एक होटल लॉबी ने ये भी विवाद उठाया है कि अगर आप होम स्टे कर रहे हैं तो होम स्टे लोकली करने चाहिए ना, बाहर वाले आएंगे तो फिर लोकल वालों को कोई फायदा नहीं है, क्यों लोग वहाँ है नहीं अभी,
0: ये एक, सब सोचने की जरूरत है।
1: एक बैलेंस की जरूरत है और ये तब तक नहीं होगा कि जब तक हम जमीन पर नहीं बैठेंगे।
0: मतलब योजनाएं इस प्रकार की हो, धरातल पर जुड़े हुए जो लोग हैं उन तक पहुंच पाए उनके फायदे, और एक दृष्टिकोण हो विकास के लिए। तो हम तो ये कहेंगे कि आप जैसा अनुभवी व्यक्ति वहां मौजूद है जिसने कि उत्तराखंड प्रशासन में भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को संभाला है, और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, आप जो सेना की जो आपकी पृष्ठभूमि है, एक आपने प्रशासनिक वहां पे भी काम किया है, जो कारगिल का युद्ध था उस समय भी आप सेवारत थे और उस समय तो प्रवक्ता के रूप में आपने हमें मालूम है काम किया है, और आज गोल्ड के स्टूडियो में जो आप आए हैं, इतना आपने समय दिया है हमें, तो हमें तो आपके जो अनुभव है मन तो कर रहा है सुनते जाएं, पर घड़ी हमें कह रही है कि अब समय हो चला है। चलते चलते लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी, अगर आप कुछ हमारे सुनने वालों को संदेश देना चाहेंगे तो कहें।
1: मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब मैंने फौज ज्वाइन की तो मैं युवा था, मन से अभी भी युवा हूँ। भारतवर्ष का 64% हमारी जो जनसंख्या है युवा वर्ग की, तो आज भारत का भविष्य युवा के ऊपर आधारित है, और यही मेरा संदेश सबके लिए है कि आज युवा को दशा और दिशा देने की आवश्यकता है, हर स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, और घर घर में माता पिता का बड़ा भारी कर्तव्य है, उनको सांस्कारिक बनाए, उनको सांस्कृतिक की अपनी कहाँ के रहने वाले हैं उसमें गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं।
0: बहुत अच्छा संदेश, और युवाओं के लिए तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपनी भाषा पर, संस्कृति पर, देश पर अगर गर्व होगा तो एक सुंदर राष्ट्र का निर्माण होगा, एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। लेफ्टिनेंट जनरल भंडारी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम समेटते हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है आज के मेहमान। तो रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा, नमस्कार,
1: धन्यवाद।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित

0: इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय முதலமைச்சர் இன் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

12:11:04 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz समय है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम का जिसका आपको बेसब्री से रहता है पूरे सप्ताह इंतजार यानी कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी और आज आपके साथ हूं मैं आशीष नमस्कार। आज जो हम आपके लिए फिल्म लेकर आए हैं वो आरके नारायण के बहुत ही फेमस उपन्यास द गाइड पर आधारित है। जी हाँ, ये उपन्यास उन्होंने लिखा 1958 में और द गाइड पर आधारित इस फिल्म को बनाया, नाम दिया गाइड 1965 में नवकेतन के बैनर तले। विजयानंद ने इसका निर्देशन किया और देवानंद ने इसका निर्माण किया। सफल रही ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर। देवानंद और वहीदा रहमान मुख्य भूमिकाओं में थे और उसके बाद इस फिल्म ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि इतिहास रच दिया और 14वें फिल्मफेयर पुरस्कार में लगातार 7 पुरस्कार अपनी झोली में डाले। फली मिस्त्री थे इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर और एडिटर थे विजयानंद खुद और साथ में बाबू शेख। यादगार संगीत एसडी बर्मन का और यादगार गीत शैलेंद्र के। फिल्म में देवानंद ने रोल निभाया राजू गाइड का। रोजी मार्को और मिस नलिनी दो नामों से किरदार निभा रही थी इसमें वहीदा रहमान। लीला चिटनिस थी राजू के मां के रूप में और किशोर साहू थे मार्को के किरदार में। गजानन जागीरदार भोला के रूप में थे और इसके अलावा प्रवीण पॉल, अनवर हुसैन और अनवर हुसैन जो थे वो गफूर के रोल में थे जो कि राजू के जिगरी दोस्त का किरदार निभाता है। राशिद खान और राम अवतार, नर्मदा शंकर, एम उस्मान मलिक, नाजिर कश्मीरी ये सभी छोटी छोटी भूमिकाओं में थे लेकिन सभी ने अपनी अपनी अलग छाप छोड़ी। कहानी शुरू होती है और राजू गाइड जो है वो जेल से छूटता है। जेल से छूटने के बाद एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है, सोचने लगता है कि अब किस तरफ जाए। शहर की तरफ जा रहा था लेकिन यकायक पैर ठिठक कर रुक जाते हैं। मन से एक आवाज निकलती है कि राजू उस शहर में मत जा जहां पर सभी ने तुझे तिरस्कार दिया, नकार दिया और अब तो वो बिल्कुल भी तुझसे बात तक कहीं कोई नहीं करेगा क्योंकि अब तो सजा याफ्ता मुजरिम है। 2 साल की सजा काटकर अब तू जेल से निकला है तो कौन तेरे को अपने पास बिठाएगा और कौन तेरे साथ नाता रखना पसंद करेगा। लिहाजा वहां मत जा, मां को तूने दुख दिया, रोजी को दुख दिया, तमाम लोगों को दुख दिया, वहां तेरा कोई नहीं। एक अलग राह पकड़ ले, एक अलग दुनिया बसा ले जहां तुझे कोई नहीं जानता हो। मन की आवाज सुनकर राजू के कदम उठ पड़े एक ऐसी राह पर जो ना जाने उसे कहां ले जा रही थी।

जाते जब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ।

हंसी कहना आई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

कई रास्तों को पार करता हुआ, दर दर की ठोकरे खाता हुआ राजू पहुंच जाता है कैसे निर्जन वीरान एक खंडर में, एक गांव में, जहां पर वो आसरा लेता है एक मंदिर में। बहुत पुराना टूटा फूटा एक मंदिर है जहां कभी कोई रहने नहीं आता। वहां आसरा लेता है, रात को ठंड से ठिठुर रहा होता है। वहां से साधुओं की एक टोली गुजर रही होती है। साधु उसको ठंड से कांपता देख उसके ऊपर एक नारंगी रंग का, भगवा रंग का शॉल डाल देते हैं। सुबह उठता है राजू तो देखता है कि गांव का एक आदमी भोला उसे एकटक निहार रहा है। पूछने पर भोला बताता है कि मैं यहां से गुजर रहा था, जीवन से मायूस हो चुका हूं। मेरी बहन जो है वो शादी करने को तैयार नहीं। मैंने देखा आप पर नजर पड़ी, मुझे लगा कि आप कोई सिद्ध आत्मा है, एक ज्ञानी पुरुष है, तो स्वामी इस गांव पर कृपा करें। राजू कहता है कि मैं कोई स्वामी नहीं, मैं एक आम इंसान हूं। लेकिन गांव वालों का विश्वास दिन ब दिन उस पर बढ़ता ही जाता है। राजू के कहने पर भोला की बहन भी विवाह के लिए तैयार हो जाती है। धीरे धीरे गांव के सभी लोग राजू को स्वामी के नाम से पुकारने लगते हैं और समझ जाते हैं कि इस गांव का उद्धार करने के लिए ही राजू ने इस धरती पर अपने चरण रखे हैं। और उधर राजू की रिहाई का जब समय आता है तो जेल पहुंचती है उसकी मां और दूसरी तरफ से रोजी। हालांकि मां रोजी से बात नहीं कर रही है, लेकिन जब जेलर उन्हें बताता है कि राजू के अच्छे चाल चलन की वजह से उसे 6 महीने पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया तो दोनों सकते में आ जाती हैं। फिर आखिर राजू गया तो गया कहां? वापस मायूस होकर आने लगती हैं तो रोजी हाथ पैर जोड़कर उसकी मां को अपनी गाड़ी में बिठाती है और कहती है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं मां, मेरी कोई गलती नहीं है। तब राजू की मां कहती है मैं कैसे मान लूं, मेरा एक ही एक बेटा था जो तुम्हारे कारण मुझसे बहुत दूर हो चुका है। तब रोजी सारी सच्चाई

राजू की मां को बताती है। कहानी जाती है फ्लैशबैक में। राजू मशहूर गाइड है उदयपुर का। तमाम लोग वहां पर आते हैं, स्टेशन पर उतरते ही राजू का पता पूछते हैं और राजू उन्हें शहर भर घुमाता है। छोटी सी एक दुकान भी है स्टेशन पर, जो कि राजू के पिता ने एक अच्छे समय में ली थी, लेकिन राजू उस पर ध्यान नहीं देता। उसे तो केवल और केवल गाइड बनने का धुन सवार है। एक दिन मार्को नाम का एक धनी व्यक्ति वहां पर आता है, रोजी उसकी पत्नी है, और वहां पर आता है और गुफाओं देखने की बात करता है। वो आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्वविद है, और उसे पुरानी गुफाएं देखने की दिलचस्पी है। राजू उसका रहने का अरेंजमेंट, उसका सब कुछ बंदोबस्त एक डाक बंगले में करता है। रोजी और मार्को के बीच में तनाव और दूरियों को भांप लेता है राजू, और साथ ही साथ उसका दोस्त गफूर, जिसकी टैक्सी में रोज मार्को उन गुफाओं में उस पहाड़ी पर आता जाता है। बातचीत होती है, पता चलता है कि रोजी ने गरीबी के कारण मार्को से शादी की है, क्योंकि रोजी की मां एक देवदासी थी और वो नहीं चाहती थी कि इस माहौल में रोजी का जीवन आगे चले। लिहाजा मार्को एक उम्र दराज आदमी था, मजबूरन रोजी की शादी मार्को के साथ हो जाती है। लेकिन मार्को वो प्यार, वो सुख एक जो पत्नी को मिलना चाहिए वो नहीं दे पाता, और रोजी को लगता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है मार्को ने। दोनों के बीच दूरियां और तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इधर मार्को बिल्कुल भी उसके पर ध्यान नहीं दे रहा और रोजी को कहता है तुम वापस जाना चाहो तो चली जाओ, ये पैसे रखे हैं। तब रोजी को ख्याल आता है कि क्यों ना अपने मन की आस पूरी करे। मन की आस जो बचपन से वो चाहती थी, एक नर्तकी बनना, एक क्लासिकल डांसर बनना, लेकिन मार्को ने उसकी इस कला की कभी कदर नहीं की। उसने कहा मेरे घर में कभी भी इस तरह का नाच गाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। राजू को लेकर पहुंच जाती है बाजार, वहां से लेती है घुंघरू, अपने पांव में घुंघरू बांधकर खुशी के मारे मानो उछल पड़ती है। उसे मानो मन मांगी मुराद मिल गई। राजू भी हैरान है कि कल तक जो एक औरत 40 साल की लगती थी, शांत रहती थी, खामोश रहती थी, खुदकुशी करने तक की कोशिश की थी उसने, आज वो एकदम बच्ची की तरह किस तरह हो गई। तब वो पूछता है रोजी से कि आखिर क्या तुमने आज पा लिया है जो तुम इतने खुश हो। तब रोजी अपने मन की बात राजू को कुछ इस तरह बताती है।

लेकिन शायद किस्मत को रोजी की ये खुशी ज्यादा दिन तक रखने का हक नहीं दिया किस्मत ने। एक और खेल खेला, क्रूर मजाक किया रोजी के साथ। रोजी को पता चला कि मार को काम के बहाने गुफाओं में आदिवासी औरतों के साथ रंगरलियां मना रहा है, उसको धोखा दे रहा है। रोजी वहां पहुंचती है और अपनी आंखों से सारी सच्चाई देख लेती है। उसके बाद मार्को और रोजी में तकरार होती है, बहस होती है, यहां तक कि मार्को रोजी पर हाथ भी उठाता है और जवाब में रोजी भी मार्को के चेहरे पर तमाचा जड़ते हुए इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देती है और मार्को का घर छोड़ देती है। लेकिन अब वो जाए तो जाए कहां, अकेली अबला असहाय औरत का इस दुनिया में कोई नहीं। तब राजू उसे अपने घर में शरण देता है और साथ ही कहता है कि आत्महत्या करने का विचार अब हमेशा अपने दिमाग से निकाल दो। एक बार नहीं दो बार तुमने कोशिश की, लेकिन आत्महत्या करना एक पाप है और लिहाजा अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा जीवन मैं संवारूंगा। हालांकि रोजी कहती है कि नहीं, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तब राजू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। और साथ ही साथ उससे करता है वादा

राजू से विश्वास तो दिला देता है कि हर कदम पे तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा और हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। लेकिन अपने घर में आसरा देने के बाद पूरा मोहल्ला, क्या पूरा शहर ही मानो राजू का दुश्मन बन गया। तरह तरह के ताने, तरह तरह के फप्तियां कसने लग गया और उसके रोजी और उसके रिश्ते पर सवाल उठने लग गए। यहां तक कि मां भी विरुद्ध हो गई। मां ने भी यही कहा कि इस लड़की को घर से निकाल दो। लेकिन राजू ने किसी की नहीं मानी। तब राजू के मामा आते हैं घर, वो भी बहुत डांटते फटकारते हैं, बहसबाजी होती है, लेकिन राजू अपने इरादे से टलता नहीं। हार कर मामा राजू की मां को अपने साथ ले जाते हैं। ये सदमा भी राजू बर्दाश्त कर लेता है और कहता है रोजी से, तुम रो मत, मां का गुस्सा 4 दिन का है, जल्द वापस आ जाएंगी। अपने रियाज पर ध्यान दो, तुम्हें एक बहुत बड़ी कलाकार बनना है, बहुत नाम कमाना है। बस अब राजू का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, रोजी को नलिनी के रूप में दुनिया के सामने लाना। और इसके लिए तमाम तरह के लोगों से वो मिलता है, गुजारिश करता है, सिफारिश करता है, ताकि नलिनी को मंच मिल सके। और राजू की मेहनत रंग लाती है और रोजी, कल की रोजी आज की एक मशहूर क्लासिकल डांसर नलिनी बन जाती है।

12:38 आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz कार्यक्रम वो जो कि फिल्म थी और आज की फिल्म है 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड। रोजी अब एक नामचीन कलाकार बन चुकी है, नलिनी के रूप में पूरा देश उसका दीवाना है, देश विदेश में शोज हो रहे हैं, पैसा बरसात की बरस रहा है, नया घर, नया बंगला, नई गाड़ी, तमाम शानो शौकत रोजी और राजू के कदमों में है। पूरे शहर भर के बड़े बड़े हस्तियां रोजाना नलिनी और राजू के घर पर दावत के लिए आते हैं। एक नाम बन चुकी है नलिनी और राजू उसका मैनेजर है। सारा हिसाब किताब राजू के हाथ में ही रहता है और अब राजू अपने दिल की बात कहता है कि अब दूरियां बर्दाश्त नहीं होती और रोजी को कहता है क्यों ना हम शादी कर लें। रोजी भी हां कर देती है।

इंसान जो चाहे अगर वो उसको इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। कुछ ऐसा ही होता है राजू और रोजी के साथ। शादी के सुंदर सपने बुन रहे हैं लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक बार फिर मार्को आता है। राजू की नजर पड़ जाती है थिएटर में मार्को पर। रोजी से मिलने आता है, हाथ में किताब है द केव्स, उन्हीं गुफाओं के बारे में किताब छपी है जो राजू यहां पर लेकर गया था। किताब में राजू का भी जिक्र है, राजू गाइड की मदद से मैं यहां तक पहुंचा। साथ में फूल लेकर आता है लेकिन राजू मिलने नहीं देता मार्को को रोजी से। अब मार्को वापस चला जाता है। एक चाल और चलता है, एक बैंक में लॉकर में कुछ गहने रखे हैं, जेवरात रखे हैं, जिसको वो छुड़ाना चाहता है और वो चाहता है कि सारे जेवरात रोजी को मिल जाएं। लेकिन उसके लिए एक फॉर्म पर रोजी और मार्को दोनों के दस्तखत होने जरूरी हैं। बैंक वाले आते हैं तब राजू के मन में एक शक और आता है कि कहीं रोजी फिर से मार्को के पास न चली जाए। लिहाजा रोजी को मिलने की बजाय, उसके दस्तखत लेने के बजाय राजू जाली दस्तखत करके बैंक मैनेजर को वो फॉर्म वापस लौटा देता है। मार्को को ये बात पता चल जाती है और इधर रोजी को पता चल जाती है वो बात कि मार्को आया था किताब लेकर। वो राजू से पूछती है तो राजू मना कर देता है। रोजी और राजू के बीच में दूरियां लगातार बढ़ने लग गई हैं। दिन रात राजू शराब और जुए में लिप्त रहता है अपने यार दोस्तों के साथ। हालांकि वो रोजी को कहता है कि तुम्हारा स्टेटस बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। रोजी को लगता है कि मार्को की तरह ही राजू भी पैसे के पीछे अंधा हो गया है और रोजी थक चुकी है रोज रोज की भाग दौड़ से। दोनों में तनाव बढ़ रहा है और राजू फिर से रोजी को कहता है क्यों ना हम एक नई जिंदगी शुरू करें, मुझे माफ कर दो सारी गलतियों के लिए। तब रोजी कहती है कि नहीं, दिल के चारों तरफ एक पिंजरा सा हो चुका है, कोई बात कोई जज्बात अब इस दिल में नहीं आते हैं। दोनों में बहस होती है और राजू रोजी के लिए गुहार लगाता है।

राजू अब समझ गया है कि रोजी उसे माफ नहीं करेगी। उसकी ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अगले दिन सुबह होती है, रोजी थिएटर जाने के लिए निकली और राजू अपने पुराने गाइड वाली पोशाक में आ गया है। कहता है कि अब से मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा अलग। रोजी उसे लाख समझाती है, लेकिन राजू वहां से चला जाता है। सीधा पहुंचता है अपने गांव, अपने घर उदयपुर। अपनी माँ को खत लिखता है कि तुम्हारे बिना मैं अकेला पड़ गया हूं, माँ तुम घर आ जाओ। माँ आती है घर, लेकिन उससे पहले पुलिस पहुंच जाती है। राजू का पर्दाफाश हो चुका है। जाली दस्तखत के इल्जाम में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। राजू आखिरी बार नलिनी यानी रोजी से मिलने के लिए उसके थिएटर में पहुंचता है। तब नलिनी भी

यही कहती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तब राजू कहता, मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे समझ पाओगी, लेकिन तुमने भी मुझे नहीं समझा। तब एक बार फिर रोजी यानी नलनी आज की मुंह फेर लेती है राजू से।

0: क्या से क्या।
1: राजू को सजा हो जाती है, रोजी को पछतावा होता है। क्या वो राजू को बचाने के लिए एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकती थी। जेल में मिलने जाती है, राजू से रोकर अपने दिल का हाल सुनाती है और वादा करती है कि 2 साल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और उसके बाद हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। राजू भी उससे वादा करता है और ये कहानी यहां पर फ्लैशबैक की खत्म होती है। कहानी आगे बढ़ती है। राजू एक स्वामी बन चुका है। जिस गांव में रहता है वहां बच्चों के लिए उसने पाठशाला खुलवाई है, अस्पताल खुलवाया है, डाकघर खुलवाया है। लोग उसे भगवान की तरह पूछते हैं। बच्चों को कहानी सुनाता है कि बचपन में मेरी मां ने सुनाई थी कि एक महात्मा होते हैं, अकाल पड़ता है और महात्मा 12 दिन तक व्रत रखते हैं और पानी बरस जाता है। भगवान को मजबूर होकर महात्मा के दिल की आवाज, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ता है। किसी को क्या पता था ये कहानी आगे चलकर सच्चाई में तब्दील हो जाएगी। होता यूं है कि गांव और उसके आसपास के कई जिलों में भयंकर अकाल पड़ता है। बूंद बूंद के लिए दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम कर चुकी है।

नायके ने टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय को तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के फौरन बाद मुबारकबाद पेश की। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी के साथ साथ एनडीए कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में मजमुई तौर पर पार्टी के 8 अरकान असेंबली ने डॉ हेमंत बिस्वा सरमा का नाम तजवीज किया। वहां मौजूद दिगर अरकान असेंबली ने इसकी तायीद की। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीरे सनत संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। गुरुग्राम में काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक पीएमएलए की एक खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि मगरबी एशिया में भी कशीदगी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तंबीह भी की है कि अगर टकराव में इजाफा होता है तो सभी फरीकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने गुजरात और राजस्थान में कल तक शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक शुमाल मगरबी भारत में भी अगले 7 दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में रफ्ता रफ्ता 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस का

0: इजाफा होने का इम्कान है। चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोद पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट ऑफ के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हेमंत बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनात संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में शंघाई में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's Industry Minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being.
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
2: भारत की जनता कह रही है कि हमें पीड़ चाहिए, हमें

0: Pradesh cabinet will take place at 3 p.m. this afternoon. Chief Minister Yogi Adityanath met Governor Anandiben Patel last evening. Sanjay Prasad, Additional Chief Secretary to the Chief Minister and the State Information Department, confirmed that the swearing-in will begin at Jan Bhavan in the state capital from 3 p.m. onwards. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Midday News. A special PMLA court in Gurugram granted 7-day remand of Punjab Industries Minister Sanjeev Arora to the Enforcement Directorate or ED in a money laundering case. The ED yesterday arrested Sanjeev Arora from Chandigarh in a case linked to alleged fraud in goods and services tax or GST transactions of over 100 crore rupees. He was produced before the court by the agency officers seeking custodial interrogation. The Punjab minister was arrested following a day-long search at his four premises, including his residence, his associated entities, and one office premises belonging to Hampton Sky Realty Limited, which is also under the agency's scanner in the case. The ED's action was part of an enforcement case information report recorded on the 5th of this month. The Ministry of Education will organize Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026 in all schools across the country during the summer vacation. In a social media post, the ministry said that the week-long camp will provide students an engaging opportunity to learn basic communication skills in various Indian languages through interactive activities. Russian President Vladimir Putin has said that he believes the conflict in Ukraine was coming to its end. He also expressed hope that tensions in West Asia would also be resolved soon, warning that all sides would suffer if the conflict escalated further. Russia's 2022 invasion of Ukraine triggered the most severe breakdown in relations between Moscow and the West since the 1962 Cuban Missile Crisis. When asked whether he was open to talks with European leaders, Putin said that his preferred person for discussions was former German Chancellor Gerhard Schroeder. The cruise ship linked to Hunter virus outbreak arrived at Tenerife, which is the largest of Spain's Canary Islands. The Dutch-flagged MV Hondius arrived at Spain's port of Granadilla today, escorted by a civil guard vessel. The ship had left for Tenerife on 6th of May after WHO and European Union asked Spain to manage the evacuation of its passengers. On the 2nd of this month, WHO received a notification regarding a cluster of severe acute respiratory illness, including two deaths and one critically ill passenger aboard a Dutch-flagged cruise ship. At the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai, India's women's recurve team of Deepika Kumari, Ankita Bhakat and Kumkum Bahur defeated host China in a dramatic shoot-off to win the gold medal today. After the match ended, tied at 4-all following four sets, the Indian trio held their nerve to edge past China 5-4 in the shoot-off. Veteran Deepika Kumari sealed India's first Archery World Cup gold since 2021 with a crucial final arrow under pressure. Earlier, India had stunned record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-finals. And an IPL Cricket Super Sunday doubleheader will feature crucial matches for playoff qualification today. In the first match of the day, Chennai Super Kings will lock horns with Lucknow Super Giants at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In another clash of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians at the Shahid Veer Narayan Singh International Stadium in Raipur at 7:30 p.m. Yesterday, Gujarat Titans defeated Rajasthan Royals by 77 runs in Jaipur, chasing a massive target of 230 runs set by Gujarat. The host team Rajasthan got bundled out for just 152 runs in the 17th over. India Meteorological Department has forecast heatwave conditions over Gujarat and Rajasthan till tomorrow. Warm night conditions are likely to persist in places over West Rajasthan during the next 4 to 5 days. IMD further predicted a gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest India during the next 7 days. The weather agency has also forecast heavy rainfall over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. World Lupus Day is being observed today globally. The day is marked to raise awareness about lupus, which is a complex autoimmune disease in which the immune system mistakenly attacks healthy tissues and organs, causing widespread inflammation and damage to joints, skin, kidneys, heart, and lungs. Lupus has no known cure and often put a devastating impact on daily life. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma, unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam, stakes claim to form government. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी. जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप

0: लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एन्द पोरुळैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் நோ மந்திரியோ நே பி சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
3: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
4: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज

0: जी तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेरीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और यह रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले

रात दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। आज जो नाटक हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है थैला। इस कहानी के लेखक हैं नरेंद्र जोशी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं विनोद कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक थैला।
1: गणेश, अरे गणेश, कितनी बार कहा है हाथ पकड़ कर चला कर, मेले में कहीं खो गया तो?
2: हाँ माँ, आ रहा हूँ माँ।
3: माँ?
1: हाँ।
3: देखा आपने?
1: क्या?
3: कितना बड़ा झूला है माँ।
1: झूलना है क्या?
3: नहीं, मैं तो बस देख रहा था माँ।
4: कैसी हो गणेश की माँ?
1: कैसी हो राधा की माँ?
5: मैं ठीक हूँ चाची, नमस्ते।
1: अरे जीती रहे जीती रहे, बड़ी अच्छी लग रही है इस फ्रॉक में। अरे गणेश, कुछ खाया तूने?
3: नहीं अभी नहीं।
5: ये ले खट्टी मीठी गोलियाँ, खा ले, बहुत अच्छी हैं, माँ ने मुझे अभी दिलाई हैं।
3: नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी।
5: अरे ले ना।
3: अच्छा ठीक है, दे दे।
5: कैसी हैं? अच्छी है ना?
3: ये तो बहुत अच्छी है, तू भी खाना।
5: नहीं नहीं, मुझे नहीं खानी।
3: अरे एक और खा ले।
5: कहा ना नहीं खानी।
3: अच्छा ठीक है बाबा।
1: नीता बहन, तुम तो जानती हो सब कुछ, उनके जाने के बाद बस गणेश ही है जिसके लिए मैं जिंदा हूँ।
6: ऐसा नहीं कहते सुमित्रा बहन, हम है ना, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना
1: जरूर।
5: गणेश तू कुछ लेगा?
3: नहीं।
5: क्या लेगा बताना?
3: रबर।
5: बस रबर? अपनी माँ को बोलना, वो ले देंगी।
3: नहीं नहीं नहीं, माँ से नहीं कहूँगा।
5: क्यों? मुझे तो जो भी चाहिए होता है मैं बाबा अम्मा से बोल देती हूँ और वो ले देती हैं।
3: अच्छा
1: और बताओ सुमित्रा बहन। पूछो मत नीता बहन, समझो किसी तरह घर में चूल्हा जल जाता है।
6: तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा।
4: अच्छा मैं चलूं, कुछ सामान भी खरीदना है।
6: हाँ हाँ ठीक है,
4: चलो राधा बेटी।
5: गणेश, थैला चाचा ने कहा था ना, अगर किसी से कुछ मांगना है तो भगवान से मांगो।
3: हाँ कहा तो था।
4: राधा बेटी जल्दी करो, फिर देर हो जाएगी।
5: हाँ माँ आई, चलो चलो।
4: अच्छा बहन चलती हूँ, फिर मिलूंगी।
1: ठीक है बहन, फिर मिलते हैं। गणेश, गणेश।
3: जी माँ।
1: चल बेटा अब चलते हैं।
3: हाँ चलो माँ।
1: चल
3: वो
1: और क्या देखा मिले में?
3: माँ, माँ।
1: क्या गणेश?
3: वो देखो कॉपी किताब की दुकान।
1: कुछ चाहिए क्या गणेश? अब पेंसिल ले ले।
3: पेंसिल नहीं चाहिए, रबर।
1: रबर? रबर चाहिए?
3: हाँ हाँ, रंगीन वाली, हरी वाली।
1: अच्छा भैया।
7: जी।
1: ये हरी वाली रबर देना।
7: जी ये लो बेटा।
1: कितने की है?
7: जी एक रुपए की।
1: हाँ ये लीजिए।
7: ये धन्यवाद।
1: बेटा माना कि हम तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं दिलवा सकते, पर ये तो दिलवा ही सकते हैं।
3: ओ माँ,
1: कुछ चाहिए तो मांग लिया करो।
3: माँ, थैला चाचा कहते हैं मांगना है तो भगवान से मांगो।
1: वो बात तो ठीक है, पर भगवान जी से रबर थोड़े ही मांगोगे। चलो चलो उधर चलते हैं।
3: हाँ, हाँ माँ चलो।

0: भैया तो
1: हाँ भैया बन रही है भैया बैठ जाओ।
0: अदरक यूज़ के दूध ज्यादा।
1: हाँ बिल्कुल हाँ भैया। अरे लौंग इलायची तो हम डाल के रखते हैं
2: भैया। दूध रोक के पत्ती ठोक के देना
3: रहा मेरी बिना चीनी वाली बनी हो।
1: तो हमारी भी है थोड़ी मलाई वाली।
4: हाँ भैया तीन चाय देना मेरी।
1: अरे आपकी कितनी चाय?
5: ऐसा और तीन चाय है।
6: हाँ भैया बिना चीनी वाली मेरी।
1: भैया बिना चीनी वाली में टाइम लगेगा।
7: कोई बात नहीं।
8: यहाँ पर काफी रौनक दिखाई दे रही है। लगता है चाय वाला बढ़िया चाय बनाता है। अरे इस चाय वाले की शक्ल तो पहचानी हुई लगती है।
9: कैसे हो भैया? एक चाय मेरे लिए भी बना दो।
1: नमस्कार जी।
9: नमस्कार।
1: बहुत दिनों बाद आना हुआ भाई साहब गांव में।
9: हाँ लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारी शक्ल भी वही ज्यों की त्यों।
1: अरे यहाँ क्या बदलना है? बदलते तो शहर है, गांव थोड़ी बदलते।
9: ठीक कहते हो। तुम्हारे सामने वाला प्याऊ वैसा का वैसा ही है।
1: आप तो भूल ही गए गांव को शहर जाकर है।
9: अरे ना जी कुछ भी नहीं भूला हूँ। प्याऊ के आगे जो पत्थर लगा है उस पर लिखा है सेठ जगत प्रसाद ने ये प्याऊ अपने पिता सेठ गोपाल प्रसाद और माता ज्ञानवती देवी के नाम पर 17 जुलाई 1980 को बनवाया था।
1: वाह जी वाह, आपको ये भी याद है?
9: और क्या, गांव की हर बात याद है। प्याऊ के बीच में जो खिड़की है और जिसमें वो बूढ़ा आदमी लोटे से लोगों को पानी पिला रहा है उसकी शक्ल भी याद है भाई।
1: अच्छा हरिदास की बात कर रहे हो? आपको गांव का ये हरिदास थैले वाला चाचा भी याद है? भाई वाह।
9: और क्या, और उसका वो खास थे भी उसके पास?
1: वो तो उसकी जिंदगी है भाई। थैले वाला चाचा भले देख नहीं सकता पर उस थैले में ही उसकी जान बसती है। ये लीजिए चाय पीजिए।
9: बढ़िया। 7 हो गए मुझे गांव छोड़े हुए पर पहली चुस्की में तुम्हारी चाय का स्वाद फिर से याद आ गया। वही स्वाद, कसम से ऐसा स्वाद शहर के किसी चाय में नहीं
1: है। ये देवदत्त की चाय है, इंसान की नियत थोड़ा ही है। हमारी चाय का स्वाद कभी नहीं बदलेगा।
9: क्या बात कही। अच्छा वो थैले वाला चाचा अब भी वही नीले रंग का थैला टांगे घूमता है?
1: हाँ जी, मेरे चाय का स्वाद और उसका थैला दोनों ही नहीं बदला। ऊपर वही 3 बंद करने के लिए, सामने खूबसूरत सी कढ़ाई, ऐसा थैला मैंने कहीं और देखा ही नहीं।
9: ये प्याऊ वाला थैला चाचा टिक गया यहाँ?
1: हाँ?
9: मुझे तो लगा था अब तक कहीं चला गया होगा। बिना आंखों की मुश्किल है जीना।
1: उसने भला कहाँ जाना है, 7 पहले अपने दोस्त को ढूंढता हुआ यहाँ आया था। जब यहाँ बांध बनाने का काम हो रहा था ना तो इसका दोस्त यहाँ आया था। बांध बन गया तो सभी चले गए थे लेकिन वो यही रह गया था।

0: जब ये उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचा तब तक उसका दोस्त मर चुका। पता नहीं क्या सोचकर यही रुक गया। वो तो भला हो सेठ जी का जिन्होंने इसे रहने के लिए जगह दे दी और साथ ही प्याऊ पर पानी पिलाने का काम भी।
1: अच्छा
0: हाँ, उसे अपने थैले से बहुत लगाव है भाई, कुछ खास ही लगाव। पता है कुछ दिन पहले इसका कोई थैला ले भागा था।
1: थैला ले भागा?
0: हाँ, ये शाम को प्याऊ से निकला, कोई आया और थैला खींच लिया। ये देख तो सकता नहीं, गिर गया, सिर फूट गया, खून बहने लगा, पर थैला पकड़ा रहा। झपट मारने इसे मारा भी, सड़क पर रगड़ा भी, और भाई साहब इसने थैले को नहीं छोड़ा। तो कुछ लोग आ गए तो झपट मार भाग गया। हम भी पहुंच गए, सब इसकी चोट की चिंता कर रहे थे पर इसे अपने चोट की नहीं थैले की फिक्र थी। मेरा थैला, मेरा थैला। थैले को समेटकर इसने अपने सीने से ऐसे लगा रखा था भाई साहब जैसे माँ अपने बच्चे को लगा कर रखती।
1: हाँ,
0: सब कहते हैं इसके थैले में कुछ कीमती सामान है, वरना एक थैले की क्या कोई इतनी चोट सहेगा। दे देता थैला, कम से कम चोट तो नहीं लगती।
1: बड़ी अजीब बात है, कुछ तो खास है थैले में।
0: वो तो है, उसके बाद से तो ये अपने थैले को गर्दन में ही लटकाए रहता है।
1: अच्छा,
0: एकदम अपने पास रखता है।
1: हाँ,
0: हर दो मिनट में उसे छूता रहता है।
1: हाँ,
0: सहलाता रहता है।
1: अरे,
0: बच्चे की तरह ख्याल रखता है अपने थैले का।
2: भैया कितने पैसे हुए?
0: दो चाय थी ना आपकी।
2: हाँ,
0: 6 रुपए।
2: अरे 6 रुपए, मेला लगा है तो तुम भी लूटने में लग गए।
0: 6 रुपए में ताजमहल खरीद लूंगा क्या? महंगाई तो देखो भाई।
2: ठीक है, ये लो पैसे।
0: हाँ, नहीं लग रही है चाय। दूध का भाव कितना पता है?

0: थैला चाचा, कब आओगी?
1: अरे आया बाबा आया। अरे तुम लोगों को पता तो है, थैले से भी पूछना पड़ता है कि आज कौन सी कहानी सुनानी है। अब जो कहानी ये बताता है, मैं वही कहानी तुम लोगों को सुनाता हूँ।
2: थैला चाचा, आज कौन सी कहानी सुनाओगे?
1: भाई आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा राजकुमार वीर सिंह की कहानी, जो इतना बलशाली था कि दुश्मनों की सेना उसे देखते ही भाग खड़ी होती थी। जब वो चलता था तो जमीन कांपने लगती थी।
2: मेरी माँ कहती है ऐसा तो राक्षस करते हैं।
0: अरे बुद्धू, राजकुमार बोला ना। चाचा आगे की कहानी सुनाओ।
1: एकदम ठीक, राक्षस नहीं, राजकुमार वीर सिंह। एक बार दुश्मनों ने उसके देश पर हमला कर दिया और लड़ाई में उस राजकुमार के पिता को पकड़ कर ले गए। राजमहल में राजकुमार वीर सिंह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, जब उसने ये बात सुनी कि उसके पिता को बंदी बना लिया गया है, तो बस उसके अंदर की वीरता जाग उठी और वो बढ़ चला लड़ाई के मैदान की ओर। युद्ध के मैदान में सैनिक आपस में लड़ रहे हैं। उन सैनिकों के बीच में से दुश्मनों के हमले से बचता हुआ और सैनिकों का मुकाबला करता हुआ वो घोड़े पर बैठा हुआ जा रहा है। उसका घोड़ा भी बहुत शक्तिशाली था। वो राजकुमार के हर इशारे को समझ जाता था और दुश्मन राजा उसे चारों ओर से उसके सैनिकों ने घेर रखा था। उस तक पहुंचना आसान नहीं था।
0: अच्छा, और फिर क्या हुआ थैला चाचा?
1: भाई घोड़े पर राजकुमार बैठा हुआ था, आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन दुश्मन राजा तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। समझे? राजकुमार ने अपने घोड़े को इशारा किया। घोड़ा समझ गया कि राजकुमार उससे क्या कहना चाहता है। घोड़ा दो पैरों पर खड़ा हो गया और जोर से हिनहिनाया। घोड़े के नजदीक खड़े कुछ सैनिक अचानक पीछे की ओर गिर गए। घोड़े ने एक ऊंची छलांग लगाई और सैनिकों की दीवार को बांधता हुआ वो राजा के रथ के पास पहुंच गया। जैसे ही उसने उस राजा को मारने के लिए तलवार उठाई,
2: नहीं राजा, इसे छोड़ दो, हम इसे मारेंगे नहीं, कमरे में बंद कर देंगे।
3: अरे अरे क्या हो गया इसे? क्या बोल रहा है ये?
2: मैं तो राधा को बोल रहा था।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चों आगे सुनो। राजकुमार वीर था, उसने दुश्मन राजा को मारा नहीं और अपने पिता को दुश्मन की कैद से छुड़ा लिया।
2: छुड़ा लिया?
1: हाँ। राजकुमार ने दुश्मन राजा को मारा नहीं, इस बात का असर उस राजा पर पड़ा, पर उसने राजकुमार से माफी मांगी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। काहे का हाथ बढ़ाया?
4: दोस्ती का।
1: शाबाश, दोनों दोस्त बन गए और वहां से चले गए। और अब कहानी खत्म।
0: बस
3: कहानी? बहुत छोटी कहानी थी।
0: नहीं थैला चाचा, एक और कहानी सुनाओ ना।
1: देखो देखो देखो बच्चों।

नाराज हो जाएंगे, इसलिए अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ, समझ गए ना। देखो बच्चों, कल थैले में से एक और कहानी निकाल

हम बोल दूंगा। जाओ जाओ जाओ जाओ। मेरे प्यारे थैले, मेरे दुलारे थैले, सो जाओ सो जाओ।

0: ये छुट्टी हुर्रे
1: अमित ये बताओ कल तुम्हें क्या हो गया था जब थैला चाचा कहानी सुना रहे थे
2: वो कल उस समय मुझे लगा कि तुम राजकुमार हो और मैं तुम्हारा सेनापति
1: मुझे भी कई बार ऐसा ही लगता है थैला चाचा जब भी कहानियाँ सुनाते हैं तो मैं भी उस कहानी में पहुँच जाती हूँ
3: वो सुनाते ही बड़े प्यार से हैं
2: सब उनके नीले वाले थैले का कमाल है मुझे तो लगता है कि वो कोई मामूली थैला नहीं है
4: मुझे पता है उस थैले में क्या है
3: क्या सच में
5: सच में
6: बताओ ना क्या है उस थैले में
1: तुझे कैसे पता और क्या है उस थैले में बता तो सही हमको भी तो पता चले
4: मेरी अम्मी अब्बू कहते हैं कि जरूर उस थैले में कोई जिन है,
1: सच में
6: पर जिन तो अलादीन के चिराग में रहता है
2: लेकिन थैले में जिन कैसे रह सकता है जिन तो इतना बड़ा होता है
4: जब चिराग में रह सकता है तो थैले में क्यों नहीं थैला तो चिराग से बड़ा ही होता है
2: वैसे उस थैले में कितनी कहानियाँ हो सकती हैं?
1: बहुत सारी
3: कितना मजा आता है ना?
4: हाँ हाँ बहुत लेकिन उसके बाद जब थोड़ी देर से घर पहुँचते हैं तो अब्बू डांटते हैं तो और भी मजा आता है
1: गणेश क्या हुआ तुम उदास क्यों हो
7: कुछ नहीं राधा बस बाबा की याद आ गई वो हमें छोड़कर क्यों चले गए
1: याद है थैला चाचा ने एक कहानी सुनाई थी कि जो चला जाता है वो तारा बन जाता है ताकि वो हमेशा उन्हें देखता रहे जिन्हें वो छोड़कर चला गया है
2: चल अब घर चल माँ तेरी बाट देखती होगी रात को मिलेंगे
8: बोला लगता है स्कूल में कोई गणेश बा का खाना खा गया
9: यार।

0: अरे कुंदन और भोला, तुम लोग इस वक्त यहाँ?
1: क्या हुआ गणेश, इतना लटक लटक कर क्यों चल रहा बे?
0: मुझे जाने दो, हट जाओ मेरे आगे से।
2: अच्छा बेटा, हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा अब तू? जरा ये तो बता गणेश, आज तेरा पागल चाचा कौन सी कहानियां सुना रहा है?
0: भोला, वो हमारे थैला चाचा हैं, उन्हें पागल कहा ना तो ठीक नहीं होगा।
2: अच्छा चल हट। क्या कर लेगा तू?
3: वैसे तुम लोगों ने उस बिना आंख वाले का नाम सही रखा है,
4: थैला चाचा।
2: राधा कह रही थी कि उसके थैले में बहुत सारी कहानियां हैं।
0: हाँ है तो?
2: कुंदन, हम एक काम करते हैं, एक दिन उसके थैले को ही हम उससे छीन लेते हैं।
0: अगर तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं थैला चाचा को बोल दूंगा।
5: अच्छा, तू जरा बोल के तो दिखा है? फिर देख तेरा क्या हाल बनाते हैं हम।
2: हाँ
5: चल भाग यहाँ से, बड़ा

0: थैला चाचा का थैला चुराने की बात कर रहे थे।
1: ये ठीक नहीं है।
2: अगर थैला चुरा लिया तो?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं,
2: ये तो गलत है, ये बहुत गलत है।
0: क्या हमें चाचा को बताना चाहिए?
2: उनको बताएंगे तो थैला चाचा चिंता करेंगे।
3: अरे

0: थैला चाचा, हम आ गए।
1: हम आ गए।
2: हाँ हाँ बच्चों, आ गया हूँ मैं भी। अरे सभी बच्चे आ गए।
3: हाँ थैला चाचा।
1: हाँ, थैला चाचा
0: आ गए।
1: सभी बच्चे आ गए।
2: ठीक है, सब मेरे पास बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो बैठो।
4: जल्दी से थैले से पूछो ना, आज कौन सी कहानी होगी।
5: थैले बता कहानी दो, कौन सी बता इसको, तो मैं कैसे सुनाऊं कहानी। थैले बोल।
2: तो आज इस थैले में से जो कहानी निकली है वो है शेर और खरगोश की कहानी।
1: थैले का ध्यान रखना, वो कुंदन और भोला भी इधर ही घूम रहे थे।
6: ठीक है।
2: तो बच्चों, पुरानी बात है, एक बार जंगल में एक शेर ने बहुत उत्पात मचा रखा था। वो जब भी आता कई जानवरों को मारता, उनमें से कुछ को खाता और पेट भर जाने पर वापस चला जाता। जब जंगल के सभी जानवर इस बात से दुखी हो गए तो उन्होंने एक सभा बुलाई। क्या बुलाई?
3: सभा।
2: सभा। और फैसला किया कि रोजाना एक जानवर शेर के पास खुद ही उसका भोजन बनकर जाएगा।
4: अच्छा।
2: लेकिन शेर के पास ये सुझाव लेकर भला जाएगा कौन? आखिरकार लोमड़ी से सबने प्रार्थना की कि वो ही जाकर शेर को समझाए। लोमड़ी ने शेर के पास जाकर समझाया तो शेर को भी लगा कि चलो अच्छा है, फालतू में जंगल में भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है, जब घर बैठे ही शिकार मिल जाएगा। और शेर मान गया। और इधर शेर के पास जाने के लिए नंबर लग गया। रोजाना एक जानवर अपने परिवार से रो रो कर विदा लेकर शेर के पास जाता।
4: अच्छा।
2: और ये सिलसिला रोज चलता रहा। और एक दिन खरगोश की बारी आई। सारे जानवर उसे विदा करने के लिए जमा हो गए। तभी उस खरगोश के बेटे ने कहा, आज तुम नहीं मैं जाऊंगा। खरगोश ने उसे बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माना और चल पड़ा शेर की गुफा की ओर। जब वो शेर के पास पहुंचा तो उसने शेर से कहा कि आपके जंगल में एक और शेर महाराज आ गए हैं। वो कहने लगा, शेर मैं इस जंगल का राजा हूं, तुम मेरे पास आओ।
5: बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आपका शिकार हूं।

0: इससे पहले कि वो मुझे मार कर खा जाए, आप जल्दी से मेरा शिकार कर लीजिए।
1: ये किसने कहा?
2: खरगोश।
1: खरगोश ने।
3: शेर को ये जानकर बहुत गुस्सा आ गया कि उसके रहते जंगल में दूसरा शेर कैसे आ सकता है। बस वो उस दूसरे शेर से मिलने उस खरगोश के साथ चल पड़ा। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज वो शेर इसी गुफा में रहता है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो पानी में उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया। वो दहाड़ा, उसे अपनी परछाई दहाड़ती हुई दिखाई दी। उसे लगा गुफा वाला शेर उस पर दहाड़ रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और वो उस परछाई को सच का शेर समझकर उससे लड़ने के लिए कुएं में कूद गया। कौन कूदा?
2: शेर।
3: शेर। और बच्चों, खरगोश की जीत हुई। और खरगोश वापस अपने साथियों के पास पहुंचा तो सब हैरान रह गए। फिर उसने सारी बात बताई। सारी बात सुनकर सब बहुत खुश हुए और उसे अपने कंधों पर उठा लिया और सभी खुशी से दिन व्यतीत करने लगे।
4: क्या जंगल में ऐसा भी हो सकता है?
3: अरे क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। अच्छा बच्चों, चलो चलो चलो चलो चलो, सब अपने अपने घर जाओ।
5: कौन है? मेरा थैला।
6: क्या हुआ थैला चाचा? अरे कुंदन और भोला थैला छीन कर भाग रहे हैं। रुको, थैला वापस करो, नहीं तो मैं प्रधान जी से बोल दूंगा, तुम्हारे घर वालों को भी बोल दूंगा। रुक जाओ।
7: ए भोले।
8: हाँ।
7: अरे हाँ बात, ये गणेश कहाँ से आ गया? जल्दी कर, देख तो सही इस थैले में क्या है।
8: हाँ ठीक है, देखता हूँ। कुंदन,
6: कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी फ्रॉक है और और और एक लड़की की फोटो है बस।
7: अरे अच्छे से देख मोटे।
6: अरे थैला वापस कर, थैला वापस कर।
8: हाँ।
6: मैं कहता हूँ थैला वापस कर।
8: ये ले।
7: इसमें कोई कहानी वानी नहीं है, थैले में तो एक छोटी सी फ्रॉक है और एक लड़की की फोटो।
6: कहानी नहीं है?
3: हाँ,
6: नहीं है।
3: सही कहा उसने, इसमें कोई कहानी नहीं है। मेरी पत्नी और मेरी बेटी की कुछ यादें हैं जो मैं इस थैले में संजो के रखता हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपनी बेटी को हर दिन कहानी सुनाया करता था। बहुत प्यारी थी मेरी बेटी। मेरे सामने ही एक दुर्घटना हुई, मैं देख नहीं सकता, देख सकता तो शायद ये दुर्घटना नहीं घटती और न ही उसकी जान जाती। जो कहानियां मैं तुम बच्चों

0: गणेश बेटा, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम नहीं होते तो शायद भोला और कुंदन मेरे थैले को न जाने कहां फेंक देते। चलो घर चले। बच्चे आ गए होंगे कहानी सुनने के लिए। चलो
1: थैला चाचा,
2: हम भी चले।
0: हाँ,
2: चलो चाचा।
3: अभी आप सुन रहे थे नाटक थैला। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, सिद्धार्थ, कमल कुमार वर्मा, सुनील कुमार लोहिया, ममता मलकानी, राजश्री, एसपी इलाहाबादी, सुशील शर्मा, जगदीश दुआ, संजय वर्मा, सजग अरोड़ा, मासिफा परवेज, ईशान शर्मा, नौशीन बेगम, सैयद एहसान अली और विशारद। प्रस्तुति सहयोग विजयलक्ष्मी शर्मा का था और नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक थे विनोद कुमार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। राज्य सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद के अनुसार यह कार्यक्रम लखनऊ के जनभवन में 3:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत शामिल थीं। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कुछ फिल्मी तराने। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म आपकी कसम से और स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। आप सुन रहे हैं फिल्मी तराने। अगला नगमा है फिल्म काला पत्थर से और स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। अब वक्त हो रहा है हमारे बाल कार्यक्रम रेडियो किड्स का। आज इस कार्यक्रम में बाल प्रतिभागी हैं अनय पुंडीर, अथर्व पवार, कायन पल, पहल परियानी और नाइसा। लीजिए सुनिए रेडियो किड्स।

0: नमस्कार दोस्तों, समय हो गया प्रोग्राम रेडियो किड्स का, जहां बच्चे ही हैं असली होस्ट। हम लाए हैं आपके लिए मजेदार बातें, प्यारी कविताएं, छोटी कहानियां और ढेर सारी सीख। हम आए हैं द श्री राम यूनिवर्सल स्कूल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। मेरा नाम कायना पाल है, हम कक्षा 4 से हैं।
1: मेरा नाम अथर्व है।
2: मेरा नाम नैसा है।
3: मेरा नाम पहल है।
4: और मेरा नाम है अनय।
0: दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धरती हमारी माँ है, लेकिन हम क्या उसका सही ख्याल रख रहे हैं?
1: नहीं, हम पेड़ काटते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं।
4: हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए
3: और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना चाहिए।
2: तो दोस्तों, आज से हम सब ग्रीन अर्थ का वादा करते हैं।
3: धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाओ बार बार।
4: अरे, हमने अभी बात की धरती माँ की और माँ की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अब बात कर अपनी सबसे प्यारी माँ की।
0: माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है।
1: मदर्स डे माँ के प्यार और त्याग को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
3: माँ की ममता का कोई मूल नहीं, वह हर दर्द सहकर भी कुछ बोलती नहीं।
0: मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ, सुनाऊं क्या?
2: हाँ, सुनाओ।
0: ममता का सागर है माँ, स्नेह का झरना है माँ, लोरी के मीठे बोल गाकर सपनों को जगाती है माँ, त्याग की मूर्ति है माँ, समय साक्षी है इसका, इतिहास नया रचती है माँ।
4: बहुत अच्छी कविता सुनाई कायना।
1: तो दोस्तों, मदर्स डे पर हम अपनी माँ को थैंक यू जरूर कहेंगे। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: गीत तो बहुत अच्छा था। माँ के साथ समय बिताना मुझे सबसे अच्छा लगता है और छुट्टियों में तो मैं सबसे ज्यादा समय माँ के साथ बिताती हूँ।
1: सही कहा ना ऐशा, छुट्टियाँ भी तो आने वाली हैं। दोस्तों, छुट्टियाँ आ रही हैं, आप सब क्या करने वाले हैं?
2: मैं नई कहानी की किताब पढ़ूंगी।
3: अच्छा पहल, मैं भी पेंटिंग सीखूंगा।
4: अरे वाह अथर, मैं तो अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा।
0: सही कहा ने, हम लोग भी अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, हमें अपनी छुट्टियों का सही उपयोग करना चाहिए।
3: छुट्टियों में तो मैं रेडियो भी सुनता हूँ।
1: सच में अथर्व, रेडियो पर क्या सुनते हो तुम?
3: गाने, कहानियाँ और बहुत कुछ।
2: जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए आकाशवाणी आ रही थी,

0: थी, तब मैंने सोचा कि आकाशवाणी क्या है। कायना, क्या तुम्हें पता है आकाशवाणी क्या है?
1: थोड़ा थोड़ा पता है पहल।
2: चलो दोस्तों, एक छोटी सी क्विज करते हैं। आकाशवाणी का अंग्रेजी नाम क्या है पहल?
0: ऑल इंडिया रेडियो।
2: सही कहा पहल।
3: मैं एक और प्रश्न पूछता हूँ, इसकी शुरुआत कब हुई थी, किसी को पता है?
0: नहीं। हाँ मुझे पता है, इसकी शुरुआत 1936 में हुई थी।
3: सही का पहल।
2: मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आकाशवाणी का उद्देश्य क्या है?
0: मैं बताऊँ, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन।
2: सही कहा कायना।
0: वाह, आकाशवाणी तो सच में भारत की आवाज है।
2: आकाशवाणी ने देश की आवाज हर घर तक पहुंचाई है।
4: मैं कविता सुनाना चाहती हूँ आकाशवाणी पर। सुनाऊं क्या?
5: हाँ, सुनाओ।
4: आकाशवाणी की मधुर पुकार सुरों में बसी हर एक झंकार, खबरों से लेकर गीतों तक छू ले दिल के हर एक तार। सुबह की रोशनी संग आए नई उमंग नए विचार, रात के खामोशी में भी बजे उम्मीदों का सितार। गांव शहर को जोड़ती डोर हर भाषा का ये त्योहार, आवाजों में बसती दुनिया आकाशवाणी का संसार।
0: वाह नायशा, क्या कविता सुनाई।
4: धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई कौन थी?
0: मैं जानती हूँ।
4: बताओ पहल।
0: वह बहुत बहादुर थी
2: और उन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ युद्ध करा था।
3: उनका प्रसिद्ध वाक्य था, मैं अपनी जाति नहीं दूंगी।
0: रानी लक्ष्मीबाई ने हमें बहादुरी सिखाई थी।
2: मैं कविता सुनाना चाहता हूँ झांसी की रानी पर। सुनाऊं क्या?
4: हाँ, नहीं सुनाओ।
2: वीरता की वो मिसाल थी, भारत की शान कमाल थी, नाम था जिसका रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की वो ढाल थी। नन्ही उम्र में सीखा जिसने तलवारों से खेलना, दुश्मन के आगे डटकर उसने कभी ना सीखा झुकना। घोड़े पर बैठे रन में उतरी, हाथों में थी तलवार, अंग्रेजों से लड़ी वो डटकर, ना मानी कभी हार। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, गूंज उठा था मैदान, उसकी वीरता के आगे कांप उठा था दुश्मन जहान। देशभक्ति की ज्वाला बनकर इतिहास में वो अमर हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हर दिल में आज भी जिंदा हुई।
0: बहुत अच्छी कविता सुनाई अने।
4: तो चलिए सुनते हैं गीत।
0: हाँ, चलो सुनते हैं।

0: हमें अपने बड़ों का सम्मान क्यों करना चाहिए नायशा?
1: क्योंकि उनका अनुभव हमें सही रास्ता दिखाता है।
2: हाँ, और हमें सबको नमस्ते करनी चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए।
1: सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है।
2: बड़ों के सम्मान पे अभी हमने बात की, अब मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाऊं?
3: हाँ, सुनाओ।
2: बड़ों का करना सदा सम्मान, यही है जीवन का सच्चा ज्ञान। उनके अनुभव उनकी सीख बनते हैं हमारे जीवन की सीख। माता पिता, गुरु और हर बुजुर्ग, इनसे ही सस्ता जीवन का मार्ग। इनकी बातों में छुपी है रोशनी जो दूर करे हर एक परेशानी। आओ मिलकर ये ठाने हम, रखेंगे बड़ों का सदा हम साथ। उनकी सेवा उनका मान, यही है जीवन का सच्चा ज्ञान।
0: अच्छे संस्कार अपनाएं, सबका दिल हम जीत जाएं। और ये संस्कार हमें कहानियों से भी मिलते हैं।
2: चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाऊं?
3: हाँ, सुनाओ।
2: एक किसान के पास सोने का अंडे देने वाली मुर्गी थी, लेकिन उसने लालच में आके सब कुछ खो दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली?
0: हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। वाह, क्या प्यारी सी थी पहल। अब चलो एक कविता हो जाए।
2: चलो मिलकर पेड़ लगाए, धरती को स्वर्ग बनाए।
0: मैं एक पेड़ पे कविता सुना रही हूँ। पेड़ हमारे साथ ही है, छाया हमको देते हैं, बाढ़ से हमें बचाते हैं, मीठे फल भी देते हैं। पेड़ कितने जरूरी हैं, फिर भी बेचारे कटते हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा भरा बनाएंगे।
4: नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है। मैं आज आप सभी को टॉपिक अवेयरनेस के बारे में कुछ बता रही हूँ और जागरूक भी कर रही हूँ। आशा है कि आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। तो सुनिए, आप सभी जब सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आप सभी को ये ट्रैफिक लाइट दिखती है ना, तो मैं इसका मतलब बताऊँ। रेड लाइट का मतलब स्टॉप, येलो लाइट का मतलब स्लो और ग्रीन लाइट का मतलब गो। तो जब भी आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो इन सभी का ध्यान रखना। पैदल यात्री सावधानी से सड़क पार कर रहे, बेवजह हॉर्न ना बजाए।

0: हाई स्पीड में गाड़ी न चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, दुर्घटनाओं से बचें और जेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी खड़ी न करें, उससे थोड़ी सी पीछे खड़ी करें। आपका जीवन अनमोल है, धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, आज हमने सीखा धरती की रक्षा, माँ का सम्मान, समय का सही उपयोग और अच्छे संस्कार। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे रेडियो किड्स में।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस समय प्रधानमंत्री वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। इस पार्क को काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के विशेष इलाज वाले सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दसनायके ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने पोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय

0: ले जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी है। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कुल 8 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 6 नए मंत्री शामिल किए गए और वर्तमान में सोमेंद्र तोमर और अजित पाल को कद बढ़ाकर उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ दिलाई गई है। नए मंत्रियों में भूपेन्द्र चौधरी और मनोज पांडे ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। और खेलों में शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद शामिल थीं। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. Prime Minister Modi laid the foundation stone and inaugurated multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The Prime Minister inaugurated the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation. The state-of-the-art institution in Hyderabad is a cancer-focused multi-super-speciality quaternary care not-for-profit hospital. The founder of Tamilaga Vetri Kadagam TVK actor turned politician C. Joseph Vijay has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at the Nehru Indoor Stadium. 9 ministers also took oath along with Mr. Vijay. Prime Minister Narendra Modi has congratulated C. Joseph Vijay on taking oath as the Chief Minister of Tamil Nadu. In a social media post, Mr. Modi said the central government will keep working with the Tamil Nadu government to improve the lives of people. He expressed his best wishes for Mr. Vijay's tenure ahead. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expanded his cabinet today with 6 BJP leaders been sworn in as ministers. The oath was administered by Governor Anandiben Patel at the Jan Bhavan in Lucknow. The 6 leaders who were sworn in as ministers are former UP BJP President Bhupendra Chaudhary and party leaders Manoj Kumar Pandey, Krishna Paswan, Surinder Diller, Hans Raj Vishwakarma and Kailash Rajput. Additionally, party leaders Ajit Singh Pal and Somendra Tomar were also elevated as Minister of State with independent charge. In Puducherry, NDA leader N. Rangasamy will take oath as the Chief Minister on the 13th of this month. Yesterday, President Draupadi Murmu appointed AINRC leader N. Rangasamy as the Chief Minister of the Union Territory. Following the notification, Lieutenant Governor K. Kailashnathan invited Mr. Rangasamy to form the government.

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। पहला नगमा है फिल्म आन मिलो सजना से, स्वर है किशोर कुमार का।

0: ERP, Senior Technical Officer, T-Lab, Executive Engineer, Civil Electrical, and Assistant Executive Engineer, Civil Electrical. IISER Bhopal, an institute of national importance under the Ministry of Education, is inviting applications from qualified and experienced Indian citizens. Online applications are open till 10th May 2026, while hard copies of applications must reach the institute by 18th May 2026. Detailed eligibility conditions, qualifications and application procedures available on the recruitment portal and official institute website, that is at www.iiserb.ac.in. RailTel Corporation of India Limited, a Navratna public sector undertaking under the Ministry of Railways, has invited applications for the contractual post of consultant medical at its corporate office in New Delhi. Last date for submission of applications is 16th May 2026. Interested candidates can check the detailed advertisement and application forms in the current job opening section of the company's career page. Kindly do visit the website, that is at www.railtel.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में संविदा आधार पर युवा पेशेवरों को कानूनी अनुसंधान सलाहकार के रूप में सूचीबद्ध किया जाना है। इसके लिए पात्रता, योग्यता एवं भुगतान के समस्त मानदंडों के विषय में आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी इस वेबसाइट पर www.nhrc.nic.in। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली में वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर सामान्य केंद्रीय सेवा समूह क राजपत्रित अनानुसचिवीय पद के वेतन मैट्रिक स्तर 13 में भरे जाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। सामान्य शर्तें, पात्रता मानदंड, आवेदन का प्रपत्र और अन्य विवरण आप देख सकते हैं विभाग की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.jalshakti-dowr.gov.in। आवेदन की अग्रिम प्रति इस ईमेल पर अग्रेषित की जा सकती है usadmn-mowr@nic.in अथवा admn-mowr@nic.in। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में इन पदों के लिए रिक्तियां उपलब्ध हैं और आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, एक रिक्ति उपलब्ध है। समेकित वेतन रहेगा 90,000 रूपये प्रतिमाह। सहायक अभियंता सिविल दो पद उपलब्ध हैं। आयु सीमा है अधिकतम 35 वर्ष, जबकि वेतन रहेगा 50,000 रूपये प्रतिमाह समेकित। पात्रता मानदंड, ऑनलाइन आवेदन और अन्य विवरणों के लिए देखिए ये वेबसाइट rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट में प्रोफेसर सह प्राचार्य का एक पद उपलब्ध है। विस्तृत विज्ञापन और जानकारी के लिए आप देख सकते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट की आधिकारिक वेबसाइट www.aimsrajkot.edu.in। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान सचिव पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है। FDDI राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो फुटवियर और चमड़े के उत्पादों के डिजाइन और विकास से संबंधित सभी विषयों में शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण में गुणवत्ता तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और विकास करने तथा इससे संबंधित या इससे जुड़े मामलों के लिए काम करता है। सभी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन

0: वेतन वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सतर्कता मंजूरी और काडर मंजूरी प्रमाण पत्र के साथ उचित माध्यम से पते पर भेज सकते हैं। अनुसंधान अधिकारी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कैबिन संख्या US 34 प्रथम मंजिल वाणिज्य भवन नई दिल्ली 110010 किसी भी स्पष्टीकरण के लिए इस ईमेल और फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल है neeraj.ks@nic.in जबकि टेलीफोन नंबर है 0112338894। फोन नंबर एक बार फिर नोट कीजिए 0112338894। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और आज उसका दिन है जिससे हम सबका दिन है, जीवन है, और वो हमारे जीवन की आधार है, हमारी सृजना है, हमारी माँ है। आज पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है और ये दिन समर्पित है उस शक्ति के लिए, उस एहसास और संवेदना कहें, भावना कहें, या भावना का समंदर उसी के लिए है और उसी को धन्यवाद देने के लिए है। तो जब आज मदर्स डे की बात आती है तो शायर मुनव्वर राणा की ये कुछ चुनिंदा पंक्तियां मुझे लगता है कि यहां पर शेयर करनी चाहिए कि लबों पर उसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। दुनिया सौदेबाजी के उसूलों पर चलती है पर माँ की ममता में कभी मिलावट नहीं होती। और आज के इस कार्यक्रम में हम मदर्स डे पर डेटलाइन में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके अलावा अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास है, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार भी देंगे आपको, और खेल के मैदान की हलचल भी रहेगी, आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: हेलो जागृति, हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू अ न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is, of course, my co-host Jagriti Sharma. And well, at the outset, I'd like to wish all our listeners a very happy Mother's Day, and we'll talk about mothers in a dateline section of the program. But Jagriti, he's known as the father of motivation. Now, let's talk about three of his key teachings. Firstly, if you change the way you look at things, the things you look at change. Secondly, he taught people to let go of the need for vengeance, not for the sake of others, but to achieve internal freedom. And thirdly, he urged people to stop overthinking, to trust the intuition, and to break free from self-imposed limitations. Yes, we are talking about Dr. Wayne Dyer, the great American self-help author and motivational speaker. And he also celebrates his birthday today, so we will also talk about him later in the program. But first, we begin with the news headlines first.
1: Jee. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आत्मसम्मोहन के माध्यम से एक विकसित भारत के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया।
2: सी जोसेफ विजय टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु अलोंग विद 9 मिनिस्टर्स।
1: हिमंता बिस्वा शर्मा असम में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए।
2: Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case.
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष समाप्ति के करीब हो सकता है।
2: And in archery world cup, Indian women's recurve team clinches gold defeating host China in a shoot-off in Shanghai. Yes, and now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about Mother's Day and World Lupus. Today's show is filled with love, emotions, laughter, and lots of gratitude because today the world is celebrating Mother's Day, isn't it, Jagriti?
1: बिल्कुल, हमारे दिन की शुरुआत माँ से होती है और कहें कि जब हम सोने जा रहे होते हैं तब भी हमारी जरूरतों का ख्याल माँ ही रखती है। और अभिषेक, ये भी खास बात है कि हमें अपनी माँ की जो इम्पोर्टेंस है वो तब ज्यादा समझ में आती है जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं।
2: Absolutely.
1: इससे पहले हमें लगता है कि माँ बेवजह परेशान होती है, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ाती है, लेकिन उसके जो एहसास हैं या उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, हम जिम्मेदार जब बन जाते हैं तब समझ आती है। और मुनव्वर राणा भी ये कहते हैं कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। जी हाँ, आज पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है और इसलिए मना रही है कि माओं को और माँ जैसी दूसरी महिलाओं जो हमें बिना शर्त प्यार करती हैं, हमारे लिए त्याग करती हैं और जो हमें सहयोग उनसे मिलता है उसका सम्मान किया जा सके। और सच कहें तो हमारी माएं हमारे लिए जो कुछ भी करती हैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक दिन कभी भी काफी नहीं होता। स्कूल से लेकर अगर हमें स्कूल के लिए जगाना हो या जब हम बीमार होते हैं तब रात भर हमारे लिए जागना हो, माएं असल में पूरे समय हमारे लिए सुपर हीरो बन जाती हैं।

0: Yes, absolutely. And a very happy Mother's Day to all the incredible moms, grandmothers, guardians and maternal figures.
1: बिल्कुल, हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाए जाने वाला मदर्स डे हर दिन हर जगह उन माताओं के बिना शर्त प्यार, त्याग और कभी भी खत्म न होने वाले सहयोग और उनकी ताकत का सम्मान करने का दिन है.
0: Yes, Jagriti, and in modern times, the celebration gained importance in the early 20th century through the efforts of social activist Anna Jarvis in the US. And in 1908, Anna Jarvis organized the first official Mother's Day to honor her mother's life of service. Her mother had actively participated in community service during the American Civil War, and the tradition was later formalized as the second Sunday of May, which was also the day Anna's mother passed away.
1: और सच कहूं अभिषेक, तो हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, एक बात कभी नहीं बदलती. जब भी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आती है तो सबसे पहले हम जिसे फोन करते हैं या फिर हम जिसे याद करते हैं वो अक्सर हमारी माँ होती है. आई थिंक आप इससे एग्री करते हैं.
0: एब्सोल्युटली.
1: और चाहे अगर आपकी चाबियां खो जाएं या आपकी तबीयत खराब हो जाए या फिर ऐसे जो रोजमर्रा की जिंदगी के काम हैं, उन छोटे से बड़े हर काम में आपका जो ख्याल रखती है और आपको जो याद आती है वो माँ ही होती है.
0: एग्जैक्टली. एंड टुडेज शो इज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग दोज सुपर हीरोज विदाउट केप्स.

0: माँ भावना है, संवेदना है, एहसास है और इसी एहसास से हम सब जुड़े हुए हैं और आज रुक कर इसी एहसास को, भले वो सरल है लेकिन बेहद शक्तिशाली है, और उसी माँ को आज का दिन एक मौका देता है कि हम उन्हें कहें धन्यवाद माँ।
1: Yes, and not just with gifts, but with time, love.

0: respect and appreciation, because honestly mothers deserve to feel celebrated every single day.
1: तो इससे पहले कि हम बात खत्म करें, आज के लिए आपके लिए एक छोटी सी आपको याद दिला दें कि सोशल मीडिया पर सिर्फ मदर्स डे की स्टोरी ही पोस्ट ना करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस ही ना लगाएं, बल्कि अपनी माँ के साथ कुछ अच्छा समय भी बिताएं।
0: Absolutely. So to conclude our discussion on Mother's Day, Jagriti, as we celebrate Mother's Day 2026 today, let's remember that motherhood is not only about giving birth, it's about care, compassion, guidance and unconditional love. And to every mother and maternal figure listening, thank you for your patience, strength and endless love.
1: तुम्हारी वजह से ये दुनिया और भी ज्यादा रोशन है। जाओ अपनी माँ को गले लगाओ, उन्हें फोन करो, उनके साथ समय बिताओ या बस उन्हें ये बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितनी खास हैं, कितनी मायने रखती हैं। क्योंकि दीवारों को घर बनाती है माँ, बिखरे रिश्तों को सजाती है माँ, खुद गीले में सो जाती है अक्सर, पर हमें सूखे में सुलाती है माँ। भले ही हम कितनी ही दूर निकल जाएं, हर मोड़ पर लौट कर आने की वजह होती है माँ।
2: माँ वो है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। माँ वो है जो हमको एहसास दिलाती है कि हम कितने अच्छे हैं, हमसे अच्छा और कोई है ही नहीं। माँ वो है जिसकी खुशी हमारी हंसी से है, जिसका दुख हमारे दुख से है। माँ वो है जिसके बिना हम जी नहीं सकते। माँ सब कुछ है।

0: Yes, and now we move on to our second topic in a Dateline section, that is the World Lupus Day. And very important day that has been observed across the world today, Jagriti, is the World Lupus Day.
1: बिल्कुल, और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद बहुत से लोगों ने सुना होगा लेकिन वे इसे पूरी तरह से समझते नहीं हैं। ये है ल्यूपस। इसे अक्सर अदृश्य बीमारी कहा जाता है क्योंकि इसके कई लक्षण असल में दिखाई ही नहीं देते।
0: ल्यूपस इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिजीज विच मीन्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स इट्स ओन हेल्दी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स।
1: और ये शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है, उसमें त्वचा, जोड़ों को, किडनी, यहां तक कि दिल और फेफड़ों को भी ये प्रभावित कर सकता है। और इसमें मुश्किल बात क्या है, लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं।
0: Yes, and some people experience extreme fatigue, joint pain, skin rashes, fever or hair loss, while others may struggle silently because their symptoms aren't obvious to the world.
1: और इसमें जागरूकता इतनी ज्यादा मायने रखती है। ल्यूपस के कई मरीजों से अक्सर कहा जाता है, आप तो बीमार नहीं दिखते।
0: Yes, and comments like that can be really hurtful. World Lupus Day is not just about information, it's also about empathy, support and understanding.
1: समय के साथ लोगों को अपने परिवार, दोस्तों और साथियों से कटाव महसूस हो सकता है जिसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ल्यूपस के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाकर हम ज्यादा मददगार रिश्तों को बढ़ावा दे सकते हैं।
0: Yes, and finding and strengthening connections with people who understand, such as others living with lupus, can play a vital role in reducing isolation and help individuals with lupus feel seen, supported and less alone.
1: इस वर्ष का विषय है ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं, क्योंकि अक्सर ल्यूपस अनदेखा रह जाता है और इसके लक्षणों को गलत समझा जाता है और इसके प्रभाव को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
0: एंड मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड लिविंग विद ल्यूपस इन मेनी केसेस स्टिल गो अनडायग्नोस्ड फॉर इयर्स, व्हिच इज व्हाई डॉक्टर्स एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस आर पुशिंग फॉर अर्लियर डायग्नोसिस, बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड मोर मेडिकल रिसर्च।
1: बिल्कुल, और हालांकि अभी ल्यूपस का कोई पूरी तरह से इलाज मौजूद नहीं है, फिर भी समय पर इलाज और सही देखभाल की मदद से लोग इस स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं।
0: सो टुडे लेट्स डू वन स्मॉल थिंग, एजुकेट आवरसेल्व्स। इफ समवन सेज

0: are struggling, believe them, sometimes the strongest battles are the ones we cannot see.
1: और अब चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि क्या कुछ खास है उनके पास।
0: The Minister of Education will organize Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026 in all schools across the country during summer vacations. And in a social media post, the ministry said that the week-long camp will provide students an engaging opportunity to learn basic communication skills in various Indian languages through interactive activities focused on self-introduction, vocabulary building, real-life conversations and cultural appreciation. The ministry added that this year the initiative also introduces Indian Sign Language as a special highlight, reinforcing the vision of inclusive and equitable education envisioned in the National Education Policy 2020. And the initiative was launched by Union Minister for Education Dharmendra Pradhan last year.
1: और अब चलते हैं सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के बारे में लेते हैं जानकारी, जहां प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में हर्ष और उल्लास का वातावरण है। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का कुंभाभिषेक 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से किया जाएगा। और जानते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में।

0: प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व
1: ए कोंकण फ्रूट फिएस्टा 2026 विल बी हेल्ड एट रोजरी हाई स्कूल ग्राउंड्स इन नेवेलिंग फ्रॉम 15 टू 17 मई ऑर्गेनाइज्ड बाय द एग्रीकोस एलुमनाई एसोसिएशन विद सपोर्ट फ्रॉम आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च द इवेंट विल ब्रिंग टुगेदर गवर्नमेंट एजेंसीज फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम गोवा महाराष्ट्र एंड कर्नाटका द फेस्टिवल एम्स टू प्रमोट लोकल फ्रूट्स स्पेशली मैंगोज एंड अदर प्रोड्यूस विच हैव सीन अ रिकॉर्ड हार्वेस्ट दिस ईयर A fresh fruit competition will be held on 14th May. It is open to all, with no entry fee. Winners will receive cash prizes and certificates on 17th May. The festival will be inaugurated on 15th May and will also feature a range of entertainment activities. For Parikrama, Nikhil Upadhyay, Akashvani News, Padji.
2: और श्रोताओं, आपको अभी हम रिपोर्ट सुना नहीं पाए, हम दोबारा से लिए चलते हैं आपको सोमनाथ, जहां पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के उपलक्ष्य में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में हर्षोल्लास का वातावरण है। सोमनाथ के इतिहास में पहली बार सोमनाथ मंदिर जो पुनर्निर्मित है, इसके शिखर का कुंभाभिषेक 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से किया जाएगा। आइए सुनते हैं।
0: प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व भक्ति और अस्मिता का प्रतीक बन गया है। पिछले दो दशकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सोमनाथ मंदिर की विकास यात्रा स्वर्ण युग में प्रवेश कर चुकी है, जिससे भक्ति और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कल आयोजित होने वाली ध्वजा पूजा और महापूजा के दौरान भक्तिमय वातावरण बनेगा। वहीं भारतीय वायुसेना द्वारा प्रभास पाटन की धरती पर रोमांचक और दिल ने वाले हवाई कर्तव्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई निरीक्षण तथा एयर शो का रिहर्सल किया गया, जिसके चलते आकाश में रोमांचक दृश्य देखने को मिले। सोमनाथ मंदिर के शिखर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से आज पुष्प वर्षा भी की गई। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव के जय घोष के साथ भक्ति में लीन दिखाई दिए। पर्व के दौरान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा, समुद्र दर्शन पथ, मारुति हाट तथा लाइव एंड साउंड शो भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। परिक्रमा के लिए मयूर सोलंकी, आकाश सोमनाथ।
3: In a major push to strengthen the startup ecosystem in Jammu and Kashmir, the Greenovator Incubation Foundation, GIF, at the National Institute of Technology, Srinagar NIT, awarded ignition grants to 10 emerging startups under Cohort 2.0 during the Ignition Grant Felicitation Ceremony 2026, held recently at the NIT Srinagar. We have a report.
4: In his message, Director, National Institute of Technology, Srinagar, Professor Binod Kumar Kanojia said that such initiatives show the institute's commitment to promoting innovation and entrepreneurship among youth. He said that incubation support along with financial help allows young innovators to turn their ideas into meaningful solutions for society. Principal Investigator of Greenovator Incubation Foundation, Dr. Saad Parvez said there's a need to build a strong culture of innovation in academic institutions. He noted that incubation centers help young entrepreneurs and stressed the importance of linking research, innovation and entrepreneurship for economic growth. Talking to Parikrama, Dr. Parvez said,
5: जो आइडिया जनरेटर्स हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग आइडियाज हैं, उन आइडिया जनरेटर्स को हम स्टार्टअप का एक रास्ता दिखाएं और वी हैव टेकन देम एज स्टार्टअप एट GIF एनआईटी श्रीनगर। इनकी जर्नी शुरू हो गई है। इस जनरली हम इसको जर्नी फ्रॉम माइंड टू मार्केट कहते हैं, बिकॉज दे हैव दोज आइडियाज। इनके अपने आइडियाज हैं, वो आइडियाज जिनमें हमको बिजनेस का एक स्कोप लगता है। डेवलप दोज आइडियाज, बेसिकली ITBI में हम जो आइडियाज डेवलप करते हैं अंडर दिस स्कीम, वो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड है। सो इनके पास छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज हैं जो कल सक्सेसफुली एक प्रोडक्ट की शेप में मार्केट में आएंगी, और वी विल लुक दैट दीज न्यू प्रोडक्ट्स कॉज सम डिसरप्शन इन द मार्केट। तो इस डिसरप्शन से एक बिजनेस क्रिएट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और ये पर्पज है हमारा इन स्टार्टअप को सपोर्ट करने का।
4: डॉक्टर साद परवेज फॉर द टॉक अबाउट द यूनिक इनिशिएटिव।
5: हमारी नेशन में आजकल जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं, तो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट, हमारा भी ये एक रोल बनता है कि हम कैसे इन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक फर्दर डेवलप करें, जो इनोवेटर्स हैं, आइडिया जनरेट जनरेटर्स हैं उनको सपोर्ट करें ताकि दे बिकम द बीकन ऑफ बिजनेस जॉब सीकर्स. वी वांट टू मेक पीपल जॉब क्रिएटर्स एंड जॉब गिवर्स. तो ये हमारा पर्पस है.
4: ग्रीनोवेटर इंक्यूबेशन फाउंडेशन एट NIT वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2022-23 एज अ सेक्शन 8 कंपनी विद द एम ऑफ फॉस्टरिंग एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी इन द रीजन. इट इज सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द ITBI निधि स्कीम विद डॉक्टर साद परवेज सर्विंग एज प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड प्रोफेसर राकेश सहगल एज को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर. परिक्रमा तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर.
2: और अब खेल के मैदान से जीत की खबर. शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है. रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मुहूर्त शामिल थीं.
3: Yes, in an IPL cricket, Lucknow Super Giants were 146 for 5 in 14 overs against Chennai Super Kings at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai. When reports last came in earlier, Chennai Super Kings won the toss and opted to bowl. In another match of the day, Royal Challengers Bengaluru will face Mumbai Indians in Raipur, and the match is scheduled to begin at 7:30 p.m.
2: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
6: In today's episode, we commemorate the anniversary of the First War of Indian Independence that was sparked on the 10th of May 1857. The War of Independence was fed by resentments born of diverse perceptions, including the disturbing of the social fabric, harsh land taxes, and crude treatment of Indian kings, queens, and princes.
7: In May 1857, 85 sepoys of the 3rd Cavalry Regiment, on their refusal to use the greased cartridges, were court-martialed and sentenced to long terms of imprisonment. On the 10th of May, the sepoys shot their officers, released their fellow sepoys, and headed towards Delhi. After the outbreak of the mutiny in Meerut, the sepoys quickly reached Delhi, whose 81-year-old Mughal ruler, Bahadur Shah Zafar, was declared the Emperor of Hindustan.
6: Very soon, the uprising spread throughout northern and central India. Bahadur Shah Zafar in Delhi, Begum Hazrat Mahal in Lucknow, Nana Sahib in Kanpur, Lakshmi Bai and Tantya Tope in Jhansi and Gwalior, Khan Bahadur Khan in Bareilly, Maulvi Liaqat Ali in Prayagraj and Varanasi, and Kuwar Singh in Bihar were the main leaders of the First War of Independence.
7: The East India Company's response came rapidly as well. With help from reinforcements, Delhi was retaken by the end of September. However, it then took the British around 1 year to completely suppress the uprising, which was contained only with the independence activists' defeat in Gwalior on the 20th of June, 1858.
6: The uprising of the First War of Independence shook the foundation of the British East India Company and disclosed their inefficiency in handling the Indian administration. The major impact was the introduction of the Government of India Act 1858, which abolished the rule of the British East India Company and marked the beginning of the British Raj that bestowed powers in the hands of the British government to rule India directly.

0: through representative.
1: और आज भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक शिव कुमार शर्मा की पुण्यतिथि है। संतूर की लोकप्रियता का सर्वाधिक श्रेय शिव कुमार शर्मा को ही जाता है। उन्होंने संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुकूल बनाने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन भी किए। शिव कुमार शर्मा ने अपने पिता उमादत्त शर्मा से शिक्षा प्राप्त करके संतूर वादन की तकनीक और टोन को और उन्नत बनाया और इस कश्मीरी लोकवाद्य को व्यापकता प्रदान की, जिससे ये शास्त्रीय संगीत रागदारी की सर्वांगीण प्रस्तुति में पूर्णतः सक्षम वाद्य बन गया। आइए सुनते हैं उनके संगीत की एक

जिंदगी को गीतों में उतार देने वाले कैफी आजमी साहब की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने कई फिल्मों में शानदार गीत लिखे हैं और हीर रांझा जो 1970 में आई थी, कैफी साहब ने एक इसमें इतिहास कायम किया। उन्होंने पूरी फिल्म शायरी में लिखी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। उनकी फिल्म टूटे खिलौने के गाने भी उन्होंने ही लिखे हैं। आइए एक गीत उनका हम सुनते हैं।

0: एंटरप्रेन्योर।
1: पारिवारिक मूल्यों की फिल्मों के लिए लोकप्रिय राजश्री प्रोडक्शंस के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या की आज जयंती है। फिल्म निर्माता ताराचंद ने 1960 से 1980 के दशक तक पारिवारिक मूल्यों और संस्कृति पर आधारित कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों का निर्माण किया जो अपनी सादगी और पारिवारिक कहानियों के लिए जानी जाती हैं। आइए सुनते हैं गीत गाता चल जो उन्होंने निर्माण किया फिल्म से एक गाना।

0: और इसके साथ ही इजाजत दीजिए जागृति और अभिषेक को, कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं तेलंगाना में बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्बाध कनेक्टिविटी की दिशा में एक बड़ा कदम है।
2: तेलंगाना हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहाँ बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहाँ लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा।
1: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने श्री जोसफ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद रही। प्रधानमंत्री ने सी जोसफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई सरकारी कार्यक्रमों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़े सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और भाजपा नेता मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया है। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वजवाला एमवी होडियंस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को

0: तीन मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सिखाने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16वें ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shri Pratap Shukla, Chief Minister A. Revanta Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, the Prime Minister said, "These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people."
2: Aaj jin projects ka shilanyas aur lokarpan hua hai, isse jahan hazaron hazar naye rozgar banenge aur तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इज इफेक्टिवली मैनेजिंग द एनर्जी क्राइसिस अराइजिंग फ्रॉम द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू द स्टेप्स टेकन बाय द सेंटर, एडिंग दैट द रिस्ट्रेन्ड यूज ऑफ फ्यूल इज द नीड ऑफ द आवर। अमंग द मेजर प्रोजेक्ट्स अनवील्ड इंक्लूड पीएम मित्रा पार्क इन वारंगल, ऑल्सो नोन एज काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क। Prime Minister Modi said, "India is ranked amongst the world's leading economies, with the textile industry serving as one of the strongest pillars of its growth story." He said the sector is now being prepared for a fresh phase of expansion. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, 2 ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibhen Patel administered the oath of office and secrecy at a ceremony held at Janabhavan in Lucknow. Former BJP state president Bhupendra Chaudhary and BJP leader Manoj Pandey were inducted as cabinet ministers. State ministers Ajit Pal Singh and Somendra Tomar were promoted and given independent charge. Meanwhile, Krishna Paswan, Surendra Dilair, Hansraj Vishwakarma and Kailash Rajput were inducted as state ministers. With the latest expansion, the strength of the Council of Ministers in the 403-member Uttar Pradesh Assembly has reached 60, the maximum permitted strength. The founder of Tamilaga Vetri Karagam, TVK actor turned politician C. Joseph Vijay, has been sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Governor Rajendra Vishwanath Harlekar administered him the oath of office and secrecy in a swearing-in ceremony held at Nehru Indoor Stadium. 9 ministers also took oath along with Mr. Vijay. Congress leader Rahul Gandhi, with several personalities from the Tamil film industry, were present on the occasion. During his address, after taking the oath, Chief Minister Vijay

जी हाँ, यूं ही गाते गुनगुनाते इस सफर पे एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो गए हैं हम, लेकर आज बहुत ही प्यारे प्यारे नगमे आप सबके लिए। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का यह FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार। और पहला नगमा हमने लिया फिल्म 1942 लव स्टोरी से, एक बेहद सुपरहिट फिल्म। विधु विनोद चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को निर्देशित किया और फिल्म बहुत ही अच्छी थी। फिल्म में जो सितारे थे उनमें अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ, डेनी चांदनी, प्राण, सभी मजे हुए कलाकार। और फिल्म का संगीत तैयार किया था आर डी बर्मन साहब ने। हालांकि जो फिल्म प्रदर्शित हुई, रिलीज हुई, वो आर डी बर्मन साहब के की डेथ के बाद हुई थी और संगीत पहले ही वो तैयार कर चुके थे। तो चलिए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आप तक पहुंचाते हैं। उससे पहले बता दें कि इस फिल्म ने फिल्म फेयर सम्मान समारोह में कहूंगा कि बिल्कुल 9 पुरस्कार प्राप्त किए और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

श्रोताओं लीजिए सुनिए अगला नगमा हमने लिया है फिल्म अंजाम से। एक बेहद सुपरहिट फिल्म ये भी थी और इस फिल्म को भी काफी पसंद किया गया था और इस फिल्म में शाहरुख खान नेगेटिव रोल में थे और इनके साथ माधुरी दीक्षित, दीपक तिजोरी, हिमानी शिवपुरी, टीनू आनंद, कल्पना अय्यर, किरण कुमार जैसे कलाकार इस फिल्म में शामिल थे और निर्देशक इसके थे राहुल रवेल साहब और

बहुत अच्छी ये फिल्म थी, लोगों ने काफी पसंद किया और इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर से सम्मान भी मिला नेगेटिव रोल को अदा करने के लिए। और इसी फिल्म का एक प्यारा सा नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, स्वर है अभिजीत का और फिल्म में जो संगीत है वो आनंद मिलिंद का है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते शिव प्रकाश के साथ। और अगला नगमा आपने लिया है फिल्म दिलवाले से, स्वर है कुमार सानू का। ये फिल्म भी काफी सुपरहिट फिल्म थी, संगीत है नदीम श्रवण का। फिल्म के निर्देशक हैं हैरी बवेजा और फिल्म को लोगों ने खासा पसंद किया। कलाकार थे अजय देवगन, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, गुलशन ग्रोवर, परेश रावल, रीमा लागू, नवनीत निशान, सईद जाफरी, ये तमाम लोग इस फिल्म में भूमिका अदा कर रहे थे। इसी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, और ये हमारा आज के इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा है। आप बने रहे एफएम गोल्ड के साथ, हंसते मुस्कुराते खुशियां बांटते हुए अपने जीवन में आने वाले सभी लोगों को अपने साथ मिलकर चलें और खुश रहें। इसी पैगाम के साथ चलते चलते ये नगमा आप सबके लिए फिल्म दिलवाले से।

0: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
0: पूर्वोत्तर डायरी।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको लिए चलते हैं असम। 4 मई को असम विधानसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे और असम की 126 सदस्यों वाली विधानसभा का नया कार्यकाल तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में असम में सरकार का नया कार्यकाल शुरू हो रहा है। तो हमारे सहयोगी उत्पल ने इस बार असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ये विशेष रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको सुनवाते हैं।
2: को घोषित हुए असम विधानसभा चुनाव 2026 के परिणामों ने पूरे राज्य में उत्साह और नई उम्मीद की लहर पैदा कर दी है। हेमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 82 सीटों पर जीत दर्ज की, जो वर्ष 2021 में मिली 60 सीटों की तुलना में बड़ा इजाफा है। भाजपा के सहयोगी दल असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में कुल 102 सीटें हासिल कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी सुनिश्चित की। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जो पिछली बार की 29 सीटों से कम है। मतगणना के दिन सुबह से ही असम के शहरों और गांव में लोग टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल फोन से जुड़े रहे और हर रुझान पर नजर बनाए रखी। परिणाम सामने आते ही विजयी दल के समर्थकों ने शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाया। जनादेश पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख किया और ऐतिहासिक जीत को जनता के विश्वास का प्रतीक बताया।
3: गंगा जी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी हम पर बहुत आशीर्वाद रहा है, माँ कामाख्या का आशीर्वाद रहा है। असम की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए पर भरोसा किया है। हैट्रिक, तीसरी बार।
2: प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यह जीत विकास, सुशासन और जनता के भरोसे की जीत है।
3: असम के इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। असम के टी गार्डन्स वाले क्षेत्रों में भी बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। श्रीमंत शंकरदेव जी, महायोद्धा लसित बोरफुकन जी, बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी, भूपेन हजारिका जी, ऐसे अनेक महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हुए असम अपने विकास की रफ्तार अब और बढ़ाएगा।
2: मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने राज्य

0: की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नई सरकार तेज विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी।
1: मैं असम वासियों को धन्यवाद दे रहा हूँ, आपने प्रधानमंत्री जी का ऊपर जो कॉन्फिडेंस दिखाया, हम लोग बहुत ही ग्रेटफुल है और असम में विकास का गंगा बहते रहे, इसलिए भारत सरकार और असम सरकार डबल इंजन सरकार काम करेगा।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए इस जीत का श्रेय राज्य और केंद्र के नेतृत्व को दिया।
2: वी आर सिंसियरली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ असम बिकॉज ऑफ देयर सपोर्ट एंड सिंपैथी एंड ब्लेसिंग दिस पर्टिकुलर हिस्टोरिक मैंडेट वी कुड एबल टू गेट एंड इज अ ग्रेट रिकॉग्निशन टू द क्रेडिबल सर्विस रेंडर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एट द सेंटर एंड ऑल्सो एट द स्टेट डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी द चीफ मिनिस्टर बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ एनकरेजमेंट इंस्पायरेशन दे हैव गिवन टू द पार्टी एज ए लाइक हिस्टोरिक मैंडेट यूज मैंडेट अल्टीमेटली विथ दिस पर्टिकुलर मैंडेट अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हु आर गोइंग टू टेक द एजेंडा ऑफ असम पर्टिकुलरली फॉर द स्पीडी growth and also the self-reliant state in the country.
0: सरकार गठन की प्रक्रिया के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा किए गए इन नियुक्तियों का उद्देश्य सरकार गठन की प्रक्रिया को सुचारू, स्थिर और व्यवस्थित बनाना है। स्पष्ट जनादेश और सरकार गठन की तेज प्रक्रिया के बीच असम के लोगों को उम्मीद है कि राज्य विकास, शांति और बेहतर अवसरों के एक नए दौर की ओर आगे बढ़ेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं करिश्मा राय।
3: असम के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। होम्योपैथी का ये प्रांगण अगरतला में एक लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करता आ रहा है, तो हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य ने रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की अगरतला और त्रिपुरा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भूमिका पर ये एक खास रिपोर्ट हमको भेजी है, आइए आपको सुनवाते हैं।
4: त्रिपुरा के खूबसूरत और हरियाली से भरे खुमुलवंग क्षेत्र में जहां प्रकृति और जनजातीय संस्कृति की अपनी एक अलग पहचान है, वहीं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उम्मीद की एक नई किरण बनकर खड़ा है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अगरतला। साल 2017 में अपने आधुनिक परिसर में स्थानांतरित होने और क्षेत्रीय संस्थान का दर्जा मिलने के बाद इस संस्थान ने अपनी सेवाओं और प्रभाव दोनों का विस्तार किया है। साल 1984 में केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के तहत एक क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के रूप में स्थापित ये संस्थान आज पूर्वोत्तर भारत में शोध और जन स्वास्थ्य का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। जी हाँ, ये कहानी है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अगरतला की। करीब 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले इस संस्थान में आधुनिक ओपीडी, प्रयोगशालाएं, फार्मेसी और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समृद्ध पुस्तकालय मौजूद है। यहाँ डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों की समर्पित टीम मरीजों की देखभाल और शोध कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करती है। हर दिन सैकड़ों मरीज यहाँ निशुल्क इलाज प्राप्त करते हैं। सामान्य ओपीडी सेवाओं के साथ साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा रोमेटोलॉजी जैसी विशेष सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया और फाइब्रोमाइल्जिया जैसी पुरानी बीमारियों का समग्र होम्योपैथिक पद्धति से उपचार किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में हजारों मरीज इस संस्थान की सेवाओं से लाभान्वित हुए हैं, जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। शोध इस संस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ 25 से अधिक बड़े शोध परियोजनाओं पर काम किया गया है, जिनमें कोविड-19 प्रबंधन, मलेरिया रोकथाम, क्रॉनिक किडनी डिजीज, स्कूल स्वास्थ्य और किशोर स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल है। ये अध्ययन होम्योपैथी के वैज्ञानिक आधार को मजबूत करने के साथ साथ जन स्वास्थ्य नीतियों को भी सहयोग देते हैं। संस्थान में आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, जहां हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से जुड़ी जांचें की जाती हैं, जिससे सही निदान और बेहतर

0: उपचार संभव हो पाता है। संस्थान केवल अपने परिसर तक सीमित नहीं है, ये ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों, मलेरिया जागरूकता अभियान, पोषण अभियान और मानसिक स्वास्थ्य पहलों के माध्यम से समाज के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का कार्य भी कर रहा है।
1: Regional Research Institute for Homeopathy Agartala is committed to integrating scientific research with compassionate patient care. Our goal is to make evidence-based homeopathy accessible to every section of society. Under strong leadership and clear vision, the institute is steadily moving towards expanding its capabilities, including plans for advanced diagnostic services and quality improvement up to the benchmark of NABH.
0: मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टि के साथ ये संस्थान लगातार आगे बढ़ रहा है। भविष्य में यहाँ उन्नत जांच सुविधाओं और इंडोर मरीज सेवाओं के विस्तार की भी योजना है।
2: At Regional Research Institute of Homeopathy Agartala, our approach is not restricted only to treating diseases, treating suffering humanity, but we equally emphasize on preventive healthcare and community awareness as important pillars. Through our research initiative, including studies on chronic kidney disease, malaria, then gallbladder cancer, adolescent health, we are working to develop evidence-based and sustainable healthcare solution. Our aim is to integrate homeopathy with modern medicine. Incorporating diagnostic support to ensure safe, effective and patient-centered care. We are also actively reaching out to communities through health camps, school health programs, menstrual health programs and awareness drives, ensuring that healthcare services is accessible in remote areas also.
0: विज्ञान सेवा और सामाजिक प्रतिबद्धता का अनोखा संगम प्रस्तुत करता रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अगरतला आज शोध आधारित और सुलभ स्वास्थ्य सेवा का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। जैसे जैसे ये संस्थान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये एक मजबूत संदेश भी दे रहा है, शोध के माध्यम से उपचार और समर्पण के साथ सेवा, ताकि सभी के लिए एक स्वस्थ और बेहतर भविष्य बनाया जा सके। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ वैष्णवी।
3: श्रोताओं, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में लगातार हमारे देश में नए आविष्कार और नई खोज हो रही हैं और भारत लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। पूर्वोत्तर भारत भी इसमें पीछे नहीं है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक जटिल रेडियोलॉजी की प्रक्रिया को वहां के चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक पूरा किया और इसी कहानी को अपनी एक छोटी सी रिपोर्ट में हमारे सहयोगी मनोज हमें सुना रहे हैं। तो आइए अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज की इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर भारत की चिकित्सा उपलब्धि के बारे में जानते हैं।
4: अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगन स्थित तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ट्रिम्स में पहली बार रीनल आर्टरी स्यूडो एनोरिज्म के लिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी IR प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह संस्थान की उन्नत और न्यूनतम चीरा लगाने वाली चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती क्षमता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये प्रक्रिया रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर वांगजू सुमयान एवं उनकी टीम द्वारा कार्डियोलॉजी एवं यूरोलॉजी विभागों के साथ समन्वय में की गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार मरीज की हालत स्थिर है, अब वो अच्छी तरह से हो रही है। इस जटिल मामले का उपचार एंडोवैस्कुलर कोइल एम्बोलाइजेशन तकनीक के माध्यम से किया गया। ये एक अत्याधुनिक और न्यूनतम चीरा लगाने वाली तकनीक है, जिसके जरिए बिना ओपन सर्जरी के धमनियों की असमानताओं का सटीक उपचार संभव होता है। 40 वर्षीय महिला मरीज किडनी स्टोन की सर्जरी के बाद बाई रीनल आर्टरी में चोट लगने और उसके परिणाम स्वरूप स्यूडो एन्यूरिज्म बनने की समस्या से पीड़ित थी। मरीज को तेज दर्द और पेशाब में खून आने की शिकायत थी। उपचार के दौरान जांग में एक छोटे से छेद के जरिए दो छोटे धातु के कोयल डालकर रक्त स्राव वाली धमनियों को बंद किया गया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपलब्धि संस्थान की चिकित्सकीय क्षमताओं में एक बड़ी उपलब्धि है और अरुणाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। साथ ही ट्रिम्स की अत्याधुनिक इमेज गाइडेड इंटरवेंशन तकनीकों में भी बढ़ती विशेषज्ञता भी इससे उजागर होती है, जो पारंपरिक सर्जरी की तुलना में अधिक सुरक्षित, तेज और अंगों को संरक्षित रखने वाले विकल्प प्रदान करती है। ट्रिम्स के उप चिकित्सा अधीक्षक एवं रेडियोलॉजी विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर वांगजू सुमयान ने कहा है कि ये उपलब्धि उन्नत चिकित्सा तकनीकों के क्षेत्र में ट्रिम्स की आकांक्षाओं बढ़ती क्षमता को दर्शाती है। संस्थान में अलग कैथ लैब के साथ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी सेवाओं की शुरुआत करना लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर सुमयान ने कहा है

की उन्नत आईआर प्रक्रियाओं की शुरुआत से आंतरिक रक्तस्राव, रक्तवाहिका संबंधी चोटों और ट्यूमर एम्बोलाइजेशन जैसी जटिल आपात स्थितियों के उपचार में ट्रिम्स की क्षमता को काफी बढ़ावा देगी। इससे मरीजों के ठीक होने में कम समय लगेगा और जटिलताओं में भी कमी आएगी। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार लोगों और राज्य सरकार के सहयोग से ट्रिम्स पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित होने की अपनी दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।

0: श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत अपनी वस्त्र कला, बुनाई और शिल्प कला में समृद्ध रहा है और पूर्वोत्तर भारत की इस वस्त्र कला शिल्प कला को और समृद्ध बनाने के लिए सरकार ने समय समय पर प्रयास किए हैं। केंद्र सरकार ने लगातार विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की इस समृद्ध कला को देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाया है। मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई कला और पूर्वोत्तर भारत की एरी सिल्क शिल्प कला को मिलाकर पद्मा डोरी कला का उद्घाटन किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने इस पहल की शुरुआत की। तो आइए जानते हैं कि ये पद्मा डोरी कला क्या है और कैसे पूर्वोत्तर भारत अन्य राज्यों की वस्त्र कला और शिल्प कला को एक साझा रूप देकर नए प्रयास की ओर बढ़ रहा है। आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
1: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने पद्मा डोरी नामक एक अनूठी अंतर सांस्कृतिक वस्त्र पहल की शुरुआत की है। ये पूर्वोत्तर भारत की एरी अहिंसा रेशम परंपरा को मध्य प्रदेश की चंदेरी बुनाई की समृद्ध धरोहर के साथ जोड़ती है। इस पहल का औपचारिक शुभारंभ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने किया। इसके बाद एक आकर्षक फैशन शो आयोजित किया गया जिसमें टिकाऊ एरी सिल्क और चंदेरी वस्त्रों की जटिल कलात्मकता के अद्भुत संगम को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर श्री संजय जाजू ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में इस पहल को आकार मिला है जिसका उद्देश्य भारत की विविध वस्त्र परंपराओं को जोड़ना है। उन्होंने बल देकर कहा कि पद्मा डोरी अपनी तरह की एक विशिष्ट पहल है जो मध्य प्रदेश की चंदेरी और पूर्वोत्तर भारत की एरी सिल्क जैसी दो समृद्ध वस्त्र विरासतों का संगम प्रस्तुत करती है, साथ ही नवाचार और परंपरा दोनों को बढ़ावा देती है।
2: As I mentioned, our minister has been personally guiding this entire initiative, and all this has become possible because the Airy rearers from the northeast and weavers from northeast visited Chanderi multiple times, and all this helped in not just technical collaborations and knowledge exchanges, but you know, allowed each one of them exposure to this new fabric. At the same time, a new fabric which also has a lot of design sensibilities involved. After that, designers from Northeast and Madhya Pradesh collaborated with NEHHDC and they've developed not just the innovative fabrics but diversified product range. And I'm certain that this market launch, all these products will be introduced to the market, and I'm sure that the word will go around and all of you will become the brand ambassador for Padma Dori, just as I have become wearing one. I'm absolutely sure that this is going to be a huge milestone in the journey of the handicraft of our country.

कार्यक्रम में विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें वस्त्र और सहयोगात्मक शिल्पकला की झलक देखने को मिली। टिकाऊ विलासिता और स्वदेशी ज्ञान परंपराओं के व्यापक विमर्श के बीच ये पहल आधुनिक बाजारों में पारंपरिक हस्तशिल्प की प्रासंगिकता को भी रेखांकित करती है। 1 मई से शुरू हुई 3 दिवसीय प्रदर्शनी को एक इंटरैक्टिव मंच के रूप में तैयार किया गया, जहां आगंतुक कारीगरों से संवाद कर सकते थे, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते थे और रेशे से कपड़े तक की यात्रा का अनुभव कर सकते थे। पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश के कारीगर इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। वे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और संवाद के माध्यम से अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यक्रम में क्षेत्रीय व्यंजनों का भी विशेष आकर्षण था, जो सहभागी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: तो श्रोताओं, एरी सिल्क को लेकर आपके मन में जिज्ञासा और बढ़ी होगी। आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए हम एरी सिल्क के बारे में अपनी अगली रिपोर्ट में आपको विस्तार से बता रहे हैं और इस रिपोर्ट में आप जानेंगे खास तौर पर मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में एरी सिल्क का बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है। एरी सिल्क पूर्वोत्तर भारत की एक अलग शिल्पकला की पहचान है। ये रेशम कोमलता, अहिंसा और संवेदनशीलता का प्रतीक है और इस रेशम से पूर्वोत्तर भारत के हजारों परिवार अपनी आजीविका कमा रहे हैं। विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण भी एरी सिल्क के माध्यम से हो रहा है। तो आइए, पूर्वोत्तर भारत के आर्थिक तंत्र का एक अहम हिस्सा एरी सिल्क के बारे में आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में सुनवाते हैं।
1: मेघालय के पारंपरिक एरी सिल्क आज अपनी कोमलता, टिकाऊपन और अहिंसा की विशेष पहचान के कारण देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति संवेदनशील सोच और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक बनकर उभरा है। पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय और असम में तैयार होने वाला यह रेशम अपनी अनोखी उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता के कारण अन्य रेशमों से अलग स्थान रखता है। एरी सिल्क को पीस सिल्क या अहिंसा रेशम भी कहा जाता है। इसका कारण इसकी उत्पादन विधि है जो इस दुनिया के अन्य रेशमों से अलग बनाती है। समानता शहतूत या मुगा रेशम में कोकून को उबालकर धागा निकाला जाता है जिससे रेशम के कीड़े की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एरी सिल्क में सामिया रसीनी नामक कीड़ा पहले तितली के रूप में कोकून से बाहर निकलता है और उसके बाद खाली कोकून से धागा तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचता, इसलिए यह रेशम शाकाहारी और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील लोगों के बीच खास पसंद बनता जा रहा है। मेघालय के रीभोई जिले और उमरेन दिवोन क्षेत्र को एरी सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। उमरेन दिवोन को देश का पहला एरी सिल्क विलेज घोषित किया जा चुका है। यह बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवार इस उद्योग से जुड़े हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में लगभग 25,000 से अधिक परिवार एरी सिल्क उत्पादन और बुनाई से जुड़े हैं, जिनमें 90% से अधिक महिलाएं हैं। इस तरह यह उद्योग न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक प्रभावी माध्यम बन गया है। एरी सिल्क की एक खास विशेषता इसकी थर्मोरेगुलेटरी प्रकृति है। यह कपड़ा मौसम के अनुसार शरीर को संतुलित तापमान प्रदान करता है। सर्दियों में यह शरीर की गर्मी को बनाए रखता है जबकि गर्मियों में हवा के प्रवाह को आसान बनाकर ठंडक का एहसास देता है। इसकी बनावट में हल्की ऊनी गर्माहट भी होती है जिसके कारण इसे कई बार असमिया ऊन के नाम से भी जाना जाता है। यही गुण इसे साल भर पहनने योग्य बनाते हैं और इसे दैनिक उपयोग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इस रेशम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है प्राकृतिक रंगों का उपयोग। एरी सिल्क के कपड़ों को रंगने के लिए स्थानीय और जैविक स्रोतों से प्राप्त रंगों

का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पीले रंग के लिए हल्दी, लाल के लिए लैक और नीले या गहरे रंगों के लिए नील का प्रयोग किया जाता है। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और कपड़े की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। प्राकृतिक रंगों के कारण यह वस्त्र त्वचा के लिए भी सुरक्षित माना जाता है। हाल के वर्षों में एरिस सिल्क को मिला जीआई टैग इसकी पहचान को और मजबूत करता है। यह टैग इस बात की पुष्टि करता है कि यह उत्पाद अपने मूल क्षेत्र और पारंपरिक तकनीक से ही तैयार किया गया है। जीआई टैग मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, खासकर जापान और यूरोपीय देशों में इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। इन देशों में ऐसे उत्पादों को अधिक महत्व दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो और जिनका उत्पादन नैतिक तरीके से किया गया हो। आर्थिक दृष्टि से भी एरिस सिल्क उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में इसके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि देखी गई है। बुनकरों को अब सीधे बाजार से जुड़ने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी आय में सुधार हो रहा है। कई क्षेत्रों में बुनकरों की आय में 30 से 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव ग्रामीण स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और नए डिजाइन के माध्यम से एरिस सिल्क को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियान भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे स्थानीय उत्पादों को भी नई पहचान मिल रही है। एरिस सिल्क काफी उपयोगी और टिकाऊ है। इसे घर पर ही हल्के ठंडे पानी और माइल्ड डिटर्जेंट से आसानी से धोया जा सकता है। समय के साथ इसकी बनावट और अधिक मुलायम होती जाती है, जिससे इसकी उपयोगिता लंबे समय तक बनी रहती है। यह गुण इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए भी एक बेहतर विकल्प बनाता है। पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक प्रयासों के मेल से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान दिला रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं करिश्मा राय।

तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए, और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड और अब वक्त है उस सफर का जहां हर धुन एक याद बनकर लौटती है। स्वागत है आपका कार्यक्रम सदाबहार गाने में, जहां हम लेकर आते हैं हिंदी फिल्म संगीत जगत के वो अनमोल गीत जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गए हैं और बन गए हैं सदाबहार। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। किसी की याद, किसी की मुस्कुराहट, किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना, किसी रात की खामोशी, सब कुछ ना जैसे इन धुनों में बस जाता है। तो आइए यादों के इस सफर में हमारे साथ चलिए, जहां हर गीत दिल के किसी कोने को छू जाएगा। मैं हूं नूपुर और आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से सुनते हैं गीत, गाया है लता और किशोर ने। 1972 की इस फिल्म के लिए संगीत रचना की आर डी बर्मन जी ने और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

70s के इसी खूबसूरत दौर से एक और गीत आप तक पहुंचाती हूं। फिल्म कटी पतंग से किशोरदा की आवाज, संगीत आर डी बर्मन जी का, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, और गीत के बाद ठीक 6:20 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार।

मुख्य वार्ता पुनरेकवारम् अद्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना राज्ये प्रायः चतुर्नवति शत कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचना औद्योगिक परियोजनानां च उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अद्य स्वमंत्रिमंडलस्य विस्तारं कृतवान् इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on mutual funds and matters related with them. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
1: धन्यवाद राजेश और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट स्नेहा सूरी। स्नेहा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
0: वार्म वेलकम स्नेहा।
2: थैंक यू।
1: पहले हेडलाइंस के साथ राजेश।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज द नीड ऑफ द आवर इज रिस्ट्रेंड यूज ऑफ फ्यूल अमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स। And domestic investors to focus on economic data, corporate earnings and geopolitical developments for Qs next week.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया संकट की वजह से ईंधन की किफायत जरूरी। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की साप्ताहिक कीमतों में बढ़त और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों की आमदनी और भू राजनीतिक घटनाओं पर।
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Here's the first headline story. Prime Minister Narendra Modi has said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre. Addressing the gathering after inaugurating the laying the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana today, Prime Minister said that the restrained use of fuel is the need of the hour. He added, imported petroleum products should be used only as required, which would help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict. He also said that India has emerged as one of the leading countries in solar power generation. On the oil price impact, speaking exclusively to Akashvani News, Global Head for Energy, Natural Resources and Chemicals at KPMG International, Anish Day, highlighted the efforts of the Indian government to protect citizens from the impact of the closure of the Strait of Hormuz.
3: The Indian government has done very well on this count because this is the immediate shock which citizens were facing for no fault of theirs. And for a large country like us, which is very dependent on flows of crude oil, LPG, even fertilizer through Hormuz, it would be very, very significant shock if it had not been managed well. Fortunately, the government has acted proactively and that part of the problem has been solved or at least addressed quite well given the circumstances.
0: Mr. Day further shared his view on various fiscal and economic consequences for India arising from the current situation.
3: There are three major parts to this problem. The first is the supply and supply chain integrity. The second is financial and fiscal. And the third thing is structural, about what kind of energy choices we make and how do we signal for that. On the second part, we do have a big problem now because, you know, the amount of subsidies which are going into petrol, diesel, LPG, fertilizer are very, very large. And as a consequence, you have a problem of the company balance sheets, oil marketing company or balance sheets being eroded, or you have a problem of the fiscal deficit going up, or a combination of all of that, which is practically what is happening. So the government has given up its diesel excise duties, sharply reduced petrol excise duties, LPG anyway, it gives a large subsidy, and now the cost of LPG going up for buying, it becomes a very, very large support bill for the government as well as for the oil marketing companies. And in fact, it is unsustainable.
0: Snehal, while we wait for the listeners to call us, today is the Mother's Day. So how can we give our mothers the gift of financial security?
2: Right. So, you know, the greatest gift for financial security is the independence that you get from it and thus the awareness regarding that. So, make your mother part of the conversations that happen regarding financial decisions. That is for sure one, because that is something that lacks big time in India, maybe out of interest, or maybe that's just how the society has been working. Secondly, if you know, she's a homemaker, you can of course start an SIP in her name. Just ensure that she knows that. The most underrated gift actually can be nominating her across, let's say, a few of your investments. But make sure she knows where everything is, because more than being aware, you know, nothing else can give you the kind of financial security that is required.
1: जी, और स्नेहा, आपने जब महिलाओं की बात कर रहे हैं, मगर माताओं से थोड़ा और आगे बढ़ के, तो भारत में महिलाओं का काफी बड़ा वर्ग है, बस अपनी आमदनी बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, या कई जगह तो नहीं भी होती है. तो जिनके पास बहुत कम आमदनी है और बहुत कम बचत है, उनके लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करें?
2: बिल्कुल, म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा प्रोडक्ट है. चाहे आपका सरप्लस 500 हो, चाहे आपकी जो बचत है वो 25,000 हो, जैसी भी रहे, म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स आपको ऑफर करता है जो आप मिनिमम से स्टार्ट कर सकते हैं. तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो अभी जिनके पास इतनी बचत है और जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो पहला स्टेप शुरुआत हो जाता है, जैसे मैं पहले बता रही थी. तो एक अच्छा सा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का चुनाव किया जा सकता है, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का चुनाव किया जा सकता है, बट इंश्योर करना चाहिए कि वो स्टार्ट कर दिया जाए.
1: जी, मतलब शुरुआत करना जरूरी है.
2: बिल्कुल,
1: चाहे जब भी हो और जैसे भी हो, चाहे 500 रुपए से हो.
0: लिसनर्स, वी आर रेडी टू टेक योर कॉल्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड मैटर्स रिलेटेड विद देम, एंड द नंबर्स आर 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106.
1: और इंतजार कर रहे हैं मुंबई से रत्नाकर, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
4: हेलो, गुड इवनिंग सर.
1: गुड इवनिंग.
4: मेरा सवाल है कि मेरे पास मेरा ये एसेट्स ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ETF फंड है, और मेरा ये एसेट्स मिड कैप फंड है. तो उसमें दोनों में प्रॉफिट हो रहा है कि मेरा ये एसेट्स में ओवरऑल प्रॉफिट 135% है, और मेरा ये एसेट्स मिड कैप में 39% है. तो उससे मैं बाहर आना कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा? क्योंकि वो इन्वेस्टेड वैल्यू 10,000 है, उसका 23,000 मिल रहा है, इसलिए मैं सोचता हूँ उधर से बाहर आ जाने हैं, और वो फिर इन्वेस्ट करने के लिए और कौन से अच्छे फंड है उसका मुझे सुझाव दीजिए. थैंक यू.
2: रत्नाकर जी, अगर ये दोनों फंड आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दे रहे हैं

0: एंड आपकी मान लीजिए जैसे मिड कैप एलोकेशन जो आपने रखी है उसके लिए आपका मिराए मिड कैप फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, एंड आपकी इंटरनेशनल एलोकेशन के लिए आपने मिराए का ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड रखा हुआ है, तो इनमें बने रहना ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये एलोकेशन और इक्विटी एज एन एसेट क्लास लॉन्ग टर्म वेल्थ अक्यूमुलेशन टूल है। इसको हमें बीच बीच में प्रॉफिट कमाने के लिए कमाने की नजर से ना देखकर इस नजरिए से देखना चाहिए कि लंबे समय में क्या ये आपके जो आगे आने वाले गोल्स आएंगे उनमें आपको अगर बढ़ोतरी दे रहा है, आपका हेल्प होगा इस ग्रोथ से, तो उस ग्रोथ को मैं नहीं बोलूंगी कि आप अभी निकाल लीजिए। जब तक आपको इस पैसे की जरूरत नहीं है आप इसमें बने रहिए। बस ये इंश्योर करिएगा कि ये मिड कैप और इंटरनेशनल एलोकेशन ही नहीं है जो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है, आपके पास फ्लेक्सी कैप जैसे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स भी हैं ताकि आपका ओवरऑल इक्विटी पोर्टफोलियो कंप्लीटेड रहे।
1: जॉइनिंग अस फ्रॉम दिल्ली इज विशाल, वार्म वेलकम विशाल।
2: जी सर, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ ये ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है ये कब तक खत्म होने की संभावना, कोई संभावना है या नहीं?
1: This is a million dollar question.
0: And the million dollar answer to that is not with me.
3: ये तो ईरान और अमेरिका ही बता सकते हैं कि वो कब समझौते पर पहुंचेंगे। इससे सबको उम्मीद है, पूरे बाजार को उम्मीद है कि शायद जल्दी ही इसका इसकी समाप्ति हो जाए।
0: विशाल जी, मैं आपको एक ये सुझाव देना चाहूंगी कि इसका आंसर ना ढूंढकर हम अगर अपने पोर्टफोलियो में एक एसेट एलोकेशन मेंटेन रखें और हम इतना इंश्योर करें कि हमारे पास एक कोर इक्विटी है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का और हमारे पास डेट के लिए फिक्स्ड इनकम के लिए एक एक्सपोजर है, इतना इंश्योर करने से और एसआईपी को डिसिप्लिन तरीके से जारी रखने से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चाहे वॉर हो चाहे कुछ भी हो हमारा पोर्टफोलियो आगे बढ़ता रहे।
3: जी स्नेहा, हम वापस लौटें अगर जो हमारे पहले कॉलर थे रत्नाकर जी कि वो कुछ प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे और फिर उन्होंने कहीं और निवेश करने की भी बात पूछ रहे थे। एक बहुत बुनियादी सवाल है जो हम समय समय पर कार्यक्रम में दोहराते रहते हैं, श्रोताओं को भी बताते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आपको कब बेचना चाहिए, कब रिडीम करना चाहिए। आप एक बार फिर से आज अगर इसे दोहरा दें तो हमारे श्रोताओं को काफी लाभ होगा।
0: बिल्कुल, तो जैसे कि मैं रत्नाकर जी को बता रही थी कि जब तक आपका गोल हिट नहीं हो रहा है, मतलब आपको इस पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है, तब तक आप उसमें बने रहिए। बिकॉज होता क्या है, आप निकाल लेते हैं वो कंज्यूम हो जाता है। जैसे अभी रत्नाकर जी कह रहे थे मैं कहीं और लगा देता हूं, उस कहीं और के चक्कर में अगर वो आप कोई जरूरत आ जाती है जो नेगोशिएबल जरूरत है बट आपके पास होगा पैसा तो आप उसको यूज कर लेंगे, दैट इज वाई वी एंड अप कंज्यूमिंग इट। तो उसका वेट करना चाहिए कि जब तक आपको उसकी जरूरत ना हो। दूसरा, क्योंकि कोई भी अगर इमरजेंसी आती है, आप ये पैसा इसीलिए आपने कमा के इन्वेस्ट करा है ताकि सेविंग्स अकाउंट से आप ज्यादा रिटर्न ले पाए, तो इमरजेंसी में कोई इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये स्टोर्ड है, आप इसका यूज कर पाएंगे। और और आखिरी में बस इतना इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आपने जिस पर्पस के लिए इस फंड में इन्वेस्ट करा था वो फंड ने अपना एक तरीके से कैरेक्टर बदल लिया है, मिड कैप आपको मिड कैप एक्सपोजर नहीं दे रहा, ऑल्दो सेबी के रेगुलेशंस काफी टाइट हैं बट कुछ कैटेगरीज में फंड हाउसेस का स्टाइल चेंज हो जाता है, बट अगर आप उसी स्टाइल के लिए उस फंड में आए थे और वो बदल गए एंड यू आर नॉट ओके विद इट, तब भी आप निकल सकते हैं।
1: डॉक्टर रविंद्र जॉइंस अस नाउ फ्रॉम नोएडा, अ वार्म वेलकम।
4: Yeah, good evening, sir.
1: Good evening.
4: Thank you for Market Mantra. I have one query regarding the EGR, Electronic Gold Receipts. Recently, the NSE is declared. When we trade in Zerodha platform, we could not able to see the EGR trade, EGR related one. How to trade in any trading platform, sir?
3: वैसे रविंदर जी, आज हमारा प्रोग्राम म्यूचुअल फंड्स पर है, इसके लिए अगर आप शनिवार को या और सोमवार को फोन करें तो आपको बेहतर जानकारी मिल पाएगी।
1: सो स्नेहल, इन द करंट एनवायरनमेंट ऑफ एलिवेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हाउ वुड यू एडजस्ट योर रिकमेंडेशंस इन म्यूचुअल फंड्स एसेट एलोकेशन बिटवीन इक्विटी डेट गोल्ड और इंटरनेशनल फंड्स?
3: स्नेहा, इस पर चर्चा से पहले एक और कॉलर के पास चलते हैं जो इंतजार कर रहे हैं। बिहार से टिंकू हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।

0: हेलो टिंकू जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया जी। आप राजेश की चर्चा आगे बढ़ाएं।
1: सो आई वुड से योर एसेट एलोकेशन इज अ वेरी पर्सनल थिंग, एंड वॉट ऑल इज हैपनिंग इन द जियो पॉलिटिकल सिनारियो इम्पैक्ट एवरीबडी वेरी डिफरेंटली. मे बी यू विल बी वेरी काम वेन अ सिचुएशन लाइक दिस अराइजेज एंड कम्फर्टेबल विद द फैक्ट दैट यू ओन 80% इन इक्विटी, इवन दो द फ्लक्चुएशन और वॉलिटिलिटी देयर इज वेरी हाई स्पेसिफिकली ड्यूरिंग सच अ सिनारियो. वाइल लेट्स से आई एम समबडी हु इज नॉट ओके विद इट, एंड this is how at the very beginning what you should aim to do is sit down with yourself, understand your emotional and psychological analysis of your own mind, how comfortable you are with the market. That of course depends how what kind of experience you've had in the market, and sometimes even that experience tells you that okay, while I was okay with 80% equity at this particular point in time, I am not today. So I would say the best way to do so is being aware, like we were discussing in the beginning. And let's say if the current fluctuation makes you very nervous, immediately, move out of equity and move to debt, and aim to maintain that kind of an allocation. But it should not be altered every time such a scenario hits.
0: जी, और लगता है टिंकू जी से हमारा संपर्क फिर से बन गया है। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। हेलो
2: हेलो
0: जी, टिंकू जी सवाल पूछें।
2: हेलो
0: हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछें। लगता है
3: टिंकू जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
0: नहीं, कोई
3: ओके, लेट्स कंटिन्यू ऑन डिस्कशन। हाउ डू मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स टिपिकली अफेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन द शॉर्ट टर्म versus the next 3 to 5 years, especially for the Indian investors?
1: Right. So history and even life instances always suggest that short term impact of anything is too unpredictable and always filled with peak volatility, either upwards or downwards. Generally, what has happened is every time such a scenario has hit Indian markets, of course, people have panicked, there have been too much of selling, prices have gone down, and the red that you see in your portfolio. Having said that, that is the very reason why equity investments should be long term, because when you look at these prices, these kind of numbers, returns, even for a mutual fund portfolio, over a long period of say 3 to 5 years, everything calms down because the storm then looks particularly
3: settled. Are there any funds which are more resilient to the geopolitical shocks, you said?
1: Right. So this leads me back to having some fixed income allocation in your portfolio, because that is the only way to have to maintain balance in a very volatile asset class. You need to have a stable asset class built into your overall portfolio. So hybrid funds become one by the nature and structure of their portfolio. So you have aggressive hybrid, which has 65 equity, 35 debt. Then you have equity savings, which has 33% across equity and debt. So having some let's say hybrid fund in your portfolio, or overall debt funds which can provide you that kind of stability in your fixed income portfolio.
0: जी, अगले कॉलर के पास चलें। दिल्ली से योगेश इंतजार कर रहे हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
4: जी, आप सभी को नमस्कार।
0: नमस्कार।
4: मेरा सवाल यह है कि हमारा ज्यादातर इक्विटी का एलोकेशन सारा म्यूचुअल फंड के थ्रू ही आता है, और इसमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि एक्चुअल ओनरशिप तो डायरेक्ट स्टॉक्स होल्ड करने में ही आती है। अगर हम अपना सारा पोर्टफोलियो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू रखते हैं बिना किसी स्टॉक्स के लॉन्ग टर्म में, और एक बड़ा पोर्टफोलियो, इसमें कितना डिफरेंस है? क्या ये हम एएमसी पे डिपेंड हो रहे हैं या फिर ये इक्वली गुड है?
1: योगेश जी, जहां तक ओनरशिप की बात है, आप डेफिनेटली शेयर्स म्यूचुअल फंड में भी ओन कर रहे हैं, बस एक डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। कंपैरिजन स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स का मोस्टली इस तरीके से होना चाहिए कि आप कितना कंफर्टेबल हैं उस डायरेक्ट ओनरशिप से या फिर कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से, जबकि म्यूचुअल फंड ऑन द अदर हैंड गेट्स यू अ बास्केट ऑफ ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स। तो इसलिए किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के उतार चढ़ाव से आप डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। दूसरी बात जो आपने बोली कि अगर हम एएमसी पे डिपेंडेंट है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इसीलिए

0: बोलते हैं कि एएमसी लेवल डाइवर्सिफिकेशन भी हमें रखनी चाहिए और एक ही एएमसी के पोर्टफोलियो, एक ही एएमसी के फंड्स हम ना रखें अपने पोर्टफोलियो में, बट इसमें किसी तरीके का डर नहीं है क्योंकि एक बहुत ही रेगुलेटरी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर ऊपर से ये पूल्ड व्हीकल हो जाता है जो आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के साथ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ऑफर करता है
1: जी। और अगली खबर पे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है, जिसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 1700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित यह देश का पहला पीएम मित्र पार्क है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के 5F विजन के अंतर्गत एक एकीकृत वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। ये 5F हैं, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन मार्केट। श्री मोदी ने कहा कि एक समय भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था। वस्त्र उद्योग भारत की विकास गाथा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र को विस्तार के एक नए चरण के लिए तैयार किया जा रहा है।
2: वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा, खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं
1: जी। और एक कॉलर अभी इंतजार कर रहे हैं हमारे, दिल्ली से रवि, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
3: सर मैं 10,000 रुपये मंथली SIP चला रहा हूँ, एक साल हो गया मेरे को स्मॉल कैप में, तो मैंने इसका गोल 15 साल का रखा है, तो इसमें चक्रवर्ती ब्याज लगता है, चलता है क्या?
0: क्या चलता
1: है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है क्या, ये जानना चाहते हैं।
0: अच्छा रवि जी, बिल्कुल म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो आप जब SIP के माध्यम से कुछ इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो ग्रो होता है, फिर जब आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो इन पे बिल्ड अप क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है वो उस तरीके से कंपाउंड होता रहता है। यही एक खूबी है इक्विटी एज एन एसेट क्लास की, और तभी इसको हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज करते हैं
1: जी। और हम प्रधानमंत्री की खबर पे आगे बढ़े तो उन्होंने आज हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टी ट्रैकिंग गलियारे में काजीपेट अंडर रेल बाईपास और हैदराबाद में एक नए ग्रीन फील्ड पेट्रोलियम तेल और लुब्रिकेंट टर्मिनल सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को झंडी दिखाकर शुरू किया।
4: स्नेहल, व्हाट काइंड ऑफ ड्रॉडाउन्स और वॉलेटिलिटी इन म्यूचुअल फंड्स शुड इन्वेस्टर्स रियलिस्टिकली बी प्रिपेयर्ड फॉर इफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस एस्केलेट फर्दर, एंड हाउ लॉन्ग डू सच फेजेस यूजुअली टेक टू नॉर्मलाइज हिस्टोरिकली?
0: राइट, सो हिस्ट्री सजेस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्मलाइजेशन इट डिफर्स फ्रॉम इवेंट टू इवेंट। Let's say the situation can last for because the particular situation is such which is out of it is an uncontrollable event, thus the kind of volatility, the long term impact or the timeline is of course unpredictable. So that of course history suggests. As far as your question regarding what kind of drawdown an investor should be prepared, so a market linked in asset class like equity, the drawdown can range from different categories and different kind of underlying stocks. So let's say a penny stock or a small cap stock, of course, will give you a lot of or massive drawdowns, even a 50%, 80% kind. Whereas a large cap stock may not give you that kind of volatility. So the best thing which remains in your control when building a portfolio is thus to have limited kind of an asset allocation or a portfolio allocation when it comes to small cap or mid cap kind of funds, whereas have more allocation to diversified funds.
4: So in such a scenario, the big question that everyone has is, should I continue with my SIP? Should I kind of increase, decrease, or, you know, pause my SIP under conditions such as the ones which we are discussing?
1: क्योंकि अनिश्चितता से ये घबराहट तो होती है.
0: बिल्कुल, वो घबराहट जब आपके इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, तो बिल्कुल अब आपके पैसे आपके लिए वरी क्रिएट कर रहे हैं, ना ही यू नो द पीस और काम दैट दे शुड ऑफर. तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल आपको या तो अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए कि आप बार बार अपना पोर्टफोलियो खोल के ना देखें. वो अगर नहीं हो पाता है तो बिल्कुल आपको पॉज ले लेना चाहिए, बट आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि द वेरी रीजन आप जिसके लिए आए होंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करने के माध्यम से. तो यहां पे भी एक एसेट एलोकेशन की बात आ जाती है. जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आप अपना इक्विटी चाहें तो उस टाइम पर रिड्यूस कर लें और डेट बढ़ा दें.
1: चलिए और देखते हैं सोने और चांदी का क्या हाल रहा है. पिछले हफ्ते भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जुलाई अनुबंध के लिए चांदी वायदा इस हफ्ते लगभग 4.4% उछलकर 2,61,922 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. जून अनुबंध के लिए सोना वायदा में सप्ताह के दौरान 0.8% की बढ़त आई और यह 1,52,530 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. दो हफ्ते की गिरावट के बाद अब इसका रुख बदला है. इसी हफ्ते में जून वायदा का कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 1.8% बढ़कर $4,730.70 प्रति ट्रॉय अंश पर बंद हुआ, जबकि जुलाई वायदा की चांदी 5.8% बढ़कर $80.87 प्रति ट्रॉय अंश पर आ गई. एक कॉलर इंतजार कर रहे हैं चेन्नई से. राजा, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
5: गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर. हेलो,
4: प्लीज कंटिन्यू.
5: सर, आई हैव अ बेसिक क्वेश्चन. लाइक मैम सेड अर्लियर फॉर समबडी, हाउ टू बुक द प्रॉफिट इन दिस वन म्यूचुअल फंड व्हेन वी आर हैविंग 70-80% प्रॉफिट, हाउ टू रिडीम और एक्युमुलेटिव मींस व्हेन आर दे, व्हेन डू दे गेट एक्युमुलेटेड. I mean, like a person that it should be added with the principal amount. Now, when are they doing that? Okay, I don't.
0: So, Rajaji, if I have been able to understand your question, you are wanting to know when, how to book profit.
4: When to book.
0: Okay. Hmm. So, profit booking as a concept can be very, you know, sort of part of your portfolio. Let's say, like we were discussing, when you're not comfortable with a particular fund going to a certain level of profits, that is particularly an individual's call, although that is not something that should worry you to redeem it because you're investing to save for your future. But if you're still wanting to redeem, of course, you can consider the kind of taxation limit. You know, the long-term capital gain tax gets you exemption till 1.25 lakh. You can aim to book your profits around that particular limit so that you can book your profits with tax efficiency.
1: जी, और एफपीआई की हालत यह है, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को एफपीआई ने मई के पहले सप्ताह में 14,231 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे हैं. इस साल अब तक भारतीय शेयर बाजार से एफपीआई की कुल बिकवाली 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है, जो पिछले साल की उनकी कुल बिकवाली से ज्यादा है.
4: आफ्टर रजिस्टरिंग गेन्स फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव वीक, डोमेस्टिक मार्केट्स आर लाइकली टू फोकस ऑन की इकोनॉमिक रिलीजेस, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्टिविटी फॉर क्यूज इन द वीक अहेड.
1: और स्नेहा, मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी, धन्यवाद.
4: And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says the need of the hour is restrained use of fuel amid West Asia crisis. In bullion market, gold and silver prices log weekly gains, and domestic investors to focus on economic data, corporate earnings and geopolitical developments for Qs next week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
6: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से देश पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री इस समय सिकंदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: जब दक्षिण से लेकर पूर्वोत्तर तक बीजेपी को हाशिए की पार्टी माना जाता था, लेकिन आज भारत का जनमानस बता रहा है, विचार अगर राष्ट्र के लिए हो तो उसकी हुंकार को कोई सीमा रोक नहीं पाती।
0: प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तमिलगवेत्री कडगम टीवीके पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुना गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में एक कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। ये नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे वर्तमान में नौसेना में उप नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15वें ओवर में 3 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: सुर्खियों में नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं जया भारती। आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक और तेलंगाना दौरे तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हैदराबाद, वारंगल, संगारेड्डी और बेंगलुरु में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई अहम परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया तथा बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में भी हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के साथ की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ध्यान, मानसिक स्वास्थ्य, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक सेवा से जुड़े विभिन्न राष्ट्रीय अभियानों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने संस्था के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे आंतरिक शांति और समग्र कल्याण के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की कई उपलब्धियों के पीछे युवाओं की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आर्ट ऑफ लिविंग जैसी संस्थाएं युवाओं को आधुनिक दौर की चुनौतियों का सामना करने और उनके समाधान खोजने में मदद कर रही है।
1: साथियों, बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है।
0: द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में भाग लेने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने आज के दिन यानी 10 मई के ऐतिहासिक महत्व की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी दिन वर्ष 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी भड़की थी, जो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन में बदल गई और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने साहस और वीरता की इसी विरासत को देश की सबसे बड़ी ताकत बताया।
1: 10 मई की ऐतिहासिक तारीख है। 1857 में आज के ही दिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूटी थी। समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया। शौर्य और सामर्थ्य की विरासत ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है। 11 तारीख को मैं गुजरात के सोमनाथ में रहूंगा। वहां सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच देश के हितों की रक्षा के लिए संसाधनों का संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने इस संबंध में लोगों से विशेष अपील करते हुए जिम्मेदारी और जागरूकता के साथ संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया।
1: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है।
2: और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु

0: केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं, देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: बेंगलुरु के कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के अंतर्गत गुडिबल्लूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 को 4 लेन करने की परियोजना की आधारशिला रखी। करीब 3,175 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से यात्रा समय में लगभग 1.5 घंटे की कमी आएगी, साथ ही ईंधन की बचत और लॉजिस्टिक्स दक्षता में भी सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र की नींव रखी। यह क्षेत्र हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के तहत विकसित किया जा रहा है। करीब 3,245 एकड़ में बनने वाली इस परियोजना पर 2,350 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के पास स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र सड़क, रेल और हवाई संपर्क से जुड़ा हुआ है। यहां ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे उद्योग स्थापित किए जाने हैं। इस परियोजना से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। ये पार्क काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह से तैयार पीएम मित्र पार्क है, जो लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है।
0: अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं।
1: ये पार्क किसानों से लेकर कपड़ा उद्योग और निर्यात तक पूरी प्रक्रिया को एक ही जगह जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्क में सड़क, बिजली और पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष जल शोधन व्यवस्था भी तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके तहत काजीपेट विजयवाड़ा रेल लाइन के कई हिस्सों में नई लाइन और अतिरिक्त ट्रैक तैयार किए गए। इससे ट्रेनों की आवाजाही तेज होने, भीड़ कम होने और माल ढुलाई में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हैदराबाद में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए रेलवे बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, जबकि आज अकेले तेलंगाना के लिए रेलवे बजट करीब 5,500 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। साथ ही राज्य में इस समय लगभग 50,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
0: साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना, संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1,000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहाँ काम चल रहा है।
1: इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का भी लोकार्पण हुआ। इससे रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों की भीड़ कम होगी और ट्रेनों के संचालन में

0: भी तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में इंडियन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का भी लोकार्पण किया। 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार इस परियोजना को क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति मजबूत करने और बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण किया। ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया एक बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। 18 मंजिला यह अस्पताल करीब 21 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। अस्पताल में 1500 बिस्तरों की सुविधा है। यहाँ 150 से अधिक डॉक्टर परामर्श कक्ष और 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। अस्पताल में कैंसर से जुड़े कई तरह के इलाज की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इनमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कैंसर सर्जरी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही आधुनिक जांच लैब और ब्लड सेंटर की सुविधा भी दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तेलंगाना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि साइबराबाद आज देश और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और ये तेलंगाना तथा देश के तेज विकास का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के उद्देश्य से कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के लिए तेलंगाना के लोगों को भी बधाई दी।
1: साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहां हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है, किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और राज्य के उद्योग, एमएसएमई तथा स्टार्टअप विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि तेलंगाना का विकास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने ये आश्वासन भी दिया कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए तेज गति से काम करती रहेगी।
1: आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। यहाँ का किसान नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ के उद्योग, यहाँ के एमएसएमई, यहाँ के स्टार्टअप सब एक विकसित तेलंगाना के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी।
0: कर्नाटक और तेलंगाना की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सामाजिक विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं की सौगात दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना, विकास को गति देना और देश में बेहतर संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना है। ये सभी परियोजनाएं विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करती है। इन परियोजनाओं से न केवल दक्षिण भारत में संपर्क और निवेश को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, जिसे लिखा है हमारे सहयोगी अनिकेत ने। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल और समय हुआ है शाम के 7:25 और 40 सेकंड। स्वागत है आपका कार्यक्रम सांझ ढले में, जहां हम बात करते हैं उस खूबसूरत पल की जब दिन धीरे धीरे रात में ढल जाता है। ढलती हुई धूप का यह आखिरी रंग आसमान में मानो जैसे कोई ख्वाब ठहर गया है। सांझ की खामोशी में कुछ ऐसा है जो हर दिल को अपने पास बुला लेता है, छू जाता है हर दिल को। शाम का यह वक्त कुछ खास होता है, थोड़ा सुकून, थोड़ी यादें और ढेर सारी बातें। तो आइए इन पलों को थाम लेते हैं और इस शाम को सुरों और एहसासों के साथ जीते हैं, जी भर के। मैं अनुपुर और आप सुन रहे हैं सांझ ढले एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पहुंच रहा है आप तक आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वरों में ये गीत फिल्म खेल खेल में से, और बहुत ही प्यारा ये गीत है। एंजॉय कीजिए इसको आज की शाम।

भाई यूँ तो चाय का कोई वक्त नहीं होता है, लेकिन फिलहाल जो मौसम का तकाजा है वो ये कि चाय का वक्त अब खत्म हो चुका है और घरों में धीरे धीरे डिनर की तैयारियां शुरू हो रही हैं। कहीं किचन में बर्तनों की आवाज है तो कहीं सड़क पर गाड़ियों की कतारें। संडे है, शायद ऑफिस की भागदौड़ तो नहीं होगी आज, शायद कुछ लोगों के लिए हो भी जिनको ऑफिस संडे को भी रहता है। पर अगर आप इस वक्त ऑफिस से घर लौट रहे हैं या कहीं काम से जा रहे हैं तो ऐसे में ना हर किसी की अपनी अपनी जल्दी होती है। आप सड़क पर हैं इस वक्त, बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो एक छोटी सी बात आपके लिए जो आप पहले से ही जानते हैं, शाम का ट्रैफिक है तो जरा एक्स्ट्रा सावधानी रखिए, सीट बेल्ट लगाना ना भूलिए, स्पीड को कंट्रोल में रखिए और मोबाइल से थोड़ी देर के लिए दूरी बना लीजिए। जल्दी पहुंचना जरूरी नहीं, सुरक्षित पहुंचना जरूरी है और ऐसे में थोड़ा सा ठहर कर इस पल को महसूस करना भी जरूरी है, क्योंकि ये शाम धीरे धीरे ठंडक और सुकून में तब्दील हो रही है। और ऐसे पलों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रही हूँ फिल्म दोस्ताना से, आवाजें वही प्यारी सी किशोरदा और आशा ताई की, चलिए मिलकर सुनते हैं ये नगमा।

0: मधुर गीत संगीत के बीच कुछ जरूरी बातें आपके लिए एफएम गोल्ड पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम सांस चले पहुंच रहा है आप तक गीत फिल्म रफू चक्कर से आवाजें शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले जी की और गीत के बाद ठीक 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।

0: हमेशा
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: आरबीआई कहता है,
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
6: ओह लवली, वेल डन,
7: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
6: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
8: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
6: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
8: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
6: आप कौन?
9: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
10: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर उठाया जा रहा है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज सम्पन्न। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने दरियागंज में नशा मुक्ति संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जागरूकता अभियान चलाया। और फिट इंडिया कार्यक्रम में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में दिल्ली जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
11: इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर, स्वच्छ और सुचारू जलापूर्ति उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री सिंह ने कहा कि नई पाइपलाइन परियोजनाओं से पानी की आपूर्ति में सुधार होगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है, ताकि हर बस्ती तक विकास का लाभ पहुंच सके। स्थानीय निवासियों ने परियोजनाओं के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि इससे क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
10: दक्षिणी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर लगातार उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें सैनिक फार्म, वसंत कुंज एनक्लेव और छतरपुर एनक्लेव जैसी प्रमुख कॉलोनियां शामिल हैं। वसंत कुंज एनक्लेव में आरडब्ल्यूए द्वारा आयोजित एक जनसभा में श्री बिधूड़ी ने कहा कि इन कॉलोनियों में सभी मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियमित करण आवश्यक है और इस दिशा में जल्द ही सकारात्मक निर्णय आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी सांसदों ने हाल ही में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हो गया। 9 और 10 मई को नवीन शहादरा, उत्तर पूर्व नई दिल्ली और करोल बाग जिलों में आयोजित इन शिविरों में संगठनात्मक विषयों, कार्यकर्ता विकास और जनसंपर्क कौशल पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
12: इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें विकास के अवसर प्रदान करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए संकल्प और प्रशिक्षण दोनों समान रूप से आवश्यक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता संगठन की सबसे बड़ी शक्ति है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि सेवा, सुशासन और जन कल्याण की नीतियों के कारण आज देश भर में भाजपा की विचारधारा का विस्तार हुआ है और जनता का विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। प्रादेशिक समाचार के लिए ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
10: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों से सहयोग की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि सभी दिल्लीवासी और यहां आने वाले लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, जिससे राजधानी

को बेहतर यातायात वाला शहर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन न केवल सड़क पर जाम और दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक है, बल्कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने इसे प्रत्येक नागरिक की मौलिक जिम्मेदारी बताया। उपराज्यपाल ने वाहनों की सुनियोजित पार्किंग तथा हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर भी जोर दिया, ताकि यातायात सुचारू रहे और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राजधानी में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रेलवे ने उत्तर पश्चिम दिल्ली की दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बताया कि मुखरबा चौक पर जाम की समस्या कम करने के लिए हैदरपुर बादली स्थित आउटर रिंग रोड पर मौजूदा रेलवे ओवर ब्रिज यानी आरओबी के चौड़ीकरण को रेलवे की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही शालीमार बाग से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक प्रस्तावित एलिवेटेड लूप परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तर पश्चिम दिल्ली में यातायात दबाव कम होगा और लोगों को तेज, सुरक्षित तथा निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल एएनटीएफ ने पुरानी दिल्ली के दरियागंज क्षेत्र में राजधानी को नशामुक्त करने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एक जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना और समाज को नशामुक्त बनाने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का आयोजन उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान पुलिस टीम ने लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके अलावा पैम्फलेट तथा ग्राफिक्स के माध्यम से नशे की गंभीरता को सरल तरीके से समझाया गया और प्रतिभागियों को 24 घंटे उपलब्ध 1933 मानस हेल्पलाइन की जानकारी दी गई। दिल्ली सरकार ने संस्थागत देखभाल छोड़ने वाले युवाओं के लिए आफ्टर केयर स्कीम फॉर यंग पर्सन्स को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मातृ दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल बच्चों को संरक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर भविष्य उपलब्ध कराना है। राजधानी में लाजपत नगर स्थित विलेज कॉटेज होम में बच्चों से मुलाकात के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कहा कि कोई भी बच्चा या युवा खुद को अकेला, असहाय या उपेक्षित महसूस न करे, इसके लिए सरकार 18 वर्ष की आयु के बाद भी उनका साथ देगी। उन्होंने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 3.5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मातृ दिवस के अवसर पर देशवासियों, विशेषकर समस्त माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज देशभर में मातृ दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से माताओं के त्याग, स्नेह और समर्पण को याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां केवल एक संबंध नहीं, बल्कि वात्सल्य, त्याग, संस्कार और अटूट स्नेह की वह शक्ति है जो जीवन को दिशा और संवेदना प्रदान करती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज मदर्स डे के अवसर पर राजनिवास में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान श्री संधू ने कहा कि थैलेसीमिया से जूझ रहे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बच्चों के साहस और संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि ये बच्चे दृढ़ इच्छा शक्ति और हिम्मत का प्रतीक हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने मदर्स डे के अवसर पर कालीबाड़ी मार्ग स्थित आशीर्वाद वृद्धाश्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। इस बार संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। भारतीय सेना ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत

0: कश्मीर स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। पहलवान दीक्षा मलिक ने कहा कि संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और हर व्यक्ति को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए।
1: मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों को इतना एनर्जी में देख के, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छे से खेलते हैं, साइकिलिंग करते हुए।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वर्ष 1857 में आज ही के दिन हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब देशवासियों ने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद किया और राष्ट्रभक्ति की अमर ज्योति प्रज्वलित की। राजधानी में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने घोषणा की है कि राजधानी के सभी 13 जिलों में कल से एक विशेष सेवा अभियान चलाया जाएगा। राजधानी के पूट खुर्द स्थित अपना घर आश्रम में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को आश्रम लाया जाएगा, जहां उनके चिकित्सा उपचार, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। श्री सिंह ने बताया कि 5 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग, अपना घर आश्रम और सेवा भारती दिल्ली प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए 19 विशेष वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्देश्य 300 से अधिक लोगों तक सहायता पहुंचाना है। श्री सिंह ने बताया कि अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वन विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें समाज कल्याण विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार इस 5 दिवसीय अभियान के दौरान 2400 घंटे समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने प्रकाश विहार क्षेत्र में जल बोर्ड की नई पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, राजधानी की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नियमित करने का मुद्दा केंद्र और अन्य स्तरों पर उठाया जा रहा है। दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज सम्पन्न। दिल्ली पुलिस के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ने दरियागंज में नशा मुक्ति संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जागरूकता अभियान चलाया और फिट इंडिया कार्यक्रम में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know na.
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
7: Oh lovely, well done.
6: Business loan approved.
7: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
8: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
7: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
8: कार में तो मेरी फोटो तो ले लो।
7: आप कौन?
9: RBI कहता है,
10: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: संयुक्त पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास जताया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। श्री मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि इसने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना का कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। यह नौसेना कमान भारत के पश्चिमी समुद्री मोर्चे और अरब सागर के प्रमुख समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। वे वर्तमान में नौसेना में उपसेना प्रमुख रूप में कार्यरत हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये मामला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए उर्विल पटेल ने 23 गेंद में शानदार 65 रन की पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 6 ओवर में 3 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। उधर शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोद शामिल थी। सेमीफाइनल में इस भारतीय तिकड़ी ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety, and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shiv Pratap Shukla, Chief Minister A. Revanth Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy, and other senior leaders.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक 8:15 से आप सुनेंगे आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर, जो आज समर्पित है स्वर्गीय गायक तलत महमूद जी को। प्रोग्राम से पहले आइए सुनते हैं ये गीत तलत महमूद साहब की मखमली आवाज में फिल्म सुजाता से। संगीत SD बर्मन का है और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

0: This is Akashvani. We now bring you Swar Dharohar based on the archival inputs of Akashvani.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है आकाशवाणी आर्काइव्स के सहयोग से निर्मित कार्यक्रम स्वर धरोहर।
0: हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत में गहरी रुचि थी।
2: ये तो मुझे खुद भी याद नहीं है सही तरीके से, लेकिन बहुत ही छुटपने से जब से मैंने होश संभाला है, कुछ लोगों ने मुझसे गाना शुरू किया कि मेरी आवाज अच्छी है,
3: इसमें तो कोई शक नहीं।
2: बस उसी

0: वक्त से फिर मैंने गाने की कोशिश शुरू कर दी और घर में अपने भाई बहनों के साथ, मेरे भाई बहनों की भी आवाजें अच्छी हैं, वैसे तो हम लोग म्यूजिकल फैमिली से तो नहीं है लेकिन आवाजें सबकी इत्तेफाक से अच्छी हैं। मेरे वालिद साहब भी बहुत अच्छी आवाज के मालिक थे, तब से ही मैंने कुछ गुनगुनाना शुरू किया और उसके बाद जब जरा स्कूल में आया और थोड़ा होश संभाला तो सहगल साहब को सुना मैंने। सहगल साहब जैसा गाने वाला तो मेरे ख्याल में न पैदा हुआ है न पैदा हो सकेगा, उनका मैं बेहद मद्दा हूं और उन्हीं की वजह से आज मैं गा बजा रहा हूं।
1: उन्होंने पंडित SCR भट्ट से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और गजल गायन से अपने करियर की शुरुआत की।
0: उसको तालीम तो नहीं कहा जा सकता है, गंडा बांध के जो एक तरीका होता है वो तो नहीं किया मैंने, लेकिन हमारे लखनऊ में बहुत मशहूर कॉलेज है, मैरिस म्यूजिक कॉलेज जिसको कहते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा,
2: भातखंडे।
0: जी हाँ, भातखंडे।
2: जी,
0: तो उसमें मैंने 3 बरस सीखा है।
3: 16 वर्ष की आयु में उन्होंने आकाशवाणी लखनऊ पर गाना शुरू किया। 1941 में हिज मास्टर्स वॉइस यानी HMV ने उनका पहला डिस्क जारी किया।
0: तो वहाँ से फिर 1941 में कुछ HMV के लोग आए थे कि जो नए आर्टिस्टों की तलाश में थे, तो हमारे यहाँ के एक ग्रामोफोन कंपनी के डीलर्स थे, उन्होंने उनको बताया था कि एक नए सिंगर यहाँ पे, कल अच्छा नाम हो रहा है उनका, उनका नाम है तलत महमूद। तो HMV वाले मुझसे मिले आकर और उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 3 गानों का। लखनऊ में पढ़ रहा था तो कुछ मुझे बताया लोगों ने कि भाई HMV से कुछ लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो खैर मैंने उनसे बातचीत की, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया और ये तय हुआ कि मैं कलकत्ते जाकर 3 रिकॉर्ड करूंगा।
2: तो उस वक्त कलकत्ता जाना क्या मजबूरी थी, कहीं और रिकॉर्डिंग नहीं होती थी?
0: जी नहीं, और कहीं नहीं हो सकती थी।
2: अच्छा अच्छा।
0: कलकत्ते में डमडम ये जगह है जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, आज भी वहीं पे हो रही है रिकॉर्डिंग, तो ये एक जमाने से चला आ रहा है वहाँ पे।
2: अच्छा अच्छा।
0: तो मैं वहाँ पे तकरीबन 1941 में शुरू में ही गया वहाँ और 3 गाने मैंने रिकॉर्ड किए। सबसे पहला जो गीत था मेरा वो उसके बोल हैं, सब दिन एक समान
2: जी,
0: वो बहुत अच्छा मकबूल हुआ।

0: आकाशवाणी से अपने जुड़ाव के विषय में बताते हुए तलत महमूद ने कहा था,
1: ऑल इंडिया रेडियो ने भी मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। 1947 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो पर चंद गालिब और इकबाल की गजलें पेश की थी जो बहुत पसंद की गई। तो सच पूछिए तो वैसे रेडियो ही से मैंने अपनी जिंदगी का आगाज किया है।
2: तलत महमूद लखनऊ से कलकत्ता आ गए और वहाँ उन्हें काफी सफलता मिली। उन्होंने करीब 16 फिल्मों में अभिनय किया। तपन कुमार के नाम से बांग्ला गीत भी रिकॉर्ड किए।
1: वैसे तो आप ये ख्याल कीजिए कि मैंने तकरीबन हिंदुस्तान की तमाम जुबानों में गाए हैं
3: जी,
1: सिवाय तमिल के सब जुबानों में गाए मैंने। बंगाली में जुबान बहुत से गाने किए
3: जी,
1: और वो बहुत ही पॉपुलर हुए, जैसे कि मेरे हिंदी गाने पॉपुलर हुए
3: जी,
1: उसी तरीके से बंगला चले।
3: अच्छा, तो बंगला गानों में नामकरण आपका कुछ और हो गया था क्या?
1: वो थोड़ा सा कुछ उन्होंने अपने उस वक्त को देखते हुए तपन कुमार मुझे नाम दिया था।
3: तपन कुमार
1: जी हाँ।
3: अच्छा अच्छा,
1: अब उसके बाद तो फिर लोगों को पता चल गया तो तपन कुमार के सामने ब्रैकेट में तलत महमूद आने लगा।
3: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन शुरू में था थोड़ा सा बिजनेस ट्रिक की वजह से उन्होंने
3: जी
1: ये चीज की थी।
2: 1949 में वो कलकत्ता से मुंबई पहुंचे। संगीत निदेशक अनिल बिस्वास ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म आरजू में अवसर दिया।
0: उनका गाया गीत ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल बहुत लोकप्रिय हुआ और उन्हें पहचान दिलाई।
2: अनिल बिस्वास के साथ अपने अनुभव को तलत महमूद ने इन शब्दों में व्यक्त किया।
1: 1949 में मैं कलकत्ते से बम्बई आ गया और हालांकि मेरे सभी गाने सब म्यूजिक डायरेक्टर ने सुने थे और मेरे काम और आवाज से वाकिफ थे, लेकिन जिसके पास भी मैं गया उन्होंने यही कहा कि भाई फिल्म का तो आपको एक्सपीरियंस है नहीं। मुझे ताज्जुब भी होता था और अफसोस भी, लेकिन इसी दौरान में अनिल बिस्वास साहब का एक पैगाम मुझे मिला कि तुम आओ, तुम्हारा गाना रिकॉर्ड करना है। मैं अनिल से मिला, पूछा कि आपने मेरे माइक्रोफोन के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ पूछा ही नहीं और सीधा गाने रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो गए। तो उन्हें भाई कि तुम्हारे 300-400 रिकॉर्ड जो हैं वो क्या ये साबित नहीं करते हैं कि तुम गाने वाले हो और तुमको माइक का एक्सपीरियंस है। मैं अनिल दा का बहुत एहसानमंद हूं कि उन्होंने पहला गाना फिल्म आरजू के लिए मेरी आवाज में रिकॉर्ड किया।

0: तलत महमूद ने संगीत निर्देशक मदन मोहन के साथ भी अनेक गीत रिकॉर्ड किए। मदन मोहन को याद करते हुए उन्होंने कहा था,
1: मेरी मुलाकात मदन मोहन से लखनऊ में हुई और हमारी काफी दोस्ती बढ़ी और ये इकरार हुआ था कि जब भी कभी मैं बॉम्बे आऊंगा तो मदन के साथ काम करूंगा। लेकिन और इत्तेफाक से कुछ ज्यादातर पिक्चरें उनके साथ चली और बहुत अच्छे अच्छे गाने चले उनके मदन के, और आखिर में जहां नारा में उनके साथ मैंने काम किया।

0: इसके बाद उन्होंने शाम गम की कसम, तस्वीर बनाता हूँ जैसे गीत गाए।
1: इन गीतों ने उन्हें रोमांटिक और करुण भावनाओं का प्रतीक बना दिया।
0: 1950 और 60 के दशक में तलत महमूद गजल गायकी के लिए पहली पहचान माने जाते थे।
2: जब मैंने शुरू किया था तो थोड़ी सी तब्दीली मैंने कोशिश की थी कि लाऊं, उसको और हल्का रंग दिया था मैंने,
3: आसान बनाया।
2: जी हाँ, मगर आजकल मैं देख रहा हूँ कि फिर वही सिलसिला शुरू हो गया कि वो अपने एक एक घंटे में, दो दो घंटे में एक एक मिसरा गाया जाता है गजल का। आजकल फिर वही सिलसिला शुरू हो गया और मेरे ख्याल में पता नहीं इसका खत्म कहाँ होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।
3: तो यानी गजल में आप ये तान और अलाप है इसका इस्तेमाल जो है वो जायज नहीं समझते?
2: नहीं, एक हद तक जायज है, जहाँ तक कि अशार को नुकसान न पहुंचे, उसके मीटर को, बहर को नुकसान न पहुंचे और अल्फाज खराब न हो। अल्फाज तक खराब कर देते हैं लोग आजकल, मुश्किल ना एक मिसरा आपको आधे घंटे में सुनाया जाए तो आप क्या समझे कि उसके बाद दूसरा मिसरा भी उसी आधे घंटे में, तो बेचारा शायर भी बेकार, इतनी उसने मेहनत की और सुनने वाला तो परेशान है कि क्या कह रहे हैं और क्या शायर ने क्या कहा, तो ये तो परेशानी हो जाती है।
0: मोहम्मद रफी और किशोर के साथ वो फिल्मी पार्श्व गायन में छाए हुए थे। उन्होंने 1940 से 1980 के बीच 800 से अधिक गीत गाए।

0: श्रोताओं, एक प्रसंग ये भी है कि जब मुकेश आर्थिक संकट में थे तब तलत महमूद ने उन्हें मधुमति फिल्म के गीत को गाने का अवसर दिया।
1: ये उनकी उदारता और सहृदयता का उदाहरण है।
2: मैं अपने बहुत अजीज दोस्त मुकेश के बारे में चंद बातें आपको सुनाऊं। हम दोस्त होने के साथ साथ हमराज भी थे और खास तौर से प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन की वजह से हम दोनों में बहुत कुर्बत हो गई थी, क्योंकि हमारे साथ तमाम इंडस्ट्री के मसाइल थे। उनका हल ढूंढना, फंड वगैरह जमा करना, मेंबर्स बनाना, प्रोड्यूसरों से झगड़े करना, उनके झगड़ों को तय करना, गरज के हजार बलाएं थी हमारे सर पर। मगर साहब कमाल है, मुकेश जैसा खुश अखलाक और हंसमुख दोस्त चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। कभी उसने अपना टेंपर लूज नहीं किया, बल्कि हमेशा मुझको समझाया करता था कि भाई ये चीजें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे ख्याल में किताब लिख सकता हूँ।
3: तलत महमूद सबसे अधिक प्रभावित थे गायक कुंदन लाल सहगल से।
4: एक तो उनके गाने की सॉफ्टनेस, दूसरे उनके जज्बे।

0: बात जो पैथोस और अल्फाज की अदायगी, ये सब चीजें अब आप देखिए उनके जो पुराने गाने हैं, सोजा राजकुमारी सोजा, या ये कि कहा करूं कि जाऊं, इस किस्म के जो गाने हैं उससे मालूम था जैसे कि वाकई दिल निकाल के रख दिया है उन्होंने। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी और बचपने में ही उनका मैं बहुत ही शौक से गाना सुनता था।
1: मेरा कॉन्ट्रैक्ट न्यू थिएटर्स में था 1945-46 में, मेरी मुलाकात सहगल साहब के साथ हुई और वो मेरी जिंदगी का ऐसा दिन है कि जिसको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि सहगल साहब से मिलूं। उनके गाने जब भी सुनता था मैं तो एक अजीब किस्म का असर मेरे पर होता था, क्योंकि मैं ये अभी तक ऐसा महसूस करता हूँ कि सहगल साहब गाते नहीं थे बल्कि फरिश्तों के तरीके से कुछ खास उनको अल्लाह ने एक सिफत दी थी, उनके गले में एक नूर दिया था कि जो आपको मोह लिया करता था। और जब मैं न्यू थिएटर्स में काम करना शुरू किया है तो उनकी पिक्चर माई सिस्टर बन रही थी, मुझे ख्याल भी नहीं था कि जिंदगी में उनसे इतनी कुर्बत हो जाएगी और एक साथ इतना वक्त गुजार सकूंगा। माई सिस्टर फिल्म का ये गाना मेरी मौजूदगी में ही रिकॉर्ड हुआ था, दो नैना मतवारे तिहारे, और रिकॉर्डिंग के वक्त जो समा था वो मैं अल्फाज में तो नहीं बयान कर सकता हूँ।
2: तलत महमूद ने मदन मोहन, एस डी बर्मन, शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे संगीतकारों के साथ काम किया।
3: उनकी आवाज में प्राकृतिक वाइब्रेटो था जो श्रोताओं को तुरंत बांध लेता था।
2: लता मंगेशकर के साथ उनके युगल गीत बेहद लोकप्रिय हुए। उन्होंने सुरैया, नूतन, माला सिन्हा और श्यामा जैसी अभिनेत्रियों के साथ अभिनय भी किया।
3: दिले नादा, सोने की चिड़िया और मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों में वे नजर आए।
2: हालांकि अभिनय में वो उतने सफल नहीं रहे, पर उनकी गायकी ने उन्हें अमर बना दिया।
0: और अदाकारी से मुझे सख्त नफरत रही हमेशा।
3: अच्छा।
0: हालांकि मैंने काफी पिक्चर में काम किया है
4: जी।
0: अब बेहद कैमरा कॉन्शियस किस्म का आर्टिस्ट था मैं। या आप देखिए जो पिक्चरें मेरी कभी रिलीज हो तो मुझे सख्त तरीन नफरत रही।
4: नहीं, आपको दला साहब रही होगी लेकिन हमें तो देख कैसा नहीं लगा।
0: नहीं, मैं आपको, आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस किस्म का आदमी हूँ। तो वहां भी मैं गानी चाहता था और यहाँ भी गानी चाहता था, लेकिन बीच में मुझे पकड़ कर ढकेल दिया दिल नादान और एक गाँव की कहानी वगैरह वगैरह में, तो मजबूरन करना पड़ा, वरना हमेशा से मैं गाना ही चाहता था।
3: श्रोताओं, वे पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुति दी, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में और अमेरिका के ब्रॉडवे में।
2: 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
3: उनकी जीवनी तलत महमूद द डेफिनेटिव बायोग्राफी 28 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित हुई, जिसने उनकी शताब्दी वर्षगांठ पर नई पीढ़ी को उनसे जोड़ा।
2: श्रोताओं, उन्होंने 1980 के दशक तक गाना जारी रखा।
3: 9 मई 1998 को मुंबई में 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
2: उनकी बेटी सबीना और परिवार आज भी उनकी विरासत को संजोए हुए हैं।
3: आज भी उनके गीत रेडियो और मंचों पर गाए जाते हैं और वे भारतीय संगीत इतिहास के अमर नक्षत्र हैं। तो श्रोताओ, अब मैं आशुतोष
2: और मैं श्वेता आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।
3: कार्यक्रम स्वर धरोहर की आज की कड़ी में वाचन स्वर था श्वेता और आशुतोष का, आलेख था दीपा कुमारी का, तकनीकी सहयोग दिया था आकाश ने।
2: कार्यक्रम के निर्माता थे आशुतोष कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर आज हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक जीता। आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। और एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता कल से गांधीनगर में शुरू होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 4 गेंद शेष रहते ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में ताबड़तोड़ 65 रन की पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, जबकि शहबाज अहमद और दिग्विजय राठी ने लखनऊ के लिए 2-2 विकेट लिए। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे। लखनऊ के लिए जॉश इंग्लिश ने 33 गेंदों में 85 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से जेमी ओवरटन ने 3 विकेट लिए। वहीं रायपुर में राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच इस समय मैच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 91 रन बना लिए थे। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। तो पहले मैच की बात की जाए, चेन्नई वापस लगता है कमबैक के मूड में नजर आ रही है। विजय,
1: हाँ जी, इसमें अगर आप देखें हिस्ट्री उठा के देखिए, चेन्नई की खासियत है कि जब आपको लगता है कि ये टीम गई, वो एक कुछ ऐसा पलटती है टूर्नामेंट का रास्ता कि कंटेंडर हो जाती है। और यहां पे भी मुझे लगता है कि जिस ढंग से उन्होंने वापसी की है और उनके प्लेयर्स फॉर्म में आ रहे हैं, और खास करके उर्विल जैसे अगर खिलाड़ी हैं उनके पास जो मतलब किसी भी क्षण अपने दम पे मैच बदल सकते हैं, तो चेन्नई को किसी कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते।
0: जी बिल्कुल, आपने उर्विल का जिक्र किया और आज के मैच के स्टार कह सकते हैं, युवा खिलाड़ी है, लेकिन जो छक्के लगाए हैं आज, जो गेंद को बाउंड्री पार फेंका है, क्या कहेंगे इस तारीफ के लिए, इस खिलाड़ी के लिए।
1: एक टाइम था जब मैं 14-15 साल का था, मैं सलीम दुर्रानी जी आते थे तो देखने जाता था, एक छक्का देखने को मिल जाएगा। यहां तो एक ही खिलाड़ी 8-8 छक्के मार रहा है। आप आज गेम बदल गया है, उनका टेक्निक बदल गया है, और उर्विल जो है वो मारते दम से हैं। मैं हाँ, क्योंकि गुजरात में और बड़ौदा में उनका बहुत रेपुटेशन है बड़े बड़े छक्के मारने का, और आज दिखाई दिया उन्होंने बड़े स्टेज पे कि कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी है वो।
0: जी बिल्कुल, अपनी प्रतिभा दिखाई। अगर दूसरे मुकाबले की बात कर ली जाए जो इस समय खेला जा रहा है, जहां आरसीबी और मुंबई इंडियंस आमने सामने है, मुंबई इंडियंस के लिए खोने के लिए बहुत कुछ इस प्रतियोगिता में बचा नहीं है, टीम 9वें स्थान पर है। और अगर आरसीबी की बात की जाए तो टॉप 4 में बने रहना इस समय आईपीएल का सबसे बड़ा कंपटीशन है। रोज टेबल बदलती है, कभी आप ऊपर कभी आप नीचे, 4थे नंबर पर है आरसीबी, कितना सेफ महसूस कर रही होगी अपने आप को।
1: आरसीबी का सबसे मेन ये है कि उनको ना वो कॉन्फिडेंस है अब कि जो है वो डेफिनेटली प्ले ऑफ में जगह बनाएंगे, और उनके पास वो क्षमता भी है, खिलाड़ी भी हैं। ये फैक्ट है कि विराट के होने से टीम को बहुत फर्क पड़ता है। और जहां तक मुंबई की बात है, वो तो बिल्कुल फिसलते चले गए हैं। मेरे ख्याल से अब तो हम कह सकते हैं कि वो तो आउट ऑफ रेकनिंग है, और वही हाल लखनऊ का है। उन लखनऊ का भी कोई टैक्टिक्स समझ में नहीं आते हैं, और खास करके शक्ति आज जब हमने देखा कप्तानी भी कोई मतलब थोड़ी निराशाजनक थी।
0: जी बिल्कुल, एक जो आपकी अंक तालिका में स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं आपके प्रदर्शन में नजर आती है, आपके डगआउट में नजर आती है, और ऐसा ही शायद इन टीमों के साथ भी देखने को मिल रहा है। और अब क्रिकेट के बाद बात करते हैं उन निशानों की जिन्होंने भारत के लिए आज पदकों की बारिश की। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत की तिकड़ी ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया।
2: कुमारी ऑन द लाइन, कुमारी इनटू द 9, एंड दैट इज अ वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया हियर इन शंघाई।
3: भारतीय महिला रिकर्व टीम ने आज फाइनल मुकाबले में शानदार खेल कौशल और संयम का प्रदर्शन किया। भारतीय तिकड़ी ने उतार चढ़ाव भरे फाइनल मुकाबले में शूट ऑफ में चीन को 5-4 से हराकर 2021 के बाद तीरंदाजी विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। चार सेट के मुकाबले के बराबरी पर समाप्त होने के बाद मैच शूट ऑफ में चला गया। निर्णायक क्षण में जब दबाव चरम पर था, तब अनुभवी दीपिका कुमारी ने दबाव के बीच इस यादगार जीत को पक्का करने की जिम्मेदारी संभाली और शूट ऑफ के आखिरी तीर पर महत्वपूर्ण 9 अंक हासिल किए। विश्व कप में यह भारत का दूसरा पदक है। इससे पहले कल प्रवीण जाधव ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश के पदकों का खाता खोला। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर भारतीय टीम को बधाई दी है। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
0: विजय, अगर ये कहा जाए कि तीरंदाजी में विश्व कप के पहले चरण में और दूसरे चरण में भारत की साख बचाती हुई नजर आई, भारत की बेटियां, पहली बार भी एक ही पदक था जो मेक्सिको में खेला गया पहला चरण, और आज दीपिका का वो 9 पॉइंटर, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन पे, क्योंकि जो सेमीफाइनल में इस टीम ने करिश्मा किया शायद उसको मेजबान चीन को हरा करके आज दोहराया है।
1: हाँ, जो आप बता रहे थे कि कोरिया को हराया, कोरिया और चाइना को एक ही टूर्नामेंट में बैक टू बैक आपने हरा के रिकव, मैं कहूंगा मुझे सबसे बड़ी इस जीत में यह अच्छा लगा कि दीपिका जो है उनका जो टेम्परामेंट है वो उन्होंने दिखाया यहाँ पे, और कितना प्रेशर होगा आप समझिए, उनको पता है कि इतने 9 पॉइंट लेने हैं इस शॉट में और उन्होंने लिए वहां से जो है, और वो भी शूट ऑफ बहुत कठिन होता है शक्ति, और यहाँ पे मैं कहूंगा दीपिका के लिए मुझे बहुत खुशी है क्योंकि पीछे जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी उनकी बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन उन्होंने अच्छी वापसी की है, और एशियन गेम्स वाले ईयर में इस साल एशियन गेम्स भी हैं, तो इसमें आप आर्चरी से बड़ी उम्मीदें हैं।
0: जी बिल्कुल, आर्चरी से उम्मीदें होंगी जहां पे एशियन गेम्स भी हैं, और कुछ वर्ष बाद जब ओलंपिक में उतरेंगे तो दीपिका शायद उस मेडल की कसक को भी पूरा करने में सफल साबित हो इसी फॉर्म को बरकरार रखते हुए।
1: हाँ, दीपिका से उम्मीद है क्योंकि वो उस लायक हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल की आर्चर हैं, और ऐसा कुछ कमाल करेंगी तो उनके लिए अच्छा, उनके करियर के लिए भी अच्छा है।
0: जी बिल्कुल। और अब तीरंदाजी के बाद बात करते हैं निशानेबाजी की, जहां कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने एकदम सटीक लगाए, दूसरे स्थान पर रही जहां इटली के साथ ये टीम थी, लेकिन क्योंकि क्वालिफिकेशन में हम इटली से पीछे थे इसलिए इस बार ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा, और चीनी ताइपे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया, इटली ने रजत पदक जीता। तो सबसे अच्छी चीज तो यह है कि यह स्पर्धा अब ओलंपिक खेलों का भी हिस्सा है, तो ऐसे में हमारी दावेदारी जो है नजर सब खेलों की, खिलाड़ियों की ओलंपिक जैसे आयोजनों पे होती है, तो एक अच्छा संकेत कि खिलाड़ी आ रहे हैं और मेडल्स लेकर के आ रहे हैं, पहला मेडल है इस जोड़ी का।
1: जी हाँ, और अगर आप देखिए ये भी वही स्पोर्ट है जिसमें भारत ने हमेशा अच्छा किया है, और विश्व स्तर पे कहें या एशियन स्तर पे कहें अच्छा परफॉर्म करते हैं, और लगातार आपको टैलेंट मिलता जा रहा है।
0: जी बिल्कुल, अब तक इंडिविजुअल्स में हम देखते थे कि लगातार भारत के मेडल्स आ रहे थे ISSF की प्रतियोगिताओं में, लेकिन अब मिक्स्ड में और टीम लेवल पे भी भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मिस्र के गीजा में विश्व स्क्वाश प्रतियोगिता के दूसरे दौर में आज वीर चोटरानी का मुकाबला मिस्र के मुस्तफा असल से होगा, जो कि विश्व नंबर एक खिलाड़ी हैं वर्तमान में। वीर चोटरानी ने पहले राउंड में हमवतन अभय सिंह को हराया था, और अगर बाकी खिलाड़ियों की बात की जाए तो रमित टंडन और सेंथिल कुमार का सफर भी समाप्त हो चुका है इस अभियान, इस प्रतियोगिता से, और अभय सिंह भी बाहर हो चुके हैं, तो एकमात्र चुनौती है, और उम्मीद होगी विजय की आज कुछ बेहतर करें और अगले दौर में पहुंचे।
1: उनपे उम्मीदें तो रहेंगी क्योंकि अभय को जो है आप हरा के आगे पहुंचे हैं, और चोटरानी भी ऐसा नहीं है कि कोई जो है मंझे खिलाड़ी नहीं है, पर यही है कि जब तक आप एक खिताब नहीं जीतेंगे आप उस रैंकिंग में नहीं आते हैं।
0: जी बिल्कुल, अपनी पहचान बनाने के लिए वो खिताब की दरकार होगी, अभय को हरा करके हौसला मिला होगा और उम्मीद होगी कि खिताब की दौड़ में भी एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए। गुजरात के गांधीनगर में कल से एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। भारत 44 वर्षों में पहली बार एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: चैंपियनशिप के लिए 28 देशों के लगभग 180 एथलीटों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतियोगिता आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए योग्यता मार्ग में योगदान देने के कारण महत्वपूर्ण है। ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से सजी स्टार खिलाड़ियों की सूची में कई ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में चीन 31 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर था। इस आयोजन में उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के दल भी हिस्सा लेंगे, जबकि भारत, चीन चीन और श्रीलंका चैंपियनशिप में 16-16 भारोत्तोलकों के साथ सबसे बड़ी टीम उतारेगा। भारत को घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम में राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विंध्या रानी देवी और अजीत नारायण, निरूपमा देवी, लवप्रीत सिंह, बेदा बरात भराली जैसे बड़े भारोत्तोलक शामिल हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: काफी दिग्गज खिलाड़ियों से सजी हुई भारतीय टीम है, लेकिन शायद एक खिलाड़ी की कमी इस टीम को खले। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू, इसके पहले गुजरात में अच्छा प्रदर्शन दिया है, लेकिन भारत को शायद उनकी कमी खलती भी नजर आएगी।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका इश्यू है इंजरी, वो बार बार चोटिल हो जाती है, तो उससे वो

0: कि प्रिपरेशन पे बहुत फर्क पड़ता है, और जब आपके आपके दिमाग में बैठ जाए कि चोटिल होने का डर, उसमें फिर आपकी परफॉर्मेंस भी लड़खड़ाती है।
1: जी बिल्कुल। और अगर इस आयोजन से इतर एक बात और भी देखा जाए पहलू की, गुजरात मेजबानी कर रहा है, 44 साल में पहली बार भारत के पास मेजबानी होगी, और गुजरात यहां से हर प्रतियोगिता दर प्रतियोगिता अपनी उस सहभागिता को भी साबित करना चाहेगा, क्योंकि अब आपको राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े आयोजन की मेजबानी करनी है। कितना बड़ा एक अवसर, या फिर कह सकते हैं कि एक वार्म अप की तरह ये आयोजन होने वाले हैं इस प्रदेश के लिए।
0: बिल्कुल, वार्म अप आपने सही शब्द इस्तेमाल किया है यहां पे। और मैं ये कहूंगा कि कभी भी आप देखें, भारत जब मेजबानी करता है ना, सबसे आगे ही रहता है, कभी कमियां नहीं रहती है। इंटरनेशनल लेवल के बहुत बहुत टूर्नामेंट्स कराए हैं, और गुजरात तो बहुत बड़ा हब उभर के आ रहा है। अगर आप देखें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी जो है तैयारी होगी, और आगे आप ओलंपिक का दावा कर रहे हैं, तो वहां पे भी अगर आपको मिला तो वो भी सब कहते हैं कि बेस्ट होगा गुजरात उसको होस्ट करने के लिए। सो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन है।
1: जी बिल्कुल, एक तैयारियों के रूप में इसको आंका जा सकता है, जो कि गुजरात ही दावेदारी कर रहा है ओलंपिक के लिए, तो कितना तैयार है 2036 की इस दौड़ के लिए, या आजमाने के लिए, तमाम इस प्रकार के तमाम जो टूर्नामेंट हैं आपके लिए काफी सहायता करते हुए नजर आएंगे। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भी भागीदारी की। इस बार संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना के सहयोग से ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक और दीक्षा मलिक ने युवाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी। दीक्षा मलिक ने कहा कि हर इंसान को संडे ऑन साइकिल का हिस्सा बनना चाहिए।
2: मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सब लोगों को इतना एनर्जी में देख के, और बड़ा अच्छा लगा कि लोग इतना एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ रह के इतना अच्छे से खेलते हैं, साइकिलिंग करते हुए।
1: तो एक अभियान जो धीरे धीरे पूरे जन आंदोलन का रूप ले रहा है। विजय, रोज संडे के दिन लोग अपनी छुट्टी के सुबह के आलस को त्याग करके उतरते हैं, साइकिल चलाते हैं, और एक फिटनेस का संदेश, और साथ ही साथ एक संदेश एक अच्छे पर्यावरण के लिए।
0: बहुत ही लोकप्रिय भी है, और आप देखिए दिल्ली में बहुत सारे अब साइकिलिंग क्लब्स उभर के आए हैं, वो इस कारण से कि सबको लगता है कि एक संडे के दिन कम से कम आप सुबह जाके साइकिलिंग करेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी होगी, और एक पार्टिसिपेशन होता है, मास पार्टिसिपेशन, जहां पे नए नए दोस्त आप बनाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा वेंचर है।
1: जी बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फुटबॉल की, जहां पे इंडियन सुपर लीग में इस समय नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और चेन्नईयन एफसी के बीच मुकाबला जारी है, जहां नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2-0 की बढ़त बना ली है, और इसके पहले केरला ब्लास्टर्स ने मोहम्मदन क्लब को 3-1 से हराया है। तो फुटबॉल भी भारत में अगर लीग खेलों की बात की जाए, आईपीएल ने एक पूरी नजीर पेश की हमारे सामने कि किस तरह लीगों में आपके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मौजूद है, एक अच्छा पूल मिलता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, फुटबॉल में ये लीग काफी सार्थक साबित होती हुई नजर आ रही है अब तक।
0: जी हाँ, और ये तो फुटबॉल का साल है, अब सारी नजरें एक महीने में अमेरिका की तरफ होंगी जब वर्ल्ड कप, विश्व कप फुटबॉल होगा। और ये आपने बात कही, आईपीएल है या आईसीएल आईएसएल है, ये सब टूर्नामेंट्स और ये लीग बहुत बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है, जो आपको एक बुनियादी स्तर पर खिलाड़ियों को एक अच्छा पूल प्रदान करने में काफी सहायक साबित होती हैं। चलते चलते एक बार स्कोर बोर्ड पे वापस नजर घुमा लेते हैं, जहां पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मुंबई इंडियंस ने इस समय 14 ओवर में 4 विकेट खोकर 125 रन बना लिए हैं, और तिलक वर्मा 33 गेंदों में 43 रन बनाकर के अभी भी डटे हुए हैं, तो टीम के लिए एक छोर भी संभाले हुए हैं, और रन की गति को भी धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत।

0: त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभासपाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभासपाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य

0: का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरीकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers

0: and PM Mitra Textile Initiative, aimed at strengthening India's manufacturing ecosystem. Official estimates place the total value of projects announced, inaugurated or dedicated during the visit at more than 9,000 crore rupees. And with that, we begin with the first stop of the Prime Minister's visit, Bengaluru. The Prime Minister addressed a significant public meeting in Bengaluru, Karnataka, stating recent electoral successes for the BJP and discussing the broader political landscape in India. Reflecting on the date, May 10th, he honoured the spirit of the 1857 freedom struggle and called for national unity and duty. Let's listen to what the Prime Minister said on the significance of the 10th of May and why he chose the date to conduct the visit.
1: Sathiyo, aaj 10 Mai ki aitihasik tarikh hai. 1857 mein, aaj ke hi din, swatantrata sangram ki पहली चिंगारी फूटी थी. समय के साथ ये चिंगारी एक बड़ी ज्वाला में बदल गई, जिसने गुलामी की बेड़ियों को जलाकर भस्म कर दिया. शौर्य और सामर्थ्य की ये विरासत, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है. इसी प्रेरणा से हमने 3 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई है.
0: In his speech, the Prime Minister also addressed the global challenges such as the unrest in West Asia. He urged the people of India to practice restraint, conserve resources and uphold their duties to help the nation navigate global crisis, comparing the spirit to the collective effort seen during the COVID-19 pandemic. Furthermore, the Prime Minister also attended the 45th anniversary celebrations of The Art of Living at the organization's International Center on the outskirts of the city. The event brought together spiritual leaders, yoga practitioners, volunteers and visitors from different parts of India and abroad. During the program, the Prime Minister inaugurated the newly built Dhyan Mandir, a meditation and wellness complex designed to host yoga sessions, spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended the Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: Hamare yahan kaha gaya hai ashtadash puraneshu vyasasya vachanam dvayam परोपकाराह पुण्याय पापाय परपीडनम. अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है. सेवा परमो धर्म है. ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है. पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है.
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं. हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है. नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं. भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है. हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है. आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है. स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है. हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं. देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है.
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship.

0: बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
0: Warangal ka PM Mitra Park desh mein textile kranti ko gati dega. PM Mitra Park mein lagne wali units ko केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा, उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा, खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले।
1: अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, Each PM Mitra Park could attract investments worth nearly 10,000 crore rupees while generating large-scale employment opportunities. Prime Minister Narendra Modi's visit to Karnataka and Telangana brought together several themes that have come to define India's current development narrative: infrastructure expansion, industrial growth, healthcare access, logistics, integration and cultural outreach. As these projects move from announcement to execution, their long-term impact will ultimately be measured by jobs created, services delivered, and regional growth achieved. The Prime Minister's visit to Karnataka and Telangana was characterized by a blend of economic planning and public engagement. These initiatives will work as long-term investments in connectivity, employment and manufacturing capacity and lead towards the goal of a Viksit Bharat by 2047. Listeners, you can also listen to this program on our mobile app News on AIR or our YouTube channel News on AIR Official. This was it for Spotlight today. Thank you so much for joining us.
2: Spotlight.

0: In the National Programme of Features, you just heard a feature titled Of Memories and Milestones. Thank you for joining us on this journey through 90 years of sound, stories and milestones. Script, Bushida Banerjee. Narrator, Rini Khanna. Additional voicing, Manoj Mainkar. Produced by Nitish Arora for the Central English Features Unit. This broadcast came to you from Akashvani, Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट भी प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की आवश्यकता है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत और त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और संरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने छठे ओवर में 3 विकेट पर 39 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में 65 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहत शामिल थी। सेमीफाइनल में इस भारतीय टिकड़ी ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू डांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: his cabinet with six BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, two ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibeen Patel administered the oath of office in secrecy at a ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. India and Trinidad and Tobago have signed 8 agreements in sectors including tourism, healthcare, infrastructure and Ayurveda during External Affairs Minister S. Jaishankar's two-day visit to the Caribbean nation. Ministry of External Affairs in a statement said MOUs were signed between the two sides for solarization of Trinidad and Tobago's Ministry of Foreign and CARICOM Affairs building, vector control, infrastructure upgrade of Nelson Island, where the Indian immigrants were stayed initially, and for setting up of an Indian chair on Ayurveda at the University of West Indies. In Pakistan, 15 security personnel were killed and several others injured in a suicide attack at a police post in the rest of Khyber Pakhtunkhwa province. Police said the attack took place yesterday when security personnel opened fire on an explosive-laden vehicle approaching the police post, triggering a massive blast. After the explosion, a large group of gunmen launched an attack on the police post, triggering heavy exchange of fire. In shooting, Indian pair of Neeru Dhanda and Vivan Kapoor secured a bronze medal in the trap mixed event, as India concluded its campaign on a positive note at the ISSF World Cup shotgun in Almaty, Kazakhstan today. And in IPL cricket, chasing a target of 167 runs, Royal Challengers Bengaluru at 47 for 3 in 6 overs against Mumbai Indians and Raipur when reports last came in. Put into bat first, Mumbai Indians posted 166 for 7 in 20 overs with the help of Tilak Verma's 57 off 42 balls for Bengaluru. Bhuvaneshwar Kumar picked up a 4-wicket haul. Earlier, in another fixture, Chennai Super Kings defeated Lucknow Super Giants by 5 wickets. Put into bat first, Lucknow posted 203 for 8 in their allotted 20 overs, riding on Josh Inglis's blistering knock off 85 off 33 balls and Shahbaz Ahmed's 43 runs. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव का जवाब दिया। खाड़ी देशों पर नए ड्रोन हमले से युद्ध विराम खतरे में। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और हंता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज से निकाले गए स्पेनिश नागरिकों सहित यात्रियों का पहला जत्था मैड्रिड पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉ जयशंकर की कल कैरेबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री प्रसाद विशेषर की उपस्थिति में डॉक्टर जयशंकर ने चयनित स्कूली बच्चों को 2000 लैपटॉप का पहला बैच सौंपा और एक कृषि प्रसंस्करण सुविधा का उद्घाटन किया। भारत ने इसके लिए पिछले वर्ष $10,00,000 की मशीनरी उपलब्ध कराई थी। सुश्री प्रसाद विशेषर और डॉक्टर जयशंकर ने पैनाल में त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रीय कृत्रिम अंग केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: दक्षिण अफ्रीका में भारत के उच्चायुक्त प्रभात कुमार ने केप टाउन स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी में आयोजित एक समारोह में दक्षिण अफ्रीकी खगोलीय वेधशाला SAAO को भारत के अंतर विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी केंद्र IUCAA का ध्वज औपचारिक रूप से सौंप दिया। ये दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैज्ञानिक सहयोग को और मजबूत करने का परिचायक है। भारतीय राजदूत ने इस सप्ताह के प्रारंभ में आयोजित समारोह में SAAO के अनुकरणीय अनुसंधान की सराहना की और कहा कि IUCAA ध्वज की स्थापना वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को भारत सरकार की प्राथमिकता का प्रतीक है।

0: पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के नवीनतम प्रस्ताव पर ईरान ने औपचारिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। प्रस्ताव में क्षेत्र में संघर्ष समाप्त करने पर अधिक बल दिया गया है। इस संबंध में अमरीकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर चल रहे संघर्ष पर चर्चा की। इसमें संघर्ष के तीसरे महीने में प्रवेश करने के साथ ही गहन राजनयिक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। इस बीच ईरान और अमरीका इसराइल के बीच युद्ध में संघर्ष विराम पर आज कई खाड़ी देशों के ड्रोन हमलों की सूचना के बाद दबाव बढ़ता जा रहा है। कतर के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि अबू धाबी से दक्षिणी बंदरगाह की ओर आ रहे एक मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ जिससे आग लग गई। वहीं कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने ड्रोन हमलों को नाकाम करने का दावा किया। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी वायुसेना ने ईरान से आ रहे दो ड्रोन को मार गिराया। ये तेल समृद्ध खाड़ी देश पर हो रहे नए हमलों की कड़ी में ताजी घटना है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आज सुबह ड्रोन कुवैत के हवाई क्षेत्र में घुस आए थे और सेना ने जवाबी कार्रवाई की। रूस ने यूक्रेन पर अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में रूस के हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने 1000 से अधिक बार युद्धविराम का उल्लंघन किया जिनमें नागरिक क्षेत्रों और अग्रिम मोर्चों पर हमले शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेनाओं ने यूक्रेन के कथित ड्रोन और तोपखाने से हुए हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने आज सनातनी जागरण जोट के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की एक वकील की कथित हत्या के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने चार अन्य जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है। इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को नवंबर 2024 में ढाका हवाई अड्डे से राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन पर चट्टोग्राम में एक रैली के दौरान कथित रूप से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में टेनरिफ तट पर खड़े हंता वायरस से प्रभावित क्रूज से निकाले गए यात्रियों का पहला जत्था मैड्रिड पहुंच गया है। स्पेन के 14 नागरिकों वाले पहले जत्थे को चार्टर्ड विमान से लाया गया है और अब उन्हें एक सैन्य अस्पताल में अनिवार्य क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यात्रियों को उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर निकाला जा रहा है। दूसरे समूह में फ्रांस के नागरिक हैं। स्पेन के अधिकारियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और क्रूज कंपनी ओशन वाइड एक्सपीडिशन ने कहा कि इस जहाज के 140 से अधिक लोगों में से किसी में भी वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। स्पेन के अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि सभी को कल तक निकालने का लक्ष्य है। ये क्रूज 6 मई को पश्चिमी अफ्रीकी तट पर स्थित द्वीप समूह देश केप वर्डे से रवाना हुआ था। वायरस के प्रकोप से 3 लोगों की मौत हो चुकी है और जहाज से उतरे 5 यात्री हंता वायरस से संक्रमित हैं। चौथी भारत अफ्रीका फोरम शिखर बैठक 31 मई को नई दिल्ली में होगी। इसमें अफ्रीका के कई राष्ट्र प्रमुख और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। बैठक से पहले 28 मई को वरिष्ठ अधिकारियों और 29 मई को विदेश मंत्रियों की बैठकें होंगी। एक रिपोर्ट।
1: आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और व्यापार, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, अंतरिक्ष और उच्च प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। शिखर सम्मेलन के समापन पर सहयोग के एजेंडे से संबंधित एक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को अफ्रीका के एजेंडे 2063 के साथ जोड़ना है। शिखर सम्मेलन के साथ साथ विचार विमर्श सत्र और एक भारत अफ्रीका फिल्म महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के बाद 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन होगा। पिछले एक दशक में भारत ने पूरे महाद्वीप में

0: अपनी राजनयिक और राजनीतिक उपस्थिति का उल्लेखनीय विस्तार किया है। इस दौरान भारत के अधिकारियों और नेताओं ने अफ्रीकी देशों की लगभग 50 उच्च स्तरीय यात्राएं की हैं और अफ्रीका के नेताओं ने भारत की लगभग 100 यात्राएं की हैं। भारत ने 2018 से अफ्रीका में 17 नए राजनयिक मिशन खोले हैं, जिससे इसकी उपस्थिति 46 देशों तक पहुँच गई है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। गुजरात के गांधीनगर में कल से एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। भारत 44 वर्षों में पहली बार एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: चैंपियनशिप के लिए 28 देशों के लगभग 180 एथलीटों ने पंजीकरण कराया है। यह प्रतियोगिता आगामी राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए योग्यता मार्ग में योगदान देने के कारण महत्वपूर्ण है। ओलंपिक और विश्व चैंपियनों से सजी स्टार खिलाड़ियों की सूची में कई ओलंपिक पदक विजेता और विश्व चैंपियन इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में चीन 31 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर था। इस आयोजन में उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के दल भी हिस्सा लेंगे, जबकि भारत, चीन और श्रीलंका चैंपियनशिप में 16-16 भारोत्तोलकों के साथ सबसे बड़ी टीम उतारेगा। भारत को घरेलू मैदान पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। भारतीय टीम में राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता विंध्या रानी देवी और अजीत नारायण, निरुपमा देवी, लवप्रीत सिंह, बेदा बरात भराली जैसे बड़े भारोत्तोलक शामिल हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ईरान ने पश्चिम एशिया युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका की युद्ध विराम प्रस्ताव का जवाब दिया। और हंतावारी से प्रभावित क्रूज जहाज से निकाले गए स्पेनिश नागरिकों सहित यात्रियों का पहला जत्था मैड्रिड पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

10:30 लीजिए 31 मिनट हो चुके हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्वागत है आप सबका प्रोग्राम हर सिंगार पे। मैं आपके साथ विकास।

फिल्म का नाम है संतोष और गीत लिखा है संतोष आनंद ने। म्यूजिक तैयार किया था इस फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और जब हम किसी गीत को सुनते हैं ना, और सुनते सुनते उस गीत में जब खो जाते हैं, तो अक्सर हमें ऐसा भी लगता है कि इस म्यूजिक डायरेक्टर की एक अपनी स्टाइल है। और अगर आप किसी गीत को सुने और उसके बाद थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आखिर इस फिल्म में इस गीत के लिए किसने संगीत दिया होगा, तो इस प्रैक्टिस को जब आप लगातार करते हैं ना, तो आपका कई दफा अंदाजा सही होने लग जाता है। और वो इसीलिए क्योंकि वो जो स्टाइल होता है वो उस संगीतकार का होता है। और हाँ, इस स्टाइल के साथ कभी कभी धोखा भी हो सकता है हमें, जब हम किसी गीत को सुनते हैं और हमें लगता है कि ये खास स्टाइल तो किसी दूसरे संगीतकार का रहा और इन्होंने शायद उस संगीतकार का स्टाइल अपने इस गीत में इस्तेमाल किया। फिलहाल अगला गीत एक बार फिर संतोष आनंद साहब का कंपोज किया हुआ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का, और फिल्म का नाम है शोर। 1972 की यह फिल्म, जिसके लिए संतोष आनंद साहब को हमेशा याद किया जाता है। प्रोग्राम का नाम है हरसिंगार। हरसिंगार में मैं आपके साथ विकास।

फिल्म का नाम था सोनल जी। ये 1973 की ये फिल्म थी और जब मैंने इस फिल्म का पोस्टर देखा तो पहले पहल मुझे लगा कि जो अदाकार हैं, फिल्म के एक्टर हैं, वो शायद जितेंद्र है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इनके क्रेडिट्स देखे तो देखा कि ये तो जितेंद्र का नाम ही नहीं है इस फिल्म में, और मल्लिका साराभाई के साथ इस फिल्म में नजर आते हैं कोई और जिनका नाम है जतिन जी। जतिन खन्ना इन कलाकार का नाम था और इस फिल्म में म्यूजिक दिया था मन्ना डे साहब ने और गीत लिखे थे योगेश ने। और दिलचस्प सी बात यह रही कि 1940 और 1950 के दौर में कुछ फिल्मों में मन्ना डे ने संगीत दिया था और उसके 13 साल बाद इस फिल्म के जरिए उन्होंने संगीत की दुनिया में एक बार फिर कदम रखा। लता जी का गीत था और अब बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आप जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हर सिंगार।

फिल्म का नाम था शोला और शबनम। 1962 की यह फिल्म थी और फिल्म में म्यूजिक था खयाम साहब का और गीत लिखा था कैफी आजमी साहब ने। आज की तारीख यानी 10 मई 2002 को कैफी साहब हमसे अलविदा कह गए, लेकिन उनके गीत हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे। बना रहेगा आपका और एफएम गोल्ड का साथ। और घड़ी बता रही है कि बस अब आखिरी गीत पहुंचा सकता हूं इस कार्यक्रम का आप तक। तो लीजिए, अमीर आदमी गरीब आदमी फिल्म का ये आखिरी गीत पहुंचता है आप तक।

जी जो आपके दिल में रहते हों उनका भी आप ख्याल रखिएगा, और रखिएगा उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही, विकास को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया,

0: अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सके।

दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Korean nation. Ministry of External Affairs in a statement said MOUs were signed between the two sides for solarization of Trinidad and Tobago's Ministry of Foreign and CARICOM Affairs building, vector control, infrastructure upgrade of Nelson Island, where the Indian immigrants were stayed initially, and for setting up of an Indian chair on Ayurveda at the University of the West Indies. In Pakistan, 15 security personnel were killed and several others injured in a suicide attack at a police post in Restib, Khyber Pakhtunkhwa province. Police said the attack took place yesterday when security personnel opened fire on an explosive-laden vehicle approaching the police post, triggering a massive blast. In shooting, Indian pair of Neeru Dhanda and Vivan Kapoor secured a bronze medal in the trap mixed team event as India concluded its campaign on a positive note at the ISSF World Cup shotgun in Almaty, Kazakhstan today. India is set to host the prestigious 2026 Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, Gujarat from tomorrow, marking the country's first time hosting the event in 44 years. The sporting event will conclude on the 17th of this month. Around 180 athletes from 28 countries will compete in one of Asia's biggest weightlifting events of the year. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
3: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में बौद्ध दर्शन की हमें फिर से याद दिलाई है, हम सभी को प्रेरित किया है कि एक बार फिर से हम बौद्ध दर्शन को समझें और इसकी समसामयिकता क्या है ये जानें। तो आइए, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध दर्शन को एक बार फिर से हम सभी को याद दिलाया है।
4: साथियों, आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपोन ओजेर रिनपोचे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है। भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है, दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़ें।
3: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द। और आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने दो विशेषज्ञों को और इनके माध्यम से आज इस विषय के बारे में हम अपनी समझ बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत कर रही हूँ प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी का। आप बौद्ध अध्ययन विभाग नव नालंदा महाविहार संस्कृति मंत्रालय नालंदा में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं स्वागत कर रही हूँ सतीश कुमार जी का। कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका है और बौद्ध दर्शन की जो शिक्षा है वो आप युवाओं तक पहुंचाते हैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। सतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत साधुवाद।
3: बौद्ध दर्शन की जो समसामयिकता है वो क्या है, और ये मैं जानना चाहूंगी प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम।

0: आपसे।
1: देखिए, बौद्ध दर्शन स्थान और समय के कारण परिवर्तित नहीं होता, ये समसामयिक है
0: जी।
1: जिसको हम कहते हैं कि स्पेसियो टेम्पोरल गैप के कारण इसमें कोई परिवर्तन आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम बौद्ध दर्शन है क्या, इस पे बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करते ही कहा था, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आता पिनो जायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखा बपयन्ति सब्बा यतोपजानाति स हेतु धम्मं। मतलब जब धर्म का सही स्वरूप किसी भी ध्यानी के समक्ष प्रकट होता है
0: जी,
1: तो उसकी सारी शंकाएं खत्म हो जाती है और वो जान जाता है कि सारी चीजें हेतुओं से उत्पन्न है, कारण से उत्पन्न है
0: जी।
1: दूसरी जगह उन्होंने कहा कि द्वे इमे भिक्खवे देशेमि दुखं च दुख निरोधं च। भिक्षुओं, मैं केवल दो ही बात करता हूँ, इस संसार में दुख है और उस दुख का समाधान है। इसके बाद उनके एक प्रमुख शिष्य ने भगवान की बात को अपने सहयोगियों के समक्ष रखा, वो था ये धम्मा हेतु पहवा तेसंग हेतु तथागत हुआ
0: जी।
1: तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महासमनोति। ये जितने भी इस दुनिया में जो भी कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं, जो निर्मित चीजें हैं, वो सभी हेतुओं पे, कारण पे आधारित है
0: जी।
1: उस कारण को समझ लो, जान लो, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा जिसकी प्रासंगिकता हर युग में, हर काल में और हर स्थान पे उतना ही समीचीन है
0: जी। यानी हर जगह वो दर्शन अभी भी है, वो शिक्षाएं अभी भी हैं जी। तो सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आधुनिक युग है, इसमें कॉरपोरेट को और कॉरपोरेट कल्चर को ऐसा देखते हैं कि भागदौड़ भरा एक कल्चर है और बहुत ही प्रतिस्पर्धा है और जिसमें बस किसी भी तरह हम जो हैं बहुत ज्यादा मोनेटाइजेशन के बारे में सोचते रहते हैं। आप क्योंकि ट्रेनिंग देते हैं बौद्ध टीचिंग्स की कॉरपोरेट्स को, तो मैं जानना चाहूंगी आपका अनुभव कि किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है और आपको क्या लगता है ये क्यों जरूरी है।
2: जिंदगी की भागदौड़ और धन कमाने की आपाधापी में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वह मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता जा रहा है, जिसमें मानसिक तनाव का होना बड़ा ही सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन मानसिक तनाव विभिन्न प्रकार की बीमारियों का मूल कारण बन जाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट डिजीजेज रही हो, यहां तक कि स्ट्रोक, और कई बार तो डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम घर परिवार और रोजगार में सामंजस्य स्थापित करने में हम असमर्थ महसूस करने लगते हैं। और केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही नहीं, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी और परिवार को जाने और समझे तो हम पाते हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हम कई मूल समस्याओं का सामना करते हैं जो विशेष रूप से मानसिक रूप से जुड़ी हुई है। हम लोग इफेक्टिव पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस तरह के विचार, उस तरह के थॉट्स हमारे मन में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आज का जो दौर हो गया है, एक तरफ हमें धन कमाना है, दूसरी तरफ हमें बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना है, तीसरी तरफ परिवार और परिवार के सदस्यों में आपस में संतुलन बनाए रखना है, तो इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब मैं धम्म की तरफ देखता हूँ, बुद्ध की तरफ देखता हूँ, बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि सबसे पहले मस्तिष्क में विचार ही आते हैं
0: जी।
2: ये जो विचार आते हैं, विचार मनुष्य को प्रेरित करते हैं कोई एक्शन लेने पर, कोई ना कोई तो एक्शन होगा, क्योंकि जो विचार है वो एक बीज के जैसा है। अगर उस बीज को सही पानी मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, सही मौसम मिल जाए, तो वो एक जो बीज है वो पौधा बन सकता है। लेकिन समस्या ये है, क्या उस बीज को मैं पहचान पाया, क्योंकि अगर वो जहरीला बीज है तो वृक्ष भी जहरीला होगा, और अगर वह अमृत तुल्य बीज है तो अमृत से भरा हुआ होगा, जो केवल हमारे परिवार का नहीं समस्त समाज का कल्याण कर पाएगा। तो वो जो विचार है वो विचार एक्शन में तब्दील होगा, और जब एक्शन होगा तो उसका प्रतिफल भी आएगा। तो प्रतिफल दो तरह के होंगे, या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। अगर तो नकारात्मक प्रतिफल है तो हमारा जो प्रोसेस है वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर हमें सकारात्मक महसूस हो रहा है तो फिर मैं रिपीट करूंगा एक्शन को। लेकिन अगर शिक्षा लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है तो शिक्षा को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो ऐसे में जब रिपीट एक्शन होता है तो वो आदतों में तब्दील हो जाता है, फिर ये आदतें लगातार बनी रहती हैं, तो ये आदतें आपके चरित्र का निर्माण कर देती हैं। जब चरित्र लगातार बना रहता है तो वह आपके भाग्य का निर्माण कर देता है। तो यही बुद्ध हमें समझा रहे थे

0: कि मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं अगर वो शुद्ध हैं तो मेरा आने वाला भविष्य शुद्ध हो सकता, पवित्र हो सकता है।
1: जी
0: लेकिन अगर मेरे विचार अशुद्ध हैं तो मेरा भविष्य भी अशुद्धि की तरफ बढ़ रहा है।
1: जी, यानी अपने विचारों को देखना हमें भगवान बुद्ध जो है वो सिखाते
0: वो
1: हैं।
0: सिखाते हैं
1: जी, और कॉरपोरेट में हर तरह के जो परिवार हैं वो जुड़े हैं और आप उनको ये सिखाते हैं।
0: जी
1: जी, तो प्राण पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की तो एक शब्द जो है वो सहज ही मन में आता है, शांति। जब कभी हम उनकी छवि भी देखते हैं तो इतनी शांत स्वरूप है कि उसको देखकर शांति का संचार होता है मन में। और आज का जो युग है आपाधापी का है और हम देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो संघर्षों में घिरे हैं और कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं भी चल रही हैं। ऐसे में जो बौद्ध दर्शन है इसका क्या महत्व है और क्या ये आज ज्यादा जरूरी हो गया है या समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया है?
2: आपने अभी दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला है।
1: जी,
2: एक व्यक्तिगत शांति की बात की और दूसरी बात आपने ये कहा है कि दुनिया में इतनी अशांति फैली हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखिए, दोनों दो बातें हैं। बुद्धिज्म में, बौद्ध दर्शन में और बौद्ध अध्ययन में इसके तीन सोपान हैं, पर्यत्ति, पटिपत्ति और पटिवेधन। पर्यत्ति के तहत हम थ्योरीज को जानते हैं, पटिपत्ति के तहत हम उसको अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं
1: जी,
2: और पटिवेधन के स्थिति में उस स्तर पे हम रियलाइज करते हैं। तो जब हम अपने मन को, ये चीज उपनिषद में भी है
1: जी,
2: जिसको हम कहते हैं नॉन माइंडिंग प्रोसेस, अमनी भाव। अमनी भाव में होता है कि जब आपका मन निरंतर चिंतनशील है
1: जी,
2: अगर आपके पास एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है तो आपका चिंतन ज्यादातर निगेटिव दिशा में जाएगा। और जब वो निगेटिव दिशा में जाएगा, नकारात्मक दिशा में जाएगा, तो वो आपके हर सेल को प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निगेटिव आएंगे और आप पूरी तरह परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए और काउंसलिंग जो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग होनी चाहिए
1: जी।
2: हमें किस तरह की चीज सोचना है, हमें क्या सोचना है, ध्यान कैसे करना है और चित्त में शांति कैसे बना के रखना है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक जगह और जब उनके धर्म को कंक्लूड किया गया
1: जी,
2: तो वहां कहा जाता है सब पापस अकरणं, हर तरह के पाप को छोड़ देना, नहीं करना
1: जी,
2: कुशलस्य उपसंपदा, मोरल टेंडेंसीज को बढ़ाना, सचित्त परियोदपनं, प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर ओन माइंड, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, सचित्त परियोदपनं, एतान बुद्धान शासनं, यही बुद्धों का शासन है। तो सील का पालन करते हुए, मोरलिटी का पालन करते हुए, मोरल प्रिसेप्ट्स का पालन करते हुए
1: जी,
2: आपको अपने कॉन्शियसनेस को, चित्त को परिशुद्ध कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत शांति इसी में निहित है। आपकी दूसरी बात थी
1: जी,
2: विश्व में इतनी अशांति क्यों फैली हुई है। एक कॉन्सेप्ट है विपल्लास, विपल्लास जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं किसी चीज को उल्टा देखना। जिसमें अशांति है उसमें हम शांति ढूंढते हैं, जहां दुख है उसमें हम सुख ढूंढते हैं। आज पूरी दुनिया अगर मानवता पे केंद्रित हो जाए, ह्यूमन सेंट्रिक हो जाए, तो तरह तरह के जो विध्वंसक हथियार हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। कोई भी वैज्ञानिक जब कोई विध्वंसक हथियार बनाएगा उसके पहले सोचेगा इसका उपयोग कहाँ होगा, उपयोग मानवों के ऊपर होगा, क्षति किसकी होगी, मानव की क्षति होगी, वो उसी दिन उसको रुक जाना चाहिए। बनाना क्या चाहिए, ऐसी ऐसी दवाओं का आविष्कार करना चाहिए जिससे कि व्याधियों का नाश हो, दुखों का नाश हो। ऐसा तो हो नहीं रहा है। और हम जबकि जो भी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाने वाली है
1: जी।
2: अगर हम टेरिटरी, आज इतिहास गवाह है, सिकंदर ने भी टेरिटरी जीता, सब ने टेरिटरी जीता, किसी के पास आज वो नहीं है। इस सत्य को, इस तथ्य को पूरे दुनिया के शासकों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी चीजें नश्वर हैं, क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है
1: जी।
2: इसीलिए अगर हम इन मुद्दों पे युद्ध की स्थिति लाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, समाज का सम्मान करना चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए। समस्याओं का समाधान बुद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध अध्ययन के अनुसार अपने आप खत्म हो जाएगा।
1: जी, वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत से अवसरों पर कहा है कि ये युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती है, ये कहा है। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है ये भारत से उपजा है और पूरी दुनिया में फैला है, हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिए, उनके दर्शन दिए, तो ऐसे में क्या वजह है कि हम दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहां ये पाते हैं कि व्यवहार में जो बौद्ध दर्शन है उसकी सीख है, लेकिन भारत में कभी कभी हमारा अपना जुड़ाव जो है इनसे नहीं रहा है, क्या वजह आप पाते हैं?
2: देखिए, ऐसा नहीं है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि भारत में बौद्ध नहीं है।
1: जी,
2: भारत की भूमि कभी भी बौद्ध विहीन नहीं रही है।
1: जी,
2: आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जाते हैं सिक्किम में, मणिपुर के कुछ हिस्से में, लेह लद्दाख में, वहां की अधिकतम आबादी जो है वो बौद्ध आबादी है। एक तो ये बात।
1: जी,
2: इसीलिए अगर ये हम कहते हैं, हाँ स्थान परिवर्तन हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है,
1: जी,
2: लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जब पूरे भारत में बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचार लोगों के रक्त में समाया हुआ है,
1: जी,
2: जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हो तो आप बुद्ध का नाम लेते हो, बुद्ध को स्वीकार करता है, पूजन करता है, यजन करता है, तो इस तरह से देखेंगे तो पूरे भारत के मानस में भगवान बुद्ध समाये हुए हैं।
1: जी,
2: और कुछ ज्योग्राफिकल एरिया है जहां बुद्धिज्म प्रत्यक्ष रूप से आदिकाल से आज तक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है, प्रायोगिक नहीं है? हम तो सील का पालन करते हैं, हर भारतीय सील का पालन करता है, हर भारतीय समाधि का अभ्यास करता है, योग का अभ्यास करता है, हर चीज का अभ्यास करता है, हम कैसे मान लें कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है? है,
1: यानी हमारे व्यवहार में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो अच्छी बात हम फॉलो करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत सहज शब्दों में हमें मिली है, वो असल में बौद्ध दर्शन का हिस्सा है।
2: बौद्ध दर्शन का भी हिस्सा है, क्योंकि ये अच्छी बातें, क्योंकि भारत का जो दर्शन है, जो सनातन शब्द है, जो सनातन परंपरा है, न ही बेरेन बेरानी सम्मंतित कुदाचनंग अबेरेन च सम्मंती एस धम्मो सनातनो, बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, मित्रता से बैर शांत होता है। अब इसको किसी धर्म विशेष में बांधना उचित नहीं है, भगवान बुद्ध के मुंह से भी यही बात निकला है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये बात भी आती है।
1: जी,
2: तो भारत की भूमि ही ऐसी है।
1: जी,
2: हमने कभी टेरिटरी नहीं जीता है, हमने तो सिर्फ विचार फैलाया है, शांति फैलाई है, शील फैलाया है, समाधि और प्रज्ञा का विस्तार किया है, इसीलिए हम पर पूरी दुनिया, मानवता का इतिहास ये आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने शस्त्र बल से कहीं कुछ भी जीता है।
1: जी,
2: तो भारत की भूमि तो ऐसी भूमि है।
1: तो जो नैतिक मूल्य हमें चाहे वो जातक कथाओं से मिले या माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानी से मिले या बचपन में हम छोटी छोटी जो पुस्तकें पढ़ते हैं कहानियों की, कथा कहानियों की, उनसे मिले, वो बौद्ध दर्शन की भी बातें करती हैं और हमारे अन्य जो सनातन धर्म से जुड़े हुए अन्य जो दर्शन हैं उनकी भी बातें करती हैं। मैं यहाँ ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखूंगी। आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
2: चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा जाए,
1: बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनवा रही है।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार जी। तो मैं सतीश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, कॉरपोरेट ट्रेनिंग जो आप देते हैं उसमें आपने हमें बताया कि बौद्ध दर्शन जो है उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं और उन्हें कैसे हम प्रैक्टिकली अपना सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, ये आप सिखाते हैं। तो आपके सेशंस होते हैं अलग अलग जो विभाग हैं उनमें, मैं ये जानना चाहूंगी कि सेशन तो एक दिन का हुआ, दो दिन का हुआ, कैसे आप ये श्योर करते हैं कि जो आपने सिखाया है वो लोगों को समझ में आ गया है और उसके बाद वो व्यवहारिक तौर पर उसे फॉलो भी कर रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है उन सभी को?
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बौद्ध दर्शन को या धम्म के सिद्धांतों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। रीजन क्या है, वो

0: बिजनेस वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले प्री टेस्ट होता है, तो सर्टेन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है, तो पोस्ट टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उनके क्या अंक रहे और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उनके अंक क्या रहे। अगर अंक बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है, और अंक नहीं बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो समझ नहीं पाए हैं। तो ये तो एक सिद्धांत हुआ छोटा सा जिससे अंदाजा लगाया गया, परंतु धम्म की जो शिक्षाएं हैं उनको 2 दिन में अगर सीख जाए ऐसा संभव नहीं है,
1: जी
0: क्योंकि धम्म के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे रेगुलर अभ्यास में लाना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से हम कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो मानसिक शांति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है,
1: जी
0: और मानसिक शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम विचार शून्य ना हो जाएं, और विचार शून्य होने के लिए हमें विपश्यना साधना करनी चाहिए। विपश्यना साधना बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आनापानासति, सांस का लेना और सांस का छोड़ना और मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करना सांस की आवन जावन के ऊपर। उससे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मस्तिष्क को स्थिर करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क है एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। अभी हम यहां बैठे हैं, बैठे बैठे वो हमारे घर भी जा सकता है, वो बैठे
1: जी
0: बैठे वो बाजार में चला जाएगा, वो किसी मित्र से मिलने लगेगा। ऐसे में हमारा जो ध्यान है वो ध्यान नियंत्रित नहीं रह पाता। तो ध्यान को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी काम करें। मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटा था स्कूल जाता था तो मेरी माँ मुझे कहती थी बेटा ध्यान से स्कूल जाना, मम्मी ने कभी भी नहीं कहा कि बेटे ज्ञान से स्कूल जाना। जब स्कूल में हम पेपर दे रहे होते थे एग्जाम के समय, जो टीचर पूरे साल ज्ञान पढ़ाता था वो एग्जाम के समय कहता था बेटे ध्यान से पेपर करना। तो जब मैंने अध्ययन किया धम्म को तो मुझे पता चला कि ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का गुरु ध्यान है। मैं कुछ कह रहा हूं, अगर आपका मेरी बातों में ध्यान नहीं है तो मैंने क्या कहा आपको समझ नहीं आएगा। हम कोई मूवी देखने गए और मूवी में हमारा ध्यान नहीं है तो
1: जी
0: मूवी में चल क्या रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कौन कौन से कलाकार क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं और
1: जी
0: माल बेचने की बात होती है, या माल बेचने के बाद किसी समस्या के समाधान की बात होती है, या फिर कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस की बात होती है, या किसी टेक्निकल थिंग की बात होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली कि जो है आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और सांस की आवन जावन पे ध्यान लगाएं, ये तो मस्तिष्क को स्थिर करने का एक प्रैक्टिस है, बट
1: जी
0: रोजाना आपको एक काम कर रहे हैं तो एक काम करते समय उसी में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए फोकस, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन,
1: जी
0: ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी टॉपिक, जो चल रहा है उसकी मुझे समझ तो हो,
1: यानी जो बातें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा मानते हैं,
0: जी
1: कि बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप कुछ करें और सहज भाव से, सजग भाव से करें
0: जी
1: और शांत भी रहें, चीजों को समझें
0: जी,
1: है ना, और अपने आप को भी जो है वो जज करते रहें, सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें, वो सब जो है इनके बीज आप कह रहे हैं कि वो ध्यान में है और ध्यान जो है वो धम्म से जुड़ा है। तो ये शिक्षाएं जो है आप इस तरह से युवाओं तक पहुंचाते हैं। जी मैं यहां आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर हम बुद्धिस्ट स्टडीज की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, तो इसे रिलीजन स्पेसिफिक मानते हैं, कैसे बौद्ध दर्शन जो है वो धर्म से अलग है?
0: धम्म की जो शिक्षाएं हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी एस धम्मो सनंतनो, ये एक्चुअली धम्म है, धर्म है ही नहीं
1: जी।
0: जो धम्म है वो धर्म से बड़ी चीज है। धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूर्य दिखे तो दिन है वरना काली रात। तो लोगों को धर्म ऐसा लगता है कि पूजा पद्धति धर्म है
1: जी,
0: लोगों को लगता है परंपराएं निभाना, रूढ़िवादिताओं को निभाना, संस्कारों को निभाना, परंपराओं को निभाना, उन्हें लगता है वो धर्म है। असल में धर्म बिल्कुल अलग चीज है
1: जी।
0: जिस तरह से अग्नि जलाने का काम करती है, पानी शीतलता देने का काम करता है, तो पानी का धर्म है शीतलता देना
1: जी,
0: अग्नि का धर्म है वो गर्माहट देती है। ठीक उसी तरह से जो मनुष्य का धर्म है
1: जी
0: वो है करुणा, मैत्री, बंधुत्ता, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में मानवता परिलक्षित होनी चाहिए। जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा उत्पन्न होने लगे जहाँ मनुष्य केवल मनुष्य प्रतीत होता है,

0: है जहां लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां जाति भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां भाषा भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां क्षेत्रवाद समाप्त हो जाता है, जहां रंग भेद समाप्त हो जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की व्याधियां स्लोली एंड ग्रेजुअली समाप्त हो करके मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती हैं, तो उस समय हम धम्म की गंभीरता को आचरण में धारण करने का कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद मुझे एक मनुष्य छोटा प्रतीत होने लगता है, तो वहां मिलावट आ जाती है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वहां पर उसकी मानसिक अवस्थाएं विकृत हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां समाज में उपलब्ध हो रही हैं, बढ़ रही हैं या बढ़ाई जा रही हैं, उनका समापन ही धम्म की तरफ हमें लेकर के जाता है।
1: जी, तो समसामयिकता उसकी ये है कि जो सामाजिक कुरीतियां उस वक्त थी उनको दूर करने के लिए धम्म जो है वो शुरू हुआ, और आज भी जो सामाजिक कुरीतियां हम अपने आसपास देखते हैं उनका निवारण हम इस दर्शन में पाते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहाँ मैं आपकी पसंद का एक और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: इकबाल फिल्म का एक गाना है, आशाएं।
1: जी, ये आपको पसंद है गाना?
0: जी,
1: बहुत ही अच्छा सा गाना है, एकदम से मूड जो है वो बहुत अच्छा कर देता है। तो हमारे सभी श्रोताओं को हम ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार हमारे विशेषज्ञ हैं और हम अपने विशेषज्ञों से ये जान रहे हैं, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज, इनसे हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से बौद्ध दर्शन जो है वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बना रह सकता है और कैसे हम अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्ध दर्शन से भी निकाल सकते हैं और वो समाधान हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अब राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की तो एक शब्द बार बार हमें सुनाई देता है, हम पढ़ते हैं मध्यम मार्ग। आज का जो युग है, एक तो इस पर बहुत ज्यादा दबाव हम महसूस करते हैं अपने आप को हर पल साबित करने का, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हर समय हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है, पीयर प्रेशर एक महसूस होता है, ग्लोबल विलेज में हम जी रहे हैं, हम AI जो है अब जीवन का हिस्सा बन गया है, तो जहां कृत्रिम बौद्धिकता जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी हो रही है, वो हमारे जीवन को कहें कि कंट्रोल करती जा रही है, वहां पर मध्यम मार्ग जो है उसे हम कैसे अपना सकते हैं और इसका क्या लाभ हमें होगा?
1: देखिए, मध्यम मार्ग जो है वो एक तरह से बौद्ध दर्शन का मेरुदंड है।
0: जी,
1: भगवान बुद्ध ने अपनी ही वाणी में कहा था कि मझिमा पट्टी पटी पदाति चक्षु करनी यान करनी, ये जो मध्यम मार्ग है यह आंख देने वाला है, आई ऑफ विजडम देने वाला है और ये हमें नॉलेज देने वाला है। क्योंकि द्वे अंते भिक्खवे पब्बजितेन न सेवितब्बा यो चायं कामे सुकाम सुखल्लिकानु योगो हीनो गम्मो पुथुज्जनिको अनरियो अनर्थ संहितो। यह हमें दो अंतों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग, अब जैसे देखिए आप की चर्चा में, परिचर्चा में कॉरपोरेट शब्द बार बार आ रहा
0: जी।
1: है, मध्यम मार्ग में एक सोपान है सम्मा आजीवो, राइट लाइवलीहुड। इसमें बताया गया है कि किस तरह की आजीविका हमें स्वीकार करनी चाहिए, किस तरह के आजीविका पे हमें जीवन जीना चाहिए
0: जी।
1: और यही सारी चीजें आगे बढ़ते हुए सुमाकर की एक किताब आई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स शब्द को क्वाइन किया था
0: जी।
1: और आज ये जो है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एक अल्टरनेटिव सिस्टम बन चुका है पूरे विश्व में और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा भी शुरू हो गई है। अगर इसी मध्यम मार्ग को हम उठाए मेडिकल साइंस के फील्ड में ले चलते हैं तो वहां भी जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं उसकी वहां पे बहुत प्रासंगिकता बढ़ गई है
0: जी।
1: अभी 7 टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं जो काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी के टेक्निक्स हैं, जो पूरी तरह बौद्ध दर्शन पे आधारित है, माइंडफुलनेस पे आधारित है, जो मेडिकल साइंस की बात है
0: जी।
1: शिक्षा में हम अपने मेंटल कैपेसिटी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें, जिससे कि हमारा जो एक ह्यूमन कैपेसिटी है वो विकसित होकर सामने आए
0: जी।
1: रही बात जो मैकेनाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया का, हम जो मशीनों पे आश्रित हो रहे हैं, तो देखिए मशीन को चलाएगा कौन? मशीन को मनुष्य चलाएगा, मनुष्य को उसका मन उसको गाइड करता है। चूंकि आपने धम्मपद में देखा होगा मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, अब AI कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हम AI के माध्यम से हर चीज को देखें समझें, लेकिन उसके जड़ में नैतिकता शब्द का होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमें नैतिक होना बहुत आवश्यक है
0: जी।
1: और नैतिक सील, समाधि और प्रज्ञा, हमें सील का पालन करते हुए, समाधि पे चलते हुए प्रज्ञा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम वायरस पे, बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और हमें हमारे अंदर सील की भावना है, हम सील का विकास कर रहे हैं, सील का अभ्यास कर रहे हैं, हम कभी ऐसा वायरस नहीं बनाएंगे जिससे कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी
0: जी।
1: हमें उन चीजों का आविष्कार करना है जो मानव के लिए, मानवता के लिए

0: समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए जो उपयोगी हो।
1: जी,
0: हम मस्तिष्क और मशीन का इस्तेमाल दवाओं के लिए करेंगे, मनुष्य के मनुष्यता के विकास के लिए करेंगे, न कि ध्वंस के लिए करेंगे।
1: जी,
0: तो यहाँ पे बुद्ध की वाणी, बुद्ध का दर्शन समीचीन है कि मनुष्य का मशीन का इस्तेमाल मनुष्य नैतिकता के साथ करे और अपने आप को नियंत्रित रखे और इस सिद्धांत को रखे, सदैव सामने रखे, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोधपनं एतान बुद्धान शासनं। इसको ध्यान में रखे, कोई पाप न होने पाए, चित्त परिशुद्ध हो जाए, कुशल वृत्तियों का विकास हो और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, पूरे मानवता की शांति होगी, विश्व शांति होगी।
1: जी, यानी बौद्ध दर्शन में जो है वो इस तरह की बातें हैं कि व्यवहारिक तौर पर हम अपना सकते हैं और ये हमें कहीं आगे बढ़ने से नहीं रोकती। हम आधुनिकता शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं तो हम लगातार आधुनिक हो सकते हैं, अपने आसपास की चीजों से, समसामयिक समाज से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये दर्शन हमें हमारे अंदर एक तरह का नैतिक मूल्य जो है वो हमेशा रखेगा, जो हम काम करेंगे वो सही दिशा में जाएगा।
0: बिल्कुल
1: जी, मैं यहाँ आपसे वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उनकी बात करना चाहूंगी। पर्यावरण हमारे सामने एक चुनौती है, हम लगातार बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम बात करते हैं कि परिवार जो हैं वो अब धीरे धीरे एकल परिवार होते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और रोजगार एक समस्या है युवाओं के सामने, और अगर है भी रोजगार उनके पास तब कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि जो है वो भाव कम होता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा है, एक भाव मन में हमेशा रहता है असंतुष्टि, और ऐसा माना गया है कि आप असंतुष्ट होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो आपको प्रयास के लिए प्रेरित करेगी असंतुष्टि आपकी। बौद्ध दर्शन इन सब के बीच कैसे हमें संतुलित रहना सिखाता है?
0: यहाँ भी आपने कई बिंदुओं पे एक साथ प्रकाश डाला है।
1: जी,
0: सबसे पहले आपने पर्यावरण के ऊपर प्रश्न किया है, दूसरा प्रश्न है आपका परिवार टूट रहा है
1: जी,
0: तीसरा प्रश्न है बेरोजगारी और संतुष्टि। पर्यावरण को लेके बौद्ध दर्शन में एक नई विधा की शुरुआत हो गई है 90 के दशक के बाद या 90 के दशक के आसपास, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है? जब हम तृष्णा का त्याग कर देंगे
1: जी,
0: अगर थोड़े से प्रकृति के दोहन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम तृष्णा के कारण जो है प्रकृति का दोहन असीमित रूप से करते हैं
1: जी।
0: यहाँ पे बौद्ध दर्शन में वृक्ष को कैसे बचाना है, जल की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, वायु की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें मिलती हैं और ये सब मिलकर के एक नए विषय का जन्म देता है, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें जो बौद्ध साहित्य है उसमें स्थान स्थान पर इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि कौन व्यक्ति नीच है जो बीज को नष्ट करता है, जो पौधे को नष्ट करता है, जो वृक्ष को नष्ट करता है, उसी को हम नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए बुद्धिज्म में, और इसका परिणाम है कि आज थाईलैंड में भिक्षु जो है वो जब पेड़ कटने जाते थे तो भिक्षु उनको पकड़ लेते थे या पेड़ को चीवर पहना के उसको भिक्षु का स्वरूप दे देते थे जिससे पेड़ कटना बंद हो जाता था। उसी तरह की चीज हमारे यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा करते थे, चिपकू आंदोलन, वो जाके पेड़ से चिपक जाते थे
1: जी।
0: ये हमारे रक्त में बसा हुआ है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है और बौद्ध दर्शन और बौद्ध सिद्धांत तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि परिवार टूट रहे हैं क्योंकि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं
1: जी,
0: स्व के लिए जीना पसंद करते हैं, हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने समाज को नहीं देख पाते हैं। अगर हम सबको एक साथ देखना शुरू करें, समेकित रूप से देखना शुरू करें तो परिवार टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सबकी भूमिका इस समाज में, इस परिवार में निर्धारित है। हम अपनी भूमिका के तहत चलें, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे को समझ के जिए, एक दूसरे को समझने के लिए जिए, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा, समाज कभी नहीं टूटेगा। और तीसरी बात आपने कहा बेरोजगारी और असंतुष्टि, संत उठी परमंग धनंग की बात बुद्धिज्म में कही गई है। सबसे पहले बुद्धिज्म में एक चीज बौद्ध दर्शन में बताया गया है

0: कि सभी चीजें नष्ट हो जाने वाली है, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली चीजें हैं। तो जो चीजें नष्ट होने वाली है उससे मोह क्या नहीं। यही बात बेरोजगारी की, तो हम जब अपनी आवश्यकताओं को न्यून कर लेंगे तो हमें बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होगी, हम अपना एक आदर्श जीवन जी पाएंगे और यहाँ पे हमें तृष्णा से मुक्ति मिलेगी, हम तृष्णा से दूर हो जाएंगे, हमारा समाज भी एक उज्जवल एक उत्कृष्ट समाज में परिवर्तित हो जाएगा, परिवार परिवर्तित हो जाएगा और व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार जो है बौद्ध दर्शन पर्यावरण से लेकर के सामाजिक प्रदूषण से लेके और व्यक्तिगत प्रदूषण हर स्तर पे हमें पूरी तरह से नियंत्रित करने की नियंत्रित रखने की बात करता है
1: जी। और जो ये कहा जाता है कि हम असंतुष्ट रहेंगे वो प्रेरणा बनेगी आगे बढ़ने के लिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, असंतुष्ट रहेंगे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और इस कारण से हम अब खुद को दबाव में रखेंगे
1: जी,
0: हर समय दबाव में रखेंगे कि जो मिला नहीं उससे ज्यादा मिलना चाहिए। हम अपने बच्चों को दबाव में रखेंगे कि तुम जितना पढ़ रहे हो उससे काम नहीं चलेगा और अधिक पढ़ो, बच्चों को दबाव में रखेंगे, समाज को दबाव में रखेंगे। जब आप असंतुष्ट हैं, आपसे जुड़ा हुआ समाज भी असंतुष्ट होगा, परिवार भी असंतुष्ट होगा। इसीलिए ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें संतुष्ट होकर जीवन जीना चाहिए। लेकिन अब आप कहती हैं कि असंतुष्टि जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, नहीं, भारत में एक एक क्षण के इस्तेमाल की बात की जाती है और जब हम उपलब्ध एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके लिए संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट होने की जरूरत है और एक एक क्षण का सही अर्थ में सदुपयोग करने की जरूरत
1: जी। संतुष्ट होकर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट करते वक्त हमें पूरी तरह वहां पर उपस्थित रहना है, सतर्क होकर और ध्यान से काम करना है।
0: बिल्कुल
1: जी। चलते चलते सतीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी परिस्थिति है ही नहीं जिसकी बौद्ध दर्शन बात न करता हो। हम चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, या हम व्यक्तिगत स्वभाव की बात करें, और या फिर हम आध्यात्मिक उत्थान की बात करें, अपदीपो भव वाला भाव भी हमें सिखाता है बौद्ध दर्शन। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम बुद्धिज्म को, बौद्धिक जो स्टडीज हैं, इन सबको धर्म से अलग देख लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद अगर हमारे युवा साथी कुछ पढ़ना चाहें, इस तरह के कोई मोटिवेशनल जो क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, वो करना चाहें, तो कैसी अप्रोच उन्हें करनी चाहिए, कहाँ से वो ये सब पढ़ें जानें?
2: सबसे पहले तो मैं यहाँ ये सजेशन देना चाहूंगा कि विपश्यना साधना के सेंटर्स पूरे भारत में हैं
1: जी,
2: जो आपको रीचेबल हो वहाँ 10 दिन का कोर्स होता है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन वहाँ स्टे भी फ्री होता है और खाना पीना भी फ्री होता है, उसके लिए देर इज नो चार्ज। तो विपश्यना साधना में जाएं, वहां जाकर हमें धम्म के मूल सिद्धांत समझ में आते हैं, क्योंकि जो धम्म है, धम्म अनुभव करने की चीज है, अभ्यास करने की चीज है। तो एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक रूप से कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रतिपादित कई बुक्स हैं, उनमें एक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, उस पुस्तक में धम्म को लेकर के बहुत अच्छी जानकारियां उपलब्ध है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ये कामना करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं और हमारे जेनजी जो श्रोता हैं वो बहुत सारी जानकारी रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में वो अपने आप को बहुत ज्यादा परिपक्व करने की प्यास में लगे होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जैसे वो समय का सदुपयोग करते हैं, उसी सदुपयोग के माध्यम में वो ये पुस्तकें भी पढ़ेंगे, किसी न किसी माध्यम से उन्हें प्राप्त हो ही जाएंगी। और हमें बताया राणा पुरुषोत्तम जी ने कि किस तरह से हम अपने व्यवहार में बौद्ध दर्शन जो है उसे शामिल कर सकते हैं, और जीवन की उस तरह की कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान हमें बौद्ध दर्शन से न प्राप्त हो, बस हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है। और हमें सतीश कुमार जी ने बताया कि ये 2 दिन में या किसी एक सेशन से नहीं होगा, निरंतरता इसमें जरूरी है। लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे, और बेहतर व्यक्ति से बेहतर समाज बनेगा, और बेहतर समाज से हमारा राष्ट्र और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मूल्य जो है वो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप दोनों ने हमें बौद्ध दर्शन जो है उसे समझाया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के माध्यम

0: से हमारे श्रोता जो हैं इसके बारे में जो भी जाना है उसे अपनाएं और उनका लाभ हो। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूं। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, बौद्ध अध्ययन विभाग, नव नालंदा महाविहार, संस्कृति मंत्रालय, नालंदा से आप जुड़े हैं और लगातार जो है वो बौद्ध दर्शन आपके माध्यम से प्रसार भी पाता है और आज हमारे स्टूडियो में भी आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी आपका, कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है और आपके माध्यम से हमारे युवा साथी जो हैं वो बौद्ध दर्शन को समझ पाते हैं और प्रयास कर पाते हैं उसे अपने व्यवहार में उतारने का। आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत साधुवाद।
0: तो श्रोताओं, आज हमने पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता समझी। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि

पुलिस के अनुसार ये हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य का बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन सकते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वो देखो जरा कि हौले हौले मध्यम मध्यम बह रही है ये पुरवैया, और न जाने कितना शोर करे, इठलाती जाए बहती जाए, मिट्टी की खुशबू लाए, हवा में बहती जाए ये पुरवैया।

0: दिन भर की थकान के बाद जब रात आती है तो बस तेरे ही ख्यालों की बारात लाती है। जागते हुए तो दुनिया को संभाल लेते हैं, पर सोते हुए तेरे ही सपने बुने जाते हैं।
1: मैंने

जिसको चाहते हो दिल से उसका सपना आता है, ऐसा किसी ने मुझे कहा कि जिसको चाहते हो दिल से उसका सपना आता है, ऐसा किसी ने मुझे कहा। ये सोच मैंने अपनी चादर खींच ली, कब आएगी ये नींद, ये सोच आंखें मिच ली।

इश्क के फूल खिलते हैं तेरी इन आँखियों में, इश्क के फूल खिलते हैं तेरी इन आँखियों में, जहाँ देखे तो वहाँ ये खुशबू बिखेर देती है।

लोग तो कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, लोग तो अब भी कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, पर तेरी आंखों ने तो कुछ और ही कहा है मुझसे।

0: मैं थक चुका हूँ जिंदगी से, तू मुझे अपने साथ ले चल। मैं थक चुका हूँ जिंदगी से, तू मुझे अपने साथ ले चल। कि एक मुद्दत से हूँ तन्हा, कुछ तो मुझसे बात कर।
1: पथ पे चला उस पथ

अजीब कश्मकश है मोहब्बत की राहों में, सामने तुम हो तो लफ्ज नहीं मिलते, और जब तुम चले जाते हो कमी खलती है तुम्हारी तुम्हारे जाने के बाद, फिर तुम्हारी हर एक बात याद करके हम मुस्कुराते हैं।

प्रस्तुत अभी होंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार 1:10 पर गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और

दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस के 167 रन के लक्ष्य को बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों समय हुआ है 1:11 और 12 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: कभी कभी।
1: अजीब सी बेबसी है तुम्हें न देखने में, दिन कटता नहीं और रातें सोती नहीं। तुम पास हो तो हर चीज मुकम्मल लगती है, वरना जमाने की कोई खुशी अपनी होती नहीं।

तुम्हें क्या पता कि सदाबहार हो तुम और मेरी किस्मत हो, मेरा इंतजार हो तुम। कोई बहार ना थी इस बहार से पहले, इसलिए मेरी जिंदगी की बहार हो तुम।

अब कौन घटाओं को घूमने से रोक पाएगा, अब कौन घटाओं को घूमने से रोक पाएगा। जुल्फ जो खुल गई तेरी, लगता है अब सावन आएगा।

खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं और सामने

जब मैं चलूं तो साया भी अपना साथ ना दे, जब मैं चलूं तो साया भी अपना साथ ना दे, और जब तुम चलो तो ये जमीन चले आसमां चले।

वास्तविक कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसे ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थीं। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों

समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 7 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का और मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कुछ सोचती हूँ तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलती हूँ तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपा के रखूँ दिल की बात को, तेरी तो हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है।

अजब सा चैन था हमको कि जब थे हम बेचैन, अजब सा चैन था हमको कि जब थे हम बेचैन, करार आया तो जैसे बाकी करार जाता रहा।

ए दोस्त हमने तरके मोहब्बत के बावजूद, ए दोस्त हमने तरके मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के

नमस्कार दोस्तों, रात की इस नरम चादर में चांद की हल्की रोशनी के साथ आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमरही, जहां बातें होती हैं दिल की, एहसासों की और उन जज्बातों की जो अक्सर होठों तक आ जाती है मगर शब्द नहीं बन पाते। मैं आपकी दोस्त, आपकी साथी अर्चना गोयल और अगले 50 मिनट तक हम साथ चलेंगे यादों में, मोहब्बत में, रिश्तों और जिंदगी के उन खूबसूरत पलों के बीच जिन्हें शायद आपने महसूस तो किया मगर कहा नहीं। आज की रात कहने सुनने की, आइए सुनते हैं ये नगमा।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये गीत था फिल्म ब्रह्मचारी से। दोस्तों, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर रोज बात नहीं करते, मगर जब भी दिल उदास हो तो सबसे पहले वही याद आते हैं। कभी सोचा है कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते ही इसलिए हैं ताकि हमें एहसास हो सके कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, महसूस करना भी होता है।

कभी कभी किसी का चुपचाप ख्याल रखना, उनके आने का इंतजार करना और बिना वजह मुस्कुरा देना, यही छोटे छोटे एहसास जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। रिश्तों में सबसे जरूरी होता है एहसास, क्योंकि जहां एहसास खत्म हो जाए वहां शब्द भी खाली लगने लगते हैं। कहना ना होगा कि रिश्ते सिर्फ एक दूसरे के साथ से ही चलते हैं।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में गीत था फिल्म नगमा से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:29 और ठीक 31 सेकेंड। आज की रात जरा अपनी यादों की खिड़की खोलिए और याद कीजिए वो इंसान जिसे कभी

आपकी जिंदगी में खुशबू की तरह दस्तक दी थी। वो पहली मुलाकात, वो पहली लंबी बातचीत और वो छोटी छोटी बातें जो आज भी दिल को मुस्कुरा देती हैं। अजीब बात है ना, वक्त गुजर जाता है मगर कुछ एहसास उम्र भर वहीं ठहरे रहते हैं।

प्रिय जिंदगी, शुक्रिया उन लोगों के लिए जो बिना किसी मतलब के साथ निभाते हैं, जो हमारी खामोशी पढ़ लेते हैं और उदासी में भी मुस्कुराना सिखा देते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा हमराही है तो आप उसे सिर्फ इतना कह दीजिए, तुम हो इसलिए जिंदगी खूबसूरत है।

चलिए अब एक शेर और कुछ जज्बात। रिश्ते मोहताज नहीं होते शब्दों के, बस एक एहसास काफी है जिंदगी भर के लिए।

कभी कभी इंसान भीड़ में भी अकेला होता है और कभी कभी एक की मौजूदगी पूरी दुनिया जैसी लगती है। इसलिए अपने अपनों के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, क्योंकि वक्त गुजर जाता है मगर प्यार से बोले गए शब्द हमेशा याद रहते हैं।

दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती। कुछ लोग जिंदगी में आते हैं, बहुत करीब भी हो जाते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक दूरी रह जाती है। और फिर उनकी यादें हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाती हैं। कभी देर रात जब सब सो जाते हैं, तब वही अधूरी बातें दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं।

हर बात शब्दों से कही जाए जरूरी तो नहीं। कुछ रिश्ते खामोशी से निभाए जाते हैं। कभी किसी की आंखें पढ़िए, वहां अक्सर वो बातें मिल जाएंगी जो जुबां पर कभी आ नहीं पाई। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप शायद वही है जहां बिना कहे सब कुछ समझ में आ जाए।

अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी खामोशी को समझ ले, तो उसे कभी दूर मत जाने देना, क्योंकि जिंदगी में ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। इसी एहसास के साथ मैं अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण की केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभासपाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभासपाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते के प्रयासों के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नवीनतम शांति प्रस्ताव को अस्वीकार्य कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्हें ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों की प्रतिक्रियाएं पसंद नहीं आई हैं। इससे पहले ईरान ने कहा कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से अमरीका के नवीनतम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान के माध्यम से भेजी गई, जो ईरान और अमरीका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्के ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने नहीं समझा जाना चाहिए। रूस के राजदूत सरगेई नेचायेव ने कहा है कि रूस नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच को लेकर चल रही चर्चाएं महाद्वीप के रणनीतिक संतुलन को बदल सकती है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास स्थित एक क्रूज जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को निकासी के लिए जहाज से उतारना शुरू कर दिया गया। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत आइसोलेशन में रखा जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो चैनल। समय हो चुका है सुबह के 4:11 और ठीक 8 सेकंड हुए हैं और हमेशा की तरह ये समय है कार्यक्रम अरुणिमा का। मैं आज आपके साथ अर्चना गोयल, आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज के दिन की शुरुआत ईश्वर की प्रार्थना के साथ करते हैं। ये वही वक्त है जब हम ईश्वर को खुद से जोड़ते हैं। कहते भी हैं कि सुबह की वेला में भगवान से जुड़ने का सबसे सही समय होता है।

दोस्तों, आज अरुणिमा की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा मंत्र। जो बीत गया वो सीख था, जो आने वाला है वो मौका है, और जो अभी है ये पल, यही असली जिंदगी है।

सुबह की शुरुआत में दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि आसमान हमें क्या सिखाता है? रात चाहे कितनी भी अंधेरी रही हो, सुबह फिर भी आती है। यानी जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी हों, उम्मीद हमेशा लौटती है। हर सुबह हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक सपनों को पूरा करने का और दूसरा फिर से सो जाने का। इसलिए उठिए, अपने दिन को प्यार से अपनाइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। चाय की खुशबू, ठंडी हवा, अपनों की मुस्कान, यही तो जिंदगी है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। आपके साथ मैं हूं अर्चना गोयल। जिंदगी में हर दिन नया मौका आता है, लेकिन अक्सर हम बीते हुए कल का बोझ लेकर आज को भी भारी बना देते हैं। याद रखिए, पेड़ कभी सूखे पत्तों को पकड़कर नहीं रखते, तभी तो नए पत्ते आते हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ पुरानी तकलीफों को छोड़ना चाहिए। कभी खुद के लिए भी समय निकालिए, थोड़ी देर शांत बैठिए, अपने मन की आवाज सुनिए।

सुबह की हवा में एक अलग ही जादू होता है। ये मन को शांत करती है, उम्मीदों को जगाती है। कभी सुबह उठकर आसमान को देखिए, लगता है जैसे प्रकृति खुद कह रही है।

सुबह की शुरुआत अगर प्यार भरे शब्दों से हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। कभी अपनों से कहकर देखिए कि आपका दिन शुभ हो। छोटे शब्द हैं लेकिन दिल को सुकून देते हैं। रिश्तों को समय दीजिए क्योंकि जिंदगी की असली खुशी रिश्तों में ही छुपी होती है।

एक छोटी सी कहानी। एक बुजुर्ग माली रोज सुबह अपने पौधों को पानी देता था। किसी ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों? कुछ पौधे तो सूख चुके हैं। तो माली मुस्कुराया, मैं फूलों की उम्मीद में मेहनत करता हूं, क्योंकि प्रकृति कभी मेहनत बेकार नहीं जाने देती। दोस्तों, आपकी कोशिशें भी एक दिन जरूर खिलेंगी, बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए। आज की प्रेरक पंक्ति, धीरे चलिए मगर कभी रुकिए मत।

बाहर की दुनिया से थोड़ा बाहर आइए, कुछ पल ईश्वर के समीप आकर बिताइए, मन को शांत रखकर एक चाय का कप लेकर धीरे धीरे प्रकृति को निहारिए। यकीन मानिए, जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी।

तो दोस्तों, इस खूबसूरत सोच और मुस्कुराहट के साथ आप मुझे यानी अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। उम्मीद है अरुणिमा की ये सुबह आपके मन को सुकून और नई ऊर्जा दे पाई होगी। हमेशा खुश रहिए और हर सुबह को नए सपनों के साथ अपनाइए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की

0: कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण ही भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की श्रेणी शीर्ष में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नवन्ना स्थित राज्य सचिवालय में मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 5 मंत्रियों को विभागों का वितरण किए जाने की उम्मीद है। इन्होंने शनिवार को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। आशा है कि नया मंत्रिमंडल भाजपा के चुनावी वायदों पर चर्चा करेगा। बैठक में आयुष्मान भारत, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की संभावना है। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों और विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठकों में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। नवनिर्वाचित विधायकों के भी बैठकों में शामिल होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 18वें सत्र के नवनिर्वाचित सदस्य बुधवार, गुरूवार और शुक्रवार को शपथ ग्रहण करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता तापस रॉय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने तिरुची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थीं। उधर आज से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। स्पेन के मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि हता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनसे वायरस के कोई लक्षण नहीं हैं। स्पेन के राष्ट्रीय आपातकालीन निगरानी और समन्वय केंद्र ने कहा है कि चालक दल के सदस्य के रूप में काम कर रहे दोनों भारतीयों को नीदरलैंड ले जाया जाएगा, जहां उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi will participate today in Somnath Amrit

हर्ष पर। आज मैं आपके साथ अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, सुबह की इस सुनहरी बेला में आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम भोर सुहानी में। अगले 40 मिनट तक हम साथ चलेंगे प्रकृति की उन राहों में, जहां ओस की बूंदों में उम्मीद चमकती है, जहां हवाओं में ताजगी बसती है और जहां हर नई सुबह हमें ये एहसास दिलाती है कि जिंदगी हर दिन एक नया मौका देती है। पॉजिटिव विचारों के साथ आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, जब सूरज अपनी पहली किरण धरती पर बिखेरता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें मुस्कुरा कर कह रही हो, कल चाहे जैसा भी था, आज फिर से शुरू करने का दिन है। तो आइए इस खूबसूरत सुबह का स्वागत करते हैं सकारात्मक विचारों और मधुर गीतों के साथ।

दोस्तों, कभी गौर किया है कि पेड़ कभी शिकायत नहीं करते कि उन्होंने धूप क्यों मिली। नदी कभी नहीं रुकती कि रास्ते में पत्थर क्यों आए। और फूल कभी ये नहीं सोचते कि उनकी खुशबू कौन महसूस करेगा। प्रकृति हमें हर पल एक बात सिखाती है कि अपना काम करते रहो, बिना शिकायत, बिना डर, सिर्फ आगे बढ़कर चलते रहो, चलते रहो।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:27 और 18 सेकेंड। आज सुबह खुद से एक वादा कीजिए दोस्तों कि चाहे हालात जैसे भी हों, आप अपने भीतर उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी सदा जलाए रखेंगे। हर सुबह हमें दो विकल्प देती है, या तो सपनों के साथ सोती रहिए या उठकर उन्हें पूरा करने में लग जाइए।